हम आकाशवाणी जोधपुर के एफएम सनसिटी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आज रविवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की सातवीं तिथि, तदनुसार दिनांक

28 जून 2026, इस समय सवेरे के 5:57 हुए हैं। आकाशवाणी जोधपुर के FM सनसिटी चैनल पर हमारी आज की ये सभा अब आरंभ होती है।

0: एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सनसिटी चैनल है। सवेरे के 6 बजने को हैं। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमानी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर टेकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के कार्य को बेहतर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम से पहले गृहमंत्री अहमदाबाद के चांदलोडिया में साबरमती विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्ता

0: का पूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी है कि अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत नियामक कानून लाएगी, जिससे कड़ी निगरानी, अधिक जवाबदेही और छात्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की रिपोर्ट ईमेल, संदेश या फोन से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोवा में 14 वर्षीय एथन वॉज ने बोस्निया और हर्जिगोविना में आयोजित सराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ ही एथन अनुराग महामल और लियोन मेंडोगा के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एथन ने 10 ग्रैंड मास्टरों को पीछे छोड़ते हुए यह खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम में और हैरी केन ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर रहा। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में 68,000 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि शुक्रवार को एक तेलवाहक जहाज कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 102.1 MHz पर यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। आइए अब आपको ले चलते हैं विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा की ओर। अब से लेकर 8 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा से प्रसारित कार्यक्रम।

वंदन वार, सुनिए आज का चिंतन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है, स्वयं वह बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। आइए अब सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

इस संसार में लाखों जीव जंतु रहते हैं जो खुले आसमान के नीचे निश्चिंत जीते हैं। कभी सोचा है कि क्यों मनुष्य इस तरह निश्चिंत नहीं जी पाता? क्योंकि उसे ना तो दूसरों पर भरोसा है और ना ही खुद पर। और जहां भरोसा ही नहीं वहां कैसी राहत? खुद पर और उस परम पिता पर भरोसा ही जीवन को सुखमय बना सकता है।

इस जीवन में मोह केवल उनका ही होता है जो मोह को हरने वाले हैं, और कभी कभी उनके दरस का मोह हमें खींच ले जाता है प्रकृति के समीप और हम आत्मविभोर होते हैं। आत्मविभोर का ये वक्त तब भी आता है जब देश प्रेम हमारे मन में जाग उठता है। तो चलिए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं देशगान।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण झरोखा के अंतर्गत। सुबह 11 बजे से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। सुबह 6:35 से श्री रामचरितमानस सुन सकते हैं और 6:45 से संगीत सरिता में सुनिए विविध भारती के खजाने से गायक पंडित सी आर व्यास से बातचीत। 7 से भूले बिसरे गीत। 7:30 से हम है राही प्यार के। 8 से समाचार प्रभात। 8:15 से सुनिए त्रिवेणी। सुबह 8:30 से चित्रलोक और 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है निर्माता निर्देशक आनंद एल राय पर। 10 से सुन सकते हैं बॉम्बे टॉकीज का पुनः प्रसारण। गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत की पहली कड़ी सुनिएगा, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 11 से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। 12 से हिंदी में समाचार। 12:05 से यादों की महफिल। 1:00 सुरीला सफर कार्यक्रम सुन सकते हैं और 2 से त्रिवेणी का पुनः प्रसारण सुनिएगा। 2:15 से दोपहर समाचार। 2:30 से सुनिए सदाबहार नगमे। मन चाहे गीत कार्यक्रम का समय है 3 का। नाट्य तरंग कार्यक्रम सुन सकते हैं 3:30 से। आज सुनिए नाटक कंटीला रास्ता का दूसरा भाग। मूल तमिल लेखक है नित्या मूर्ति, हिंदी अनुवाद किया है ए शौर्य राजन ने, निर्देशन वीपी दीक्षित बटुक्का। 4 उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में सुनिए रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की दूसरी कड़ी, प्रस्तुति थी श्री कामले की। 5 से छाया गीत का पुनः प्रसारण। 5:30 से तराने नए पुराने। 6 से हिंदी में समाचार। 6:05 से तराने नए पुराने का पुनः प्रसारण, माफ कीजिएगा, तराने नए पुराने जारी रहेगा। और 6:30 से झरोखा के अंतर्गत आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण आप सुनेंगे। 6:35 से संध्या रंजन। 6:45 से संगीत सरिता के अंतर्गत सुनिए विविध भारती के खजाने से गायक पंडित सी आर व्यास से बातचीत। 7 विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा इस श्रृंखला में आज सुनिए महावीर चक्र से सम्मानित सूबेदार बिशन सिंह की शौर्य गाथा। 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज, वेन शिपले इलेक्ट्रिक गिटार के साथ होंगे ये कलाकार हैं आज के।

लड़ी नजरिया लड़ी, ये झलके सुन सकते हैं रात 8 बजे से हवा महल में। लेखन राजेश भदौरिया का, निर्देशन गुरमीत रामल मीत का। चित्रलोक रात 8:15 से 8:45 से समाचार संध्या 9 बजे से सुनिए आपके लिए ये कार्यक्रम। 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है निर्माता निर्देशक आनंद एल रॉय पर। छाया गीत का प्रसारण होगा 10 बजे से। 10:30 से ढलती जाए रात और 11 बजे से विविधा। ये थे आज के मुख्य कार्यक्रम जिनका विवरण आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। श्री रामचरितमानस सुनिए 233वीं कड़ी।

भरत के शील तथा यश को निर्मल चंद्रमा की संज्ञा देते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने कवि की सुबुद्धि को चकोरी के समान माना है। श्री रामचंद्र से भरत के गुण छिपे नहीं हैं, जो उन्हें धर्म की धुरी धारण करने वाला मानते हैं। पिता की अकाल मृत्यु से उत्पन्न स्थिति में राज्य का कार्यभार, कुल की प्रतिष्ठा, धर्म की मर्यादा, पृथ्वी, धन तथा घर परिवार का पालन करके ही सूर्य कुल की रक्षा की जा सकती है। अनुज भरत के लिए श्री राम की आज्ञा है कि वे ऐसा ही करें।

0: सरिता
1: मित्रों नमस्कार। आप सुधी श्रोताओं के लिए आज हम चुन लाए हैं एक प्रख्यात गायक कलाकार से की गई भेंट वार्ता, आइए सुनते हैं।
2: संगीत सरिता के श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध गायक पंडित सीआर व्यास। व्यास जी नमस्कार।
3: नमस्कार
2: व्यास जी, आपके षष्ठी पूर्ति समारोह में श्री पीएल देशपांडे ने बड़ा रोचक और बड़ा ही सुंदर भाषण देते हुए कहा था कि कलाकार कभी रिटायर्ड नहीं होता, और उनमें से आप एक प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं। इस बारे में आपके क्या ख्याल है?
3: वो तो बात सच है, क्योंकि कलाकार जब अपने कला में मग्न रहता है और पूरा टाइम उनको दे के अपनी साधना करता है, वो कहते हैं कि कलाकार ये सोच में कितना साल गुजरे उनको खुद को मालूम नहीं होता है, वो तो विचार में अपने हमेशा के लिए वो तरुण नहीं रहता है।
2: बहुत सुंदर। व्यास जी, आपने संगीत की शुरू की तालीम प्रारंभिक कब शुरू की?
3: 10 साल से शुरू किया।
2: 10 वर्ष की आयु से?
3: 10 वर्ष की आयु से। लेकिन पहले जो मैं गाता था वो तो हल्का फुल्का गाना गाता था। जब मैं 14-15 साल का हो गया तब किराना घराने में
2: जी
3: मेरे पहले गुरु जी थे पंडित गोविंदराव भातंबरेकर।
2: अच्छा।
3: उससे मैं तालीम पाया, 6-7 साल उनके पास सीखता था मैं
2: जी।
3: उसी टाउन करके जो वहाँ जहाँ रहते थे वो तो वहाँ मैं तालीम पाया, और वो खुद को कहते थे कि वो किराना घराने के गायक है।
2: अच्छा। लेकिन जैसा कि सब लोग जानते हैं कि आप ग्वालियर घराने के गायक हैं।
3: हाँ, ये भी ठीक है, क्योंकि मेरा जब स्कूल एजुकेशन थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए मैं सोचता था तब मेरा गाने का बहुत मैं आगे जा चुका था, लेकिन मेरा खुद का विचार ऐसा नहीं था। मेरे को ऐसी जगह चाहिए, ऐसी जगह जाना चाहिए जहां मुझे अच्छी तालीम मिलेगी। जब मैं बम्बई आया मेरा उम्र था 18 साल की
2: जी,
3: और तब मैंने ग्वालियर
2: घराने के
3: राजा राम बाबा पराडकर जो थे मेरे गुरु जो कैलाशवासी पंडित राजा राम बाबा पराडकर से तालीम शुरू किया।
2: ग्वालियर घराने के बारे में कहा जाता है कि ग्वालियर घराने की गायकी अपने आप में एक समृद्ध गायकी है।
3: उस घराने की पहली एक स्पेशलिटी यानी मतलब था कि भाई जो गायक एक राग में
2: जी
3: अनेक ख्याल गा सकते हैं।
2: अच्छा।
3: कोई गायक वो ग्वालियर घराने में ऐसा रहते कि भाई एक यमन राग लिया है उसमें एक ही ख्याल आता है, एक द्रुत ख्याल आता है, एक बड़ा ख्याल आता है, उसे वो तो 15-15, 20-20 ख्याल एक एक रागों में बहुत आसानी से गाते याद करते थे।
2: ग्वालियर घराने का उपजंग के बारे में भी
3: ये
2: सुना है कि बहुत
3: उपजंग तो हर घराने में रहती है।
2: अच्छा।
3: हर कलाकार में होना चाहिए, लेकिन उपजंग क्या होता है वो समझना बड़ा,
2: जिसके जरा हमें समझाते हुए
3: इसको थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा।
2: वैसे
3: तो मैं थोड़ा बताता हूँ कि अभी एक समझो एक राग है जैसा केदार है।
2: अच्छा।
3: तो अभी आलाप में

0: रे, वो ले रे लगाने का जो तरीका है ना
1: जी,
0: एक उपजांग ही समझा जाता है कि वो हर एक अलाप में वो अलाप बढ़ाते बढ़ाते वो रे ऐसा ही लगाना चाहिए। अतः ये एक सुर का हो गया। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई उपज का एक सुरों का पुंज होता है, जैसा केदार में लेंगे ममर।

0: sari sari re sa sa.
1: Yeah.
0: Mama re sare sare re sa sa. अभी ये छोटा हो गया ना, इसमें ले में गा है। जब उसकी तान बनती है ना, मम हरे सा रे सा रे रे सा सा, मम हरे सा रे रे सा सा रे रे सा सा, पा पा मम हरे सा, मम हरे सा रे रे सा सा रे रे सा सा, धा धा पा धा पा पा मम पा पा मम हरे सा रे सा रे रे सा सा। ये जो उपज है ना, वो हमेशा के लिए ऐसा एक रूल था, यानी नियम था वो घराने में, कि जब एक उपज चालू हो गया तो उपज की पूर्तता वो आखिर में वही चीज आना चाहिए। तब उपज की पूर्तता हो गया
1: तो ग्वालियर घराने में भी आलाप और
0: ये सब बातें थी। आलाप बोल आलाप, पहले बोल आलाप, फिर बोल अंकित कुछ ताने,
1: कुछ ख्याल पर ज्यादा उनका ध्यान रहता था। ख्याल
0: हाँ, ख्याल तो याद करना बड़ा। ख्याल तो पहले, अगर ग्वालियर घराने में पहले ये नियम था कि जब कलाकार अपने स्टेज पे बैठ के प्रोग्राम देता था तो पहले वो ख्याल की बंदिश उसकी स्थाई दो दफे गा के लेगा, बाद में अंतर दो दफे गाएंगे, फिर उसके बोल आलाप जो भी कुछ गाने का ढंग होता है उस ढंग से चलेगा। बिना ख्याल पूरा गा के कभी वो गाना चालू नहीं करते थे। अगर ऐसा किया तो कुछ कलाकार ऐसे मानते थे कि उसको तालीम अच्छी नहीं है।
1: व्यास जी, ग्वालियर घराने के साथ साथ आपने आगरा घराने के सुप्रसिद्ध गायक पंडित जगन्नाथ बुआ पुरोहित से भी तालीम हासिल की।
0: बहुत।
1: तो अपने गायन में आपने आगरा घराने की गायन शैली के किन अंगों को अपनाया है?
0: राम सिंह साहब, एक बात है कि एक बात बताना पड़ेगा मुझे। जगन्नाथ बुआ पुरोहित, जिनका गाने में नाम था गुनीदास
1: जी, हाँ।
0: तो आगरा घराने में तो तालीम पाया
1: जी,
0: खासा है बुलाते विलायत हुसैन खा साहब के पास, बहुत सालों सीखते थे
1: जी।
0: लेकिन मैं जब बुआ साहब के पास गया तो इस सोच में नहीं गया था कि मैं आगरा घराने की गायकी सीखना चाहिए मुझे।
1: अच्छा, अच्छा।
0: लेकिन मैं उनके पास गया एक बात में कि भाई वो बहुत भावनिक गाते थे।
1: अच्छा।
0: खुद बुआ साहब
1: जी,
0: तो ये सुन के मुझे ऐसा लगा कि मेरे गाने में ये बात आना चाहिए। अभी इसको बहुत लोग ऐसे बोले थे कि क्या भावनिक गाना क्या होता है अभी, और ये ग्वालियर में नहीं था, आगरा में नहीं था, तो ये तो बताने की बात है। हम बोलेंगे वही ग्वालियर में क्या होता है, जमेली बोली जो बागोला बैगुंदेला मोरे वाले निया, जमेली बोली जो, ये ग्वालियर का पेताड़ा ही ऐसा है। वो सब गायकी ऐसी जाएंगे, थोड़ा सा इस तरीके से आगरा की जाएंगे, पहले ख्याल गाएंगे फिर ऐसे गाते जाएंगे, लेकिन उसमें भाव नहीं प्रकट होता है। जैसा भाव अगर वो जगन्नाथ बाबा जब गाना सुनेगा ना, तो वो एक भाव प्रकट होता था कि भाई कैसा भाव है,

0: सुर लगाने का तरीका और उसमें भाव प्रकट करना, यानी आप खुद कलाकार कुछ ऑडियंस को कहने को चाहता है ऐसा लगता है। वो इस बात को मैंने ध्यान देके और ये अपना चाहिए, इसके लिए भी बुआ साहब के पास।
1: आप जैसे कलाकारों ने तो अपने जीवन में वर्षों की सतत साधना की और तब जाकर किसी एक मकाम पर पहुंचे हैं। आज की जो तरुण पीढ़ी है वे संगीत को आज पूरा समय अर्पित नहीं कर सकते, मतलब जीवन यापन भी जरूरी है और साथ साथ ये भी आशा रखते हैं कि वो जल्दी से जल्दी सीख भी जाए, प्रसिद्धि भी पाले।
0: वो तो एक बड़ा ऐसा सवाल आप पूछा है, यानी बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना तो कह सकता हूँ कि आज के जो तरुण कलाकार है वो बड़े अच्छे हैं,
1: अच्छा
0: बड़े अच्छे गाने वाले हैं और बड़े टैलेंटेड हैं। लेकिन तालीम कहाँ से पाना चाहिए, कैसी पाना चाहिए और जो तालीम मिलती है वो अच्छी है या नहीं, ये जानने की कोशिश करना चाहिए। अगर वो जानकर वो जाएंगे और तालीम हासिल करेंगे कहाँ से, तो बड़े अच्छे गायक बन जाएंगे और अपना गुजारा भी उनके ऊपर कर सकते हैं। ऐसे ऐसे कोई यंगर टैलेंट है मेरे अच्छा। सामने
1: आप और बड़े आशावादी हैं कि भविष्य अच्छा, बड़ा उज्जवल है हमारा देश।
0: बहुत अच्छे अच्छे अच्छे यंगर जनरेशन में मैंने देखा है, बॉयज है, गर्ल्स है, बहुत अच्छे गाते हैं,
1: सीख रहे हैं।
0: लेकिन इतना ही बात है कि जैसे पुराने जमाने में तालीम एक बात होती है, वो तालीम नहीं पा सकते वो, और वो तालीम अच्छी तरह से पाना चाहिए उसने, देखना चाहिए कि भाई हम जो करते हैं वो ठीक तरह से करते हैं कि नहीं।
1: आपकी बातचीत में मैं इन बातों का पता चला कि एक तो निष्ठा की बड़ी आवश्यकता है, एकाग्रता और साधना,
0: ये सब बातों पे ही निर्भर है ये कला। अगर कोई निष्ठा नहीं रखेंगे, अपने गुरु से सीखते हैं लेकिन गुरु से निष्ठा नहीं रखते हैं, तो ये तो बात चलेगी नहीं।
1: व्यास जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। नमस्कार
0: भी आपका। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे पंडित सी आर व्यास से की गई भेंट वार्ता। भेंट वार्ता कर रहे राम सिंह पवार।

ये भेंटवार्ता वर्ष 1985 में विविध भारती से पहली बार प्रसारित हुई थी। प्रस्तुतकर्ता थी छाया गांगुली। आज पंडित सीआर व्यास हमारे बीच नहीं हैं, परंतु उनके विचार हैं जो हमने उनसे की गई भेंटवार्ता में सुने और उनका गायन भी हम सुनेंगे। लीजिए सुनते हैं पंडित सीआर व्यास का गाया राग बिहाग। बंदिश के बोल हैं ले जा रे जा पथिकवा। हारमोनियम संगत अनंत राणी की, तबला संगत विभव नागेश का है।

सीआर व्यास का गाया हुआ राग बिहाग आपने सुना। श्रोताओ, आज हमने पंडित सीआर व्यास से की गई भेंट वार्ता सुनाई है। इसके साथ ही अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम भूले बिसरे गीत बस कुछ ही पलों के बाद।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती भारत का गम एक्सपर्ट।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

0: बूट पॉलिश फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजें, शंकर जयकिशन का संगीत और बोल शैलेंद्र के।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: अमर फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, शकील बदायूनी के बोल नौशाद का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

नास्तिक फिल्म का ये गीत श्री रामचंद्र और लता मंगेशकर के साथ साथियों की आवाजों में आपने सुनी। कवि प्रदीप के ये बोल श्री रामचंद्र का संगीत। कार्यक्रम में वक्त एक अंतराल का।

आर पार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाज से मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। मुबारक बेगम की आवाज में ये गीत है रिश्ता फिल्म से, पंडित फानी ने इसे लिखा, के दत्ता का संगीत।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

आशा भोसले की आवाज में टैक्सी ड्राइवर फिल्म का ये गीत आपने सुना, साहिल ध्यानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में अब सुनते हैं मिलवा मंगल फिल्म से ये गीत, जिसमें आवाज है सीएच आत्मा की, डीएन मधुक के बोल, बुल्लो सिरानी का संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हम है राही प्यार के। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

0: अजरू सुल्तानपुरी के बोल आप सुन रहे थे बासु मनुहारी का संगीत, लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में सबसे बड़ा रुपया फिल्म का गीत आपने सुना।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। सुनिए मामा भांजा फिल्म से अगला गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, राजेश रोशन का संगीत।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में लैला मजनू फिल्म का गीत आपने सुना, साहिल लुधियानवी के बोल, मदन मोहन का संगीत। कार्यक्रम हम है राही प्यार के विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

से बढ़कर एक फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजें, वर्मा मलिक के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं हम है राही प्यार के विविध भारती पर, और इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में अगला गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं, राहुल देव बर्मन का संगीत, फिल्म ढोंगी, सुनिए ये गीत।

एफएम बैंड 102.1 MHz पर यह आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है। अब तक आप सुन रहे थे विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा से प्रसारित कार्यक्रम सवेरे के 8 बजने को हैं। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से

0: में समाचार रिले करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। क्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
3: Today we have a new national health policy.
4: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
3: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
1: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
5: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे, वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के DCP जोन 2 पवन बंसोड़ इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले TET के 4 पेपर जब्त किए है। आगे की जाँच हमारी चल रही है।
1: इस घटना के बाद आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
2: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
3: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
4: हमारे यहाँ 2 करोड़ कलेक्शन हो रहा है प्रतिदिन, 50 से 55 टन कचरे का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ संमिक्स हो गया, उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाग अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकुक पर हुए हमले के जवाब में अमरीका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमरीका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहैम और हैरी केन के एक एक गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप ए में ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल्स।

जी लवलीन, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सूली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफर सेन से हार गई। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की, तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जे

0: बाजी की तो गोवा के 14 वर्षीय एथनवाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा जुपोन सर्कल बिजनेस इम्प्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बैंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में है। देशबंधु कहता है, दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेंजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है, मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है, 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है, अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे, छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सनसिटी चैनल है। सवेरे के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम की शुरुआत में आप सुन रहे हैं शंकर महादेवन और शालमाली खोलगढ़े की आवाज में ये गीत, अन्विता दत्त के बोल, विशाल शेखर का संगीत और फिल्म का नाम गोरी तेरे प्यार में।

श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम का ये गीत आप सुन रहे हैं अली जाफर और श्रेया घोषाल की आवाज में, नीलेश मिश्रा के बोल, साजिद वाजिद का संगीत और फिल्म का नाम चश्मे।

श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम का यह आखिरी गीत आप सुन रहे हैं फिल्म बेशर्म से। ममता शर्मा और ऐश्वर्या निगम की आवाज, राजीव बर्णवाल के बोल और ललित पंडित का संगीत।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सनसिटी चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर सवेरे के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार।

0: श्रोताओं, दुनिया में रहने की सबसे अच्छी दो जगह हैं, या तो किसी के दिल में या फिर किसी की दुआ में।
1: दिल में और दुआओं में रहने की बात हो रही है तो दोस्तों, एक खूबसूरत दिल हजार खूबसूरत चेहरों से बेहतर है। वन ब्यूटीफुल हार्ट इज बेटर देन अ थाउजेंड ब्यूटीफुल फेसेस, यानी कि एकम सुंदरम हृदयम सहस्त्रम सुंदरम मुखम श्रेष्ठम।

0: तो इन्हीं खास पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा शो जिसे हम और आप मिलकर कहते हैं नमस्कार। श्रोताओं, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और मेजबान हिमांशु अवस्थी और मेरे साथ मौजूद हैं
1: न्यू नूतन सोनी।
0: दोस्तों नमस्कार एक ऐसा शो है जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण अपने साथ एक नई उम्मीद, एक नई सोच और एक नया मौका लेकर आती है। हर दिन हमें एक नया मौका देता है खुद को पहले से बेहतर बनाने का, अपनी गलतियों से सीखने का और जिंदगी को एक नई नजर से जीने का। तो आइए इस नई सुबह की शुरुआत करें एक शांत मन के साथ, सकारात्मक सोच के साथ और अनगिनत उम्मीदों के साथ। लेकिन इस सफर में आगे बढ़ने से पहले आइए मिलते हैं उन खास लोगों से जो पर्दे के पीछे रहकर अपनी मेहनत से इस पूरे सफर को और भी ज्यादा खूबसूरत और रोमांचक बनाते हैं सिर्फ आपके लिए, यानी हमारी तकनीकी टीम से।
1: तो आज के इस सफर को खूबसूरत बनाने के लिए जो टेक्निकली टीम हमारे साथ है उसमें ट्रांसमीटर पर है पारसपुरी गोस्वामी और कैलाश चंद्र सोलंकी। वहीं कंट्रोल रूम से हमारे साथ बने हुए हैं सुनील जयपाल। दोस्तों अनाउंसर ऑन ड्यूटी यानी कि कंसोल पर उंगलियां थिरकाते हुए आज हमें म्यूजिकल ट्रैक जो सुनाएंगे वो है शराफत अली। और एफएम पर उद्घोषक है सत्येंद्र। और पूरे कार्यक्रम का संयोजन किया है यानी कि कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है राजेश लामरोड़।

तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक नई सुबह नई जानकारी और बेहतरीन संगीत के साथ आने वाले सफर के लिए, क्योंकि नमस्कार में अब हर पल होगा खास।

0: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहां कहां इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, फाल लिंक रोड, जोधपुर। पथरी

0: कोविड से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS वचिरंजीवी योजना के अंतर्गत निशुल्क ऑपरेशन, पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबरा कर अपनी आँखों की सर्जरी ना टाले, विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: दोस्तों, जिंदगी में बहुत सी चीजें हमारे पास आती हैं और चली जाती हैं। पैसा आता है, शोहरत आती है, पद भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, लेकिन एक चीज अगर एक बार चली जाए तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो है लोगों का भरोसा। और भरोसा बनता है आपके ईमानदारी से।
1: दोस्तों, ईमानदारी एक ऐसी क्वालिटी है, लॉयल्टी, जो इंसान को कहीं ना कहीं, आपने नोट किया होगा, भीतर से मजबूत बनाती है, और धन, पद और प्रसिद्धि, तो ये तो क्या चीजें हैं कि समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से कमाया गया सम्मान जो है ना, वो जीवन भर साथ रहता है। और ईमानदारी जो है, व्यक्ति को भले ही सफलता मिलने में थोड़ा उसमें समय लगे, लेकिन उसकी जो सफलता फिर मिलती है वो बड़ी स्थायी, और स्थायी होने के साथ साथ सम्मानजनक भी होती है।
0: दोस्तों, सच की राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन लेकिन मंजिल वही मिलती है जहाँ ईमानदारी का नूर होता है।

0: दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं ईमानदारी की, उन अहमियत की और उन छोटी छोटी बातों की जो हमें अक्सर एक बेहतर इंसान बनाती हैं। तो आखिर ईमानदारी होती क्या है? दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि ईमानदारी का मतलब सिर्फ सच बोलना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ईमानदारी का मतलब होता है अपने काम को पूरी लगन से करना, किसी का हक ना मानना और गलत रास्ता ना अपनाना और अपने दिल की आवाज़ सुनना। अगर कोई हमें नहीं देख रहा और फिर भी हम अपना काम सही तरीके से करते हैं तो वही असली ईमानदारी है।
1: और बिल्कुल, ईमानदारी जो है केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी होनी चाहिए। जब हम अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों और अपने जो कर्तव्य होते हैं उनको पूरी लगन के साथ निभाते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में ईमानदार कहलाते हैं। और दोस्तों, आज के दौर की बात करें तो जहां कई बार लोग जल्दी सफलता पाने के लिए गलत रास्ते चुन लेते हैं, वहीं ईमानदारी हमें सही दिशा दिखाती है। और ईमानदार व्यक्ति जो होता है ना, वो रात को सुकून की नींद सोता है क्योंकि उसे अपने कर्मों का कोई पछतावा नहीं होता है। और अक्सर दोस्तों हम सुनते हैं ना कि कर्म जो है लौटकर जरूर आते हैं। हमें जब ये कोई लाइन कहे कि कर्म लौटकर आते हैं तो ये सुनकर हमें डर ना लगे, हमें सुकून महसूस हो।

दोस्तों, ईमानदारी की दौलत बड़ी अनमोल होती है। जिसके पास होती है उसकी पहचान अलग होती है। इसी पर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, तो क्यों ना अपने श्रोताओं के साथ साझा कर दूं। दोस्तों, एक लकड़हारा नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। भगवान प्रकट हुए और उन्होंने सोने की कुल्हाड़ी दिखाई। लकड़हारे ने कहा, नहीं, ये मेरी नहीं है। फिर चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई। उसने फिर मना कर दिया कि नहीं, ये मेरी नहीं है। आखिर में उसकी असली लोहे की कुल्हाड़ी दिखाई गई तो वो खुशी से बोला, हाँ, ये मेरी है। उसकी ईमानदारी देखकर भगवान ने तीनों कुल्हाड़ियां उसे दे दी। दोस्तों, कहानी

0: छोटी है लेकिन सीख बहुत बड़ी। ईमानदारी का फल देर से जरूर मिलता है लेकिन मिलता जरूर है।
1: बिल्कुल दोस्तों, स्टूडेंट्स हो चाहे एम्प्लॉय हो या बिजनेसमैन हो या ऑफिसर हो, हर एरिया में ईमानदारी सफलता की एक तरह से मजबूत नींव होती है। परीक्षा में नकल करके अच्छे अंक तो मिल सकते हैं लेकिन ज्ञान नहीं, और बिजनेस में छल कपट से प्रॉफिट ज्यादा कमाया जा सकता है लेकिन ग्राहकों का विश्वास नहीं। ईमानदारी हमें आत्मविश्वास देती है, कॉन्फिडेंस। जब हम सच बोलते हैं ना और सही काम करते हैं तो हमें किसी बात का डर बिल्कुल नहीं रहता। यही आत्मविश्वास हमें जीवन की चुनौतियां का सामना करने की शक्ति देता है।

0: दोस्तों झूठ के पांव भले तेज चले मगर दूर तक नहीं जाते, सच के कदम धीरे सही मगर मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं।
1: श्रोताओं 9 बजने वाले हैं, हम एक न्यूज ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर से लौटेंगे इस कार्यक्रम में 9:10 पर।

हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी और एफएम सन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ट्ज पर सवेरे के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिसे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किया जाएगा।

नमस्कार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल पचपदरा रिफाइनरी के 4 जुलाई को प्रस्तावित प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी

0: मुख्यमंत्री समीक्षा के लिए आज रिफाइनरी जाएंगे। पल्स पोलियो रविवार पर आज प्रदेश भर में 1 करोड़ बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने का लक्ष्य और मौसम में बदलाव के बीच तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। कृषि विभाग ने खरीफ बुआई के लिए तेज बारिश का इंतजार करने की सलाह दी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनने को लेकर हर बार की तरह लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जगह जगह कार्यक्रम के सामूहिक प्रसारण की व्यवस्था की गई है। प्रदेश भाजपा की ओर से पार्टी कार्यालयों और अन्य स्थानों पर कार्यक्रम का सजीव प्रसारण रखा गया है। प्रधानमंत्री आज सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स की 3 दिन की यात्रा पर कल दोपहर विक्टोरिया पहुंचे। हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति हरमीनी ने उनका स्वागत किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने सेशेल्स को हिंद महासागर में भारत का एक अहम समुद्री साझेदार और करीबी दोस्त बताते हुए कहा कि उन्हें इस यात्रा से अच्छे नतीजों की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते और मजबूत होंगे। बालोतरा में पचपदरा स्थित राजस्थान रिफाइनरी के 4 जुलाई को प्रस्तावित प्रधानमंत्री दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इंतजामों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज रिफाइनरी पहुंचेंगे और कार्यक्रम स्थल तथा रिफाइनरी का निरीक्षण करेंगे। हमारे बालोतरा संवाददाता ने बताया कि कार्यक्रम की सुचारू व्यवस्था और किसी भी अप्रिय स्थिति को टालने के लिए जिला प्रशासन के साथ HPCL भी अलर्ट मोड पर बना हुआ है।
1: प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को अंतिम रूप देने की दृष्टि से मुख्यमंत्री का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रिफाइनरी परिसर में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा, आगंतुकों के प्रवेश पास, प्रोटोकॉल तथा अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि कार्यक्रम का सफल एवं सुचारू संचालन किया जा सके। गौरतलब रहे कि रिफाइनरी का लोकार्पण पहले 21 अप्रैल को होना था, लेकिन उद्घाटन से एक दिन पहले एक यूनिट में आग लगने की वजह से वो कार्यक्रम टल गया था। करीब 90,000 करोड़ की लागत से निर्मित ये BS6 मानक की अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी प्रदेश की सबसे बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में से एक है। बंसीलाल चौधरी, आकाशवाणी समाचार, बालोतरा।
0: वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 आज प्रदेश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 269 पदों के चयन पर सुबह 11 बजे से 1 बजे तक एक पारी में ये परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा के सफल, सुचारू और पारदर्शी संचालन के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। केंद्रों पर CCTV निगरानी, वीडियोग्राफी, बायोमेट्रिक सत्यापन और मेटल डिटेक्टर जांच के साथ ही आवश्यक पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज पल्स पोलियो रविवार है। देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए 3 दिन के इस राष्ट्रीय अभियान के तहत 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों सहित 59,000 से अधिक पोलियो बूथों पर ये दवा पिलाई जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. जोगाराम ने बताया कि इस अभियान में मोबाइल और टीमें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक तथा अन्य आवागमन स्थलों पर भी बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की दवा देंगे। टीकाकरण परियोजना निदेशक डॉक्टर रघुराज सिंह ने बताया कि अभियान के तहत प्रदेश के

0: एक करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है।
1: इस अभियान के अंतर्गत हमने 1.04 करोड़ बच्चों को पोलियो के खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए राजस्थान प्रदेश के अंदर हमने 60,000 के करीब बूथ बनाए हैं जहाँ पर कि हम बच्चों को दवा पिलाएंगे। किसी कारण अगर दवा पीने से बच्चे छूटे तो फिर हम दूसरे दिन और तीसरे दिन घर घर जाकर भी उन बच्चों को ढूंढ करके उनको भी हम ड्रॉप पिलाएंगे जिससे कि हमारे सभी बच्चे सुरक्षित रहे। मैं उम्मीद करता हूँ सभी अभिभावकों से कि वो सभी अपने बच्चों को ये ड्रॉप आवश्यक रूप से पिलाएं।
0: गौरतलब है कि भारत में साल 1995 में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई थी। बीते 15 वर्षों में देश भर में कोई भी पोलियो का नया केस सामने नहीं आया है। 27 मार्च 2014 को भारत को पल्स पोलियो मुक्त प्रमाण पत्र मिल चुका है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापन के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि सरिस्का कभी बाघ पूरी तरह विलुप्त हो गए थे लेकिन अब वहां 53 बाघों का निवास है। उन्होंने इसे प्रकृति के पुनरुद्धार, वैज्ञानिक संरक्षण और सामूहिक संकल्प का एक प्रेरणादायक उदाहरण बताया। इस बीच केंद्रीय मंत्री आज संबंध में अलवर में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। कार्यक्रम में बाघों के पुनर्स्थापन में योगदान और उल्लेखनीय सेवा देने वाले वनकर्मी, एनजीओ और पर्यावरण कार्यकर्ता भी शामिल हो रहे हैं। और अब मौसम। प्रदेश में मॉनसून पूर्व की बारिश और मौसम में बदलाव के बीच तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। राज्य भर में कई स्थानों पर हल्की बारिश के बीच किसानों ने खेतों में खरीफ फसलों की बुवाई की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कृषि विभाग ने किसानों को बुवाई के लिए कुछ अच्छी बारिशों का इंतजार करने की सलाह दी है जिससे जमीन में नमी बनी रहे। कृषि विज्ञान केंद्र जैसलमेर के प्रभारी दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि किसानों को जल्दबाजी में बुवाई से बचना चाहिए।
2: तब हमने जो बिजाई करनी है तो उसमें ध्यान रखना है कम से कम हमारी एक या दो अच्छी बरसात हो जाए तो उसमें क्या है कि हमारे जो जमीन की हीट निकल जाएगी, वरना अगर जमीन गर्म रहेगी तो हम कोई भी बिजाई कर देते हैं तो उससे हमारे जो बीज है उसके बीज की पैदावार कम होने का, बीज खराब होने के ना चांस बने रहेंगे। तो किसान भाई ये ध्यान रखें कि जब तक बरसात अच्छी नहीं हो, अगर देसी भाषा में कहें तो 5-6 उंगल बरसात नहीं हो तब तक ना किसानों को अब क्या बिजाई की तरफ नहीं जाना चाहिए।
0: इस बीच मॉनसून की गतिविधियां आगे बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी भारत के कई भागों में आज तेज बारिश तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने दक्षिण और मध्य भारत के राज्यों में भी अगले दो दिन में तेज बारिश की संभावना जताई है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली कड़कने और तेज हवा का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने मीडिया पर प्रसारित हो रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 सैनिकों की शहादत को हाल ही में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया है। मंत्रालय ने बताया कि तत्कालीन सैन्य संचालन महानिदेशक ने पिछले वर्ष 11 मई को आधिकारिक प्रेस वार्ता में 6 शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। गौरतलब है कि देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले इन 6 जवानों में झुंझुनू जिले के मेहरादासी गांव के सुरेंद्र मोगा भी शामिल हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल। पचपदरा रिफाइनरी के 4 जुलाई को प्रस्तावित प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी। मुख्यमंत्री समीक्षा के लिए आज रिफाइनरी जाएंगे। पल्स पोलियो रविवार पर आज प्रदेश भर में 1 करोड़ बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने का लक्ष्य। और मौसम में आए बदलाव के बीच तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। कृषि विभाग ने खरीफ बुआई के लिए तेज बारिश के इंतजार करने की सलाह दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

माय डियर रेडियो लवर्स, समाचार के बाद आपका फिर से स्वागत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में, जिसमें बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी जानकारियां आपसे शेयर करते हैं और सुनते हैं ढेरों गीत। आइए अब सुनते हैं एक नगमा।

0: सा आगे बढ़ते हैं श्रोताओं और बात करते हैं 28 जून 1894 की। इस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड ने लेबर डे यानी कि मजदूर दिवस को आधिकारिक राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए। ये निर्णय पुलमैन हड़ताल के बाद श्रमिकों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने और उनके योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से लिया गया था।
1: श्रोतों 28 जून 1919 को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए जिसने प्रथम विश्व युद्ध का औपचारिक अंत किया। फ्रांस के वर्साई महल के प्रसिद्ध हॉल ऑफ मिरर्स में हुई इस संधि के तहत जर्मनी पर कठोर आर्थिक और भौगोलिक प्रतिबंध लगाए गए। इतिहासकार मानते हैं कि यही कठोर शर्तें आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि बनने का एक प्रमुख कारण बनी।
0: जून 2005 की तो इस दिन रूस और ईरान के बीच परमाणु सहयोग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। इस समझौते के तहत रूस ने बुशहर परमाणु रिएक्टर के लिए 10 वर्षों तक परमाणु ईंधन की आपूर्ति करने पर सहमति दी, जिसे दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक कदम माना गया। श्रोताओं,
1: तो दोस्तों ये थी 28 जून से जुड़ी कुछ ऐतिहासिक घटनाएं जिन्होंने अपने समय में दुनिया की राजनीति, समाज और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर एक गहरा प्रभाव डाला।

दोस्तों, इतिहास सिर्फ बीते हुए समय की कहानी नहीं होता, बल्कि हमें बताता भी है किन किन घटनाओं ने दुनिया की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया। तो आइए जानते हैं 28 जून को इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। श्रोताओं, 28 जून 1838 को सिर्फ 19 साल की आयु में महारानी विक्टोरिया का भव्य राजाभिषेक लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे में हुआ था। यह समारोह ब्रिटिश इतिहास में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक बना। इस ऐतिहासिक अवसर को देखने के लिए लगभग 4 लाख लोगों से ज्यादा लोग सड़कों पर उमड़ पड़े थे।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: श्रोताओं, वक्त है आज की काम की बात को जानने का। इस सेगमेंट में हम बात करते हैं ऐसी जानकारियों की जो छोटी जरूर होती हैं, लेकिन सही समय पर वही जानकारी हमें बड़े नुकसान से बचा सकती है। श्रोताओं, आज के समय में तकनीक जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से साइबर ठगी के तरीके भी बदल रहे हैं। इसलिए जागरूक रहना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो आइए जानते हैं आज काम की बात में, आज की काम की बात है फेक कॉल और डिजिटल अरेस्ट स्कैम से कैसे बचे। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा कॉल आया है जिसमें कहा गया हो कि आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ है या आपके नाम से कोई अवैध पार्सल पकड़ा गया है? अगर ऐसा हुआ है आपके साथ तो सावधान हो जाइए, ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम हो सकता है। आज का ठग खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी, कस्टम्स या किसी सरकारी अधिकारी के रूप में बताते हैं और वो डर का माहौल पैदा कर देते हैं और कहते हैं कि आपके खिलाफ केस दर्ज हो गया है। फिर आपसे वीडियो कॉल पर बने रहने, बैंक की जानकारी देने या तुरंत पैसे ट्रांसफर करने के लिए दबाव डालते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, भारत में कोई भी सरकारी एजेंसी फोन या वीडियो कॉल पर किसी को भी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है।
2: बिल्कुल श्रोताओं, और अगर कोई व्यक्ति आपको धमकाए, जल्दबाजी में फैसला लेने को कहे, ओटीपी मांगे, बैंक की जानकारी पूछे या ऐसे ट्रांसफर करने के लिए कहे, तो तुरंत समझ जाइए कि यह धोखाधड़ी है। ऐसी स्थिति में घबराए नहीं श्रोताओं, कॉल तुरंत काट दें, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें और इसकी शिकायत करें। याद रखिए, ठगों का सबसे बड़ा हथियार आपका डर है, लेकिन आपकी जागरूकता उसकी सबसे बड़ी हार है।

0: सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रसुख एक तरफ।
1: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियाँ उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन, डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
3: पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्लाह स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।

0: श्रोताओं, रविवार की सुनहरी बेला, मन में भर दे नया उजाला, भाग दौड़ से मिले जो फुर्सत, जीवन लगे फिर से निराला, चाय की प्याली, मीठी बातें, हंसी खुशी के प्यारे नाते, अपने पन की गर्माहट लेकर रिश्ते फिर मुस्काते जाते, कुछ पल अपने कुछ अपनों के, कुछ सपनों को दे दे उड़ान, रविवार कहता है सबसे, जी लो हर पल, रखो मुस्कान। तो श्रोताओं, रविवार सिर्फ छुट्टी नहीं होती, जीवन को जीने का एक अलग तरीका होता है, और थोड़ा ठहरना, थोड़ा संवरना और थोड़ा सा खुशी का परिवेश बनाना घर में, बस यही रविवार होता है। आप तो समझ गए होंगे कि अब हम हमारे सेगमेंट मेहमान का रविवार की ओर बढ़ रहे हैं, और आज हम जुड़ रहे हैं चैन सिंह महेचा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाली से, और जानेंगे उनके रविवार के बारे में, कैसा होता है उनका रविवार। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो,
1: नमस्कार, जय हिंद।
0: नमस्कार सर, जय हिंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में।
1: धन्यवाद
0: जी सर। सबसे पहले हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे सर, जैसे पुलिस सेवा में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, और पुलिस अधिकारी बनने का आपका सफर कैसा रहा सर?
1: मैं एक पुलिस अधिकारी का पुत्र हूँ, तो निश्चित रूप से मेरे प्रेरणा के स्रोत मेरे स्वर्गीय पिताजी जालम सिंह जी महेचा, जो डिप्टी एसपी थे, उनकी प्रेरणा से ही मैंने पुलिस विभाग में प्रवेश किया। और वैसे देखा जाए तो हमारे पूर्वज, मैं बाड़मेर जिले से हूँ, हमारे पूर्वज भी क्षत्रिय थे, तो उनका एक धर्म था राष्ट्र रक्षा, देश की सेवा, और बॉर्डर एरिया के रहने वाले थे हम लोग। इस कारण से ये प्रेरणा अनुवांशिक रूप से आप मान सकते हैं, पारिवारिक मान सकते हैं, राष्ट्र धर्म के रूप में उत्तरदायित्व मान सकते हैं। तो इन्हीं

0: गुणों के कारण उत्तरोत्तर मेरे में भी ये भाव आया कि मैं अपनी कौन सी दिशा से अपना कैरियर शुरू करूं। तो कॉलेज में इकोनॉमिक्स में टॉपर रहते हुए अर्थशास्त्र विभाग के हमारे एचओडी थे, उन्होंने मुझे कहा कि चैन सिंह तो लेक्चरर बन जा एमफिल पीएचडी आगे कंप्लीट करके। तो उसी दौरान मेरा जब सिलेक्शन हुआ पुलिस में, तो मैंने सर को बताया, एचओडी जो अर्थशास्त्र के थे एसी एंग्रेस
1: एंग्रेस
0: सर को बताया, तो उन्होंने कहा अरे तू कहाँ पुलिस में जा रहा है, तो वो लेक्चरर बन यूनिवर्सिटी में और अच्छी सेवा है। तब मैंने ये कहा, मैंने कहा सर मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि युवाओं में कुछ कानून व्यवस्था के प्रति जो लापरवाही टाइप मुझे दिख रही है कॉलेज में भी, तो मैं चाहता हूं कि युवाओं में अनुशासन रहे, देश में शांति रहे, उन्नति रहे, और मेरे पिता भी पुलिस में थे तो मैं पुलिस सेवा में जाना चाह रहा हूं, और इस तरह से मेरा पुलिस का कैरियर प्रारंभ होता है।
1: यानी कि सकारात्मक बदलाव लाने का एक तरह से आप में जुनून रहा सर।
0: जी यही भाव रहा मेरे में, मैंने देखा कि राष्ट्र के लिए एक आदर्श समाज का निर्माण पहले होना चाहिए, आदर्श समाज में एक अनुशासित युवा का निर्माण होना चाहिए, तो वो सब गुण स्कूल से कॉलेज तक बच्चों में आने चाहिए, और चाहे वो आगे किसी भी सेवा में जाए अनुशासन को अपना एक मेन ध्येय या दूरी बनाए, तभी एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है।
1: और सर कहते भी हैं कि अनुशासन जो है वो सफलता की एक तरह से कुंजी होता है।
0: जी
1: सर
0: बिल्कुल आपने सही फरमाया।
1: एक पुलिस अधिकारी का सामान्य दिन कैसा होता है सर, सप्ताह के जो 7 दिन?
0: एक पुलिस अधिकारी के लिए वैसे देखा जाए तो सोमवार और रविवार में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि राजस्थान पुलिस की ही बात नहीं करें, अपन पूरे भारतवर्ष में भी पुलिस का जो दिनचर्या है वो इसी तरह से है कि उन 24 घंटे और 7 दिन वो काम करते हैं, जिसको हार्ड ड्यूटी कहते हैं। तो गवर्नमेंट भी नियमानुसार मानती है कि पुलिस हार्ड ड्यूटी करती है, और सिपाही से लगाकर इंस्पेक्टर तक हार्ड ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है। तो जब हम सेवा में आते हैं तभी हमारे को पता है कि हमारे को काम कैसे करना है, हम विश्राम तभी करते हैं नियमानुसार भी, या जिसको आप कह सकते हैं कि पुलिस एक्ट के अंतर्गत भी, और ड्यूटी की दिनचर्या भी मान लें, विश्राम हम तभी कर सकते हैं कि जब कोई इमरजेंसी नहीं हो। कार्य में अगर आपको अवसर मिले तो आप अपने बैरेक में या निवास में जाके विश्राम कर सकते हैं। तो कई बार हमारा रविवार सोमवार से भी डिफिकल्ट हो सकता है, और रविवार के दिन लोगों की एक्टिविटी वैसे बढ़ जाती है, रोड पे भी ट्रैफिक बढ़ जाता है, लोग फंक्शन करते हैं, इवेंट्स करते हैं, इस कारण से रविवार को कई बार पुलिस का उत्तरदायित्व ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पुलिस को यातायात व्यवस्था देखनी पड़ती है, कानून व्यवस्था देखनी पड़ती है, बड़े बड़े आयोजनों में उनको अपना डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है, तो रविवार जैसा भाव नहीं होता। हाँ ये जरूर है कि जो ऑफिस वाले ऑफिसर्स हैं जैसे RPS एंड अबव, उनके ऑफिस में वो उस दिन अल्प विश्राम के लिए मान सकते हैं कि ऑफिस में नहीं होंगे तो निवास में हो सकते हैं, पर टेलीफोन से वायरलेस हेड से राउंड द क्लॉक वो जुड़े हुए रहते हैं, और जब फील्ड में जाना होता है तो ऑफिसर्स भी 24 घंटे काम करता है। रविवार के दिन अगर समय मिला तो परिवार इंतजार करता है कि हमारे साथ कुछ पल बिताएंगे या हमारे कुछ निजी कार्यक्रमों में हम शरीक होंगे, तो ऐसा भी हम प्लान करते हैं कई बार परिवार के साथ में कि आज रविवार है, आज हो सकता है काम का लोड कम होगा तो घर के ये काम करेंगे, या बच्चों के साथ में कहीं बाहर जाएंगे या सामाजिक कार्य करेंगे, तो कई बार उन योजनाओं में सफलता भी मिल जाती है, और कई बार जो है परिवार इंतजार ही करता रहता है कि अभी कहीं चलना है, और हम फोन पे उनको बताते हैं कि सॉरी आज अपन जा नहीं पाएंगे, आज ये ड्यूटी आ गई है या ये केस हो गया या कहीं मर्डर हो गया है, तो वो हमारे हजारों प्रोग्राम जिंदगी में डेफर भी हुए हैं, पर परिवार ने कॉम्प्रोमाइज करना पुलिस की सर्विस के साथ में सीख लिया है, और कहीं ना कहीं हम समय जरूर निकाल लेते हैं, चाहे सोमवार को निकले चाहे रविवार को निकले, ऐसा ही कुछ तालमेल करके ही जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं, पर खुशी होती है कि हम समाज के लिए काम करते हैं। अगर परिवार का कोई काम डेफर भी हो जाए और उस काम का पल आपको आपने समाज को दे दिया, तो वो एक बहुत ही बड़ा एहसास अपने दिल में होता है और परिवार को

0: भी खुशी होती है, उनकी हैबिट में आ गया, उनकी आदत में आ गया कि अपने को किस तरह से पुलिसिंग के साथ में जीवन को आगे बढ़ाना है।
1: और यदि सर संडे कभी आपको विश्राम का दिन अगर बन जाए संडे, तो फिर उस संडे की शुरुआत कैसे होती है सर सुबह सुबह?
0: संडे या रविवार अगर हम फ्री हैं, अगर उस दिन लगता है कि आज परिवार को ही समय देना है,
1: जी सर,
0: सवेरे अपनी धर्मपत्नी जी के साथ में, मधु है मेरी पत्नी का नाम, उसके साथ में तसल्ली से चाय पीते हैं और परिवार की बातें या कुछ कई हो सकता है, कई बार तो वो 10-15 दिन से इंतजार करती है मेरे साथ में कि जब फ्री होंगे, जब बैठ के तसल्ली से बात करेंगे, तो वो तसल्ली के क्षण जो वो आराम क्षण चाय के साथ में
1: यानी कि
0: आरंभ करते हैं।
1: चाय की मिठास और मधु जी तो अपने आप में मिठास लिए हुए होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल आपने सही फरमाया। और हमारा जो सेटअप रहता है घर का और ऑफिस का, तो जैसे मेरा ऑफिस और मेरा घर दोनों कनेक्टेड हैं, इस कारण से, और बीच में कुछ पेड़ पौधे भी हमने लगा रखे हैं और आउट हाउस बना हुआ है, तो हम बाहर टेंट में चले जाते हैं और टेंट में जाके और प्रकृति के बीच में कुछ पल बिताते हैं। तो उस एक घंटा भी अगर हमारे को मिल जाता है इस तरह से, कुछ काम का डिस्कशन भी हो जाता है, बच्चों के बारे में बात हो जाती है, तो वो एक दो घंटा भी अगर हमारे को मिल गया तो हम सोचते हैं कि आज हमने काफी आराम कर लिया, रिलैक्स कर लिया। उसी दौरान जो है मॉर्निंग रिपोर्ट्स के रजिस्टर भी आ जाते हैं, कुछ वायरलेस सेट पे कॉल भी आ जाते हैं, कोई किसी पीड़ित का कॉल भी आ जाता है, तो वो अपने पल के बीच में कुछ कुछ सरकारी कार्य भी चलते रहते हैं। निरंतरता तो हमेशा ही बनी रहेगी हमारे को, किसी भी कॉल को हम इग्नोर नहीं करते हैं। इवन मेरे ऑफिस आवर्स के बाद में भी मकान पे भी कुछ परिवादी कभी आ जाते हैं, तो उनको भी हम पुलिस स्टेशन भेजना या उनके लिए आगे क्या प्रोसीड करना है, उनको हेल्प करना, ये सब चीजें चलती रहती है। पुलिस के पास में आजकल व्हाट्सएप के कारण या मोबाइल के कारण भी लोग 24 घंटे कॉल करते रहते हैं, सीनियर ऑफिसर भी कॉल का जवाब देंगे, तो ये पुलिस का उत्तरदायित्व तो और समाज की सेवा और परिवार के बल, ये सब कॉम्बिनेशन करके एक मॉडल की तरह हम काम करते हैं, तभी जीवन में हम अपना निजी जीवन और सरकारी जीवन या सार्वजनिक जीवन इस सबको मिलके एक अच्छी तरह से हम चला पाते हैं।
1: जी सर, काम की बात चली है तो पुलिस के काम को लेकर लोगों में कौन सी सबसे बड़ी गलत फहमियां हैं सर आपके हिसाब से?
0: गलत फहमियां तो लोग ही बता पाएंगे कि वो पुलिस के बारे में क्या गलत फहमियां रखते होंगे, पर कई बार हम खुद भी रियलाइज करते हैं कि लोग अपने मुंह से बोलते हैं कि सर हमने तो सोचा था कि पुलिस बहुत कठोर होगी, पुलिस हो सकता हमारी सुनवाई नहीं करेगी, क्योंकि उनका जिंदगी में कभी पुलिस से काम नहीं पड़ा। ऐसा जो नेगेटिव परसेप्शन है वो लोग रखते हैं जिनका पुलिस से कभी काम नहीं पड़ा।
1: हाँ, एग्जैक्टली।
0: कुछ लोग जब किसी क्राइम के कारण, किसी निजी प्रॉब्लम के कारण जब पुलिस से कनेक्ट होते हैं और पुलिस की प्रक्रिया जब वो देखते हैं, तब उनको रियलाइज होता है कि पुलिस कैसे काम करती है, राउंड द क्लॉक उनसे कैसे कनेक्ट होती है। जैसे किसी का बच्चा अगर गुम हो गया, किसी का बच्चा लापता हो गया,
1: जी सर,
0: या किसी जगह पे परिजन कहीं दूर है और उनके किसी भी रिलेटिव का कहीं दूर एक्सीडेंट हो गया, उसके साथ में कोई घटना हो गई, कोई लूट हो गई, कोई और किसी भी प्रकार का अपराध हो गया, तब वो पुलिस से कनेक्ट होते हैं। उनको मालूम पड़ता है कि पुलिस किस तरह से राउंड द क्लॉक काम करती है और वो कैसे चाहते हैं। जैसे एक आपात सेवा है, चिकित्सा सेवा या पुलिस सेवा, इमरजेंसी सेवाएं हैं, और इन सेवाओं में जब लोगों का काम पड़ता तब उनको मालूम पड़ता है कि ये कैसे अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, किस तरह से जो है वो अपना सब निजी काम, अपने सब समस्याएं या अपनी छुट्टी या अपने रविवार, इन सब को त्याग करके और वो लोगों से जुड़ते हैं। और जब इमरजेंसी आती है तो उसमें समय नहीं देख सकते आप, आपको 24 घंटे उस चीज को आगे अंजाम तक पहुंचाना होता है, अन्यथा बहुत विलंब हो जाता है, किसी के साथ में अन्याय हो सकता है, किसी की जिंदगी के साथ में खिलड़ाव हो सकता है, या बहुत सारी चीजें बदल सकती है।
1: जी सर, आपके ड्यूटी के लिए डेडिकेशन को हम सलाम करते हैं।

0: हम फिर से आपको जो है जब आप विश्राम के टाइम फैमिली मैन होते हैं उसकी तरफ ले जाना चाहेंगे। सुबह की चाय के बाद आप थोड़ा सा किचन की तरफ भी रुख करते हैं।
1: किचन तो मेरी श्रीमती जी संभालती है मधु,
0: जी
1: और वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। और कुछ जिंदगी के पल जो मैं हमेशा याद रखूंगा मेरी सेवा के साथ में, उनकी भी सेवाएं रही वो ऐसे कि मैं अगर रात में 1 बजे भी आऊंगा तब भी वो मुझे गर्म खाना ही खिलाती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने खाना बना के रख दिया और मुझे जो है मैं बोलता हूँ कि आप रख दिया करें, मैं जब भी आऊंगा ले लूंगा, परंतु नहीं, वो हमेशा इस तरह से ही मुझे ताजा खाना बना के खिलाती है, चाहे 24 घंटे में मेरे को कभी भी लंच करना हो या डिनर करना हो। और अगर मैं घर नहीं आ सकता हूँ तो फिर अगर टिफिन भी भेजेगी तो वो बना के तुरंत भेज देगी, और हो सकता है दोनों स्थितियां नहीं है तो बात अलग है। तो उन्होंने अपना जो रसोई का दायित्व है वो बखूबी निभाया है। और इवन जैसे कई बार मैं जब आता हूँ, मेरे साथ में पुलिस कार में मेरा स्टाफ भी होता है, ड्राइवर होता है, गनमैन होता है, और भी एक्स्ट्रा स्टाफ हो सकता है, तो न केवल मेरे लिए बल्कि उन सबको भी वो ताजा खाना बना के जिमाएगी कि आप भी साहब के साथ में खाना जिम लो, फिर अलग से आपको समय नहीं मिलेगा। तो परिवार, हम पुलिस स्टाफ को भी अपने परिवार से कनेक्ट करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम जब साथ रहते हैं तो वही हमारा परिवार है, ये फीलिंग ये भाव रहता है, तभी हम कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, हमारा स्टाफ हमारे जवान, किसी भी परिस्थितियों में, चाहे वो गोली चलने की स्थिति हो चाहे विकट परिस्थितियां हो, हम एक पुलिस परिवार की तरह काम करते हैं, ये भाव हमारे परिवार तक भी जुड़े होते हैं, चाहे मेरा परिवार है चाहे मेरे सबॉर्डिनेट का परिवार है, हम सब इस भाव से काम करते हैं।
0: जी सर, आपके प्रोफेशन में जैसे हम बात करके जान पा रहे हैं, तनावपूर्ण परिस्थितियां भी बनती ही होंगी, तो उनमें आप स्वयं को कैसे शांत और संतुलित रखते हैं? और इसमें कहीं ना कहीं विश्राम का दिन, हमारे हिसाब से रविवार, उसकी भी कुछ भूमिका रहती होगी सर।
1: बिल्कुल, जीवन में काम के साथ में विश्राम बहुत ही आवश्यक है, चाहे वो किसी भी प्रकार से किया, जिसको रिक्रिएशन कह सकते हैं, तनावपूर्ण जो क्षण होते हैं उनको वापस न्यूट्रलाइज करने के लिए इंसान को शारीरिक व्यायाम करने चाहिए अपने, जब भी जितने भी पल मिले परिवार के साथ में हम जो पल बिताते हैं उससे भी रिक्रिएशन होता है। आप लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन से जब वापस बाहर आते हैं तो कुछ जो समय व्यतीत होता है, चाहे वो रविवार को मिले चाहे उसी रविवार को हम कहीं घूमने चले जाएं, कि कहीं मंदिर के दर्शन करने चले जाएं और जंगल में कहीं सैर करने चले जाएं, तो ये इवन आप उसको ध्यान और योग से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब पल मिल जाए, क्योंकि मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरा शेड्यूल फिक्स रहता है कि इतने बजे से इतने बजे तक मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, किसी भी पुलिस अधिकारी का शेड्यूल उसके अनुसार तो हो ही नहीं सकता। हमारा जो शेड्यूल है, हमारी जो दिनचर्या है, वो लोग तय करते हैं, हमारा उत्तरदायित्व तो तय करता है। पता नहीं किस समय हम सोएंगे, किस समय उठ के भागेंगे, या सो भी नहीं पाएंगे, सोते समय ही थोड़ी देर में वापस ड्यूटी पे जाना पड़ सकता है या कॉल पे रहना पड़ सकता है, तो वो सब चीजें तो सबको होती है, पर उसके साथ में अपने शारीरिक व्यायाम पे, अपनी धार्मिक दिनचर्या जिससे हमारे को मानसिक शांति मिलती है, एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिलता है, और परिवार के साथ में अपने बच्चों के साथ में जब भी समय मिलता है तो उसका उपयोग तो हम भी करते हैं, और एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट करके ही आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, एक अच्छे परिवार के मुखिया बन सकते हैं और एक अच्छे पुलिस ऑफिसर भी बन सकते हैं। तो इन सब का कॉम्बिनेशन हमारे को करना ही पड़ता है और वो हम करते हैं। और रविवार निश्चित रूप से हमारे को एक टेंटरलाइज डे तो लगता ही है कि आज रविवार है, कुछ तो समय मिलेगा परिवार के लिए, ये भाव तो हमारे हमेशा हमारे में भी रहता है, सब पुलिस ऑफिसर में भी रहता है कि चलो संडे है शायद दो पल मिल ही जाए परिवार के लिए।
0: बिल्कुल सर, ये जो दिन है बचपन से लेकर जब तक हम रहते हैं तब तक जो है इस दिन को हम सुकून से ही जोड़ना चाहते हैं। हर एक
1: बिल्कुल
0: मनुष्य जो है जोड़ता है इस दिन को सुकून से। और सर, जीवन में म्यूजिक की तो कुछ जगह होगी ही, जरूर आप सुनते होंगे। आज हम भी आपको एक आपका फेवरेट गाना जरूर सुनाना चाहेंगे, तो तो हम जानना चाहेंगे सर आपका

0: कोई एक फेवरेट सॉन्ग?
1: मैं बचपन से ही पिताजी के पुलिस अफसर होने से 1971 का वार भी मैंने बचपन में देखा नजदीक से, तो यूं कह सकते हैं कि बचपन से ही पुलिस में आने से पहले से ही अनुशासन और परेड करने के भाव से ही जुड़ा हुआ हूँ। जैसे ही कोई ऐसे जोशीले गीत आते हैं तो बचपन में ऐसा जोश में भर जाते थे जैसे कि भविष्य का पुलिस अफसर प्रफुल्लित हो रहा हो। तो मैं चाहूंगा कि मेरी पसंद का आप गाना अगर बजा सकते हैं तो कदम से कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये
0: बिल्कुल सर,
1: आजाद आजाद हिंद फौज का एक परेड का गीत है और मेरी पसंद का है।
0: जी अब शराफत जी जो है आपकी पसंद का गीत जो है आपको और सब श्रोताओं को सुनाएंगे। हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मैं चाहूंगा कि आज सबका रविवार बहुत ही अच्छे से हो, हंसी खुशी से हो। धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद
1: जय
0: सर,
1: हिंद।
0: जय हिंद।

श्रोताओं आज हम याद कर रहे हैं प्रशांत चंद्र महाल नोबिस को जिनकी की आज पुण्यतिथि है। एक भारतीय वैज्ञानिक और संख्याविद थे ये। इन्हें सांख्यिकी माप महाल नोबिस दूरी के लिए और स्वतंत्र भारत के पहले आर्थिक आयोग योजना के सदस्यों में से एक होने के लिए

रूप से याद किया जाता है। उन्होंने भारत में मानव नीति के क्षेत्र में अग्रणी अध्ययन किए। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना भी की श्रोताओं, और बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षणों के डिजाइन में योगदान दिया। उनके योगदान के लिए महाल नोबिस को भारत में सांख्यिकी का जनक माना जाता है। 2007 से पीसी महाल नोबिस की जयंती और सांख्यिकी विज्ञान और योजना में उनके योगदान को याद करने के लिए 29 जून को भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने 2009 में प्रशांत चंद्र महाल नोबिस का जन्मदिन यानी 29 जून हर साल भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया श्रोताओं।

श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं पामूला पार्थी वेंकट नरसिन्हा राव जी को, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता, जिन्होंने 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। वे दक्षिण भारत के पहले और गैर हिंदी भाषी पृष्ठभूमि से दूसरे व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री बने थे। श्रोताओं, उन्हें 1991 के आर्थिक संकट के बाद भारत के आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत करने में उनकी भूमिका के लिए आज भी जाना जाता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें देश के प्रत्येक प्रधानमंत्री द्वारा जारी रखा जाता है और विस्तारित भी किया जाता है। 2024 में उन्हें भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और एक रोचक बात और श्रोताओं, राव एक बहुभाषी थे और 17 भाषाएं वो बोल सकते थे। इसी के साथ हम आज नाम ले रहे हैं, याद कर रहे हैं जसपाल राणा को, जिनका जन्म 28 जून 1976 को हुआ। वे एक प्रमुख भारतीय निशानेबाज रहे, जिन्हें 2002 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। श्रोताओं,

जसपाल राणा उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के जौनपुर क्षेत्र से हैं। जसपाल राणा जो भारत के बेहतरीन निशानेबाजों में से हैं, उनको उनके पिता नारायण सिंह राणा ने बीएसएफ अधिकारी द्वारा प्रशिक्षित किया था और 12 साल के राणा ने अहमदाबाद में 31वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में राष्ट्रीय पदार्पण किया। तो किसी ने नहीं सोचा होगा श्रोताओं कि 12 साल का लड़का रजत पदक एक तरह से छीन लेगा, अपने नाम कर लेगा। और साल 1994 में 46वीं विश्व शूटिंग चैंपियनशिप जूनियर सेक्शन में राणा ने स्टैंडर्ड पिस्टल शूटिंग के लिए स्वर्ण पदक जीता, जो उनकी यात्रा में एक और बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। राणा ने शूटिंग के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही क्षेत्रों में 600 से भी ज्यादा पदक अर्जित किए। लेकिन कुछ ही टाइम पहले 12 जून 2026 को वो हमारा साथ छोड़कर अलविदा कह गए। हम उन्हें अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं श्रोताओं।

श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम का आज का अंक समय को देखते हुए हम यही समाप्त करते हैं, लेकिन आप सुनते रहिए रेडियो नमस्कार। कार्यक्रम में अब इजाजत दीजिए नूतन सोनी को, और नमस्कार कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है राजेश लामरोड़। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार। यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 MHz पर प्रस्तुत है कार्यक्रम बातें और गीत।

प्यार की कश्ती में लहरों की मस्ती में चले चले हम जोर जोर में और वो भी गगन से दूर। श्रोताओं, ऐसे कुछ मजेदार गीत होंगे और बातें होंगी, यानी कि आप समझ लीजिए कि प्रोग्राम शुरू हो चला है, कुछ बातें कुछ गीत। और मैं हूँ आज की होस्ट और आपकी दोस्त नूतन सोनी, और बातें तो करूंगी मैं लेकिन गीत भी तो होंगे, तो गीत आज प्ले करेंगे सत्येंद्र। दोस्तों, बातें हम करेंगे, दिल की बातें करेंगे, जिंदगी की बातें करेंगे, और उन बातों के साथ सुनेंगे बहुत सारे गीत जो आपके मन को सुकून देंगे। बातों से रिश्ते बनते हैं दोस्तों, और गीतों से दिल जुड़ते हैं, और जब दोनों साथ हो तो सफ़र भी यादगार बन जाता है। तो बस आज कुछ ऐसे ही बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, और एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं वो आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले सत्येंद्र इशारा कर रहे हैं कि वो एक म्यूज़िकल ट्रैक प्ले करेंगे।

0: इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
4: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
5: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, राणोजी का बाग, खोखरिया, बिरामंडो।
4: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
6: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।

0: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
1: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
2: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, रानो जी का बाग, खोखरिया, बिरामंडो।
1: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
3: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
4: कमर्शियल ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दोस्त की जो बिना किसी शर्त के हमारा साथ निभाता है, और वो भी बिना कुछ शिकायत किए, और हाँ हमें ज्ञान भी देता है, और बिना कुछ मांगे हमारी सोच को एक नई दिशा देता है, और वो दोस्त है किताब। वैसे तो आप गाने से समझ ही गए होंगे कि किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, और बहुत खूब एक बात है दोस्तों की किताबें जो है ना वो मूक होकर भी खुद बोलती नहीं है फिर भी बहुत कुछ कह जाती है। जो बातें दुनिया नहीं सिखा पाती वे किताबें सिखा जाती है। दोस्तों किताबें केवल कागज और शब्दों का संग्रह नहीं होती है, वे अनुभवों, थॉट्स यानी विचारों और ज्ञान का अनमोल खजाना होती है। एक अच्छी किताब हमें दुनिया से परिचित कराती है, एक तरह से दुनिया की सैर कराती है, नए विचार देती है और जीवन को बेहतर ढंग से समझने की प्रेरणा देती है। आपको याद है आपका बचपन जब आपने अक्षर सीखना शुरू किया था, तब भी वो भी किताबों से सीखते थे, स्कूल में जो एजुकेशन ली वो भी किताबें पढ़कर ली, और जीवन के हर पड़ाव पर किताबें हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती रहती है। आज भी हम किताबें पढ़ते हैं बड़े होने के बाद भी, यानी कि ये बचपन से हमारे साथ जुड़ जाती है और हमेशा साथ रहती है एक अच्छे दोस्त की तरह। चाहे हिस्ट्री हो, चाहे साइंस हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे स्टोरीज हो, नॉवेल हो, हर किताब हमारे व्यक्तित्व में कुछ नया जोड़ती जाती है और हमारे जीवन को समृद्ध करती जाती है।

0: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
1: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायक हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
2: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायक हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
3: पथरी प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्लाह स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।
4: माय डियर रेडियो लवर्स, आज के डिजिटल दौर में आपने नोट किया कि मोबाइल और इंटरनेट ने जानकारी तक तो हमारी पहुंच जो है बड़ी आसान बना दी है, लेकिन किताब पढ़ने का जो

आनंद है, उसमें जो एकाग्रता है और गहराई है, वो अब किसी स्क्रीन में नहीं मिलती। किताबें हमें धैर्य रखना, सोच विचार करना और हाँ इमेजिनेशन करना सिखाती है, कल्पना करना। किताबें हमें केवल ज्ञान नहीं देती बल्कि हमारे स्ट्रेस को कम करने में और मन को शांत करने में भी मदद करती है। आप महसूस कीजिए उस किताब की महक को, उस महक से जो है आपका मन बड़ा शांत हो जाएगा। जब कोई अच्छी कहानी या उपन्यास पढ़ते हैं तो कुछ समय के लिए हम अपनी चिंताओं को भूलकर एक नई अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। और महान लोगों ने भी किताबों को बड़ा ही महत्व दिया है और कहा भी जाता है कि जिस घर में किताबें होती है ना, वहाँ विचारों की रोशनी कभी भी कम नहीं होती है। और आज जब हम किसी के घर जाते हैं तो ये नोट करते हैं कि घर का पोर्च कितना बड़ा है, गार्डन कैसा है, किचन मॉड्यूल है या नहीं है। अब थोड़ा सा समय में पीछे जाइए, जब घर की अलमारी में सजी किताबें परिवार की बौद्धिक संपदा मानी जाती थी, उस घर की धरोहर मानी जाती थी और ऐसा नोट किया जाता था कि वो अलमारी में किस दौर की किताबें हैं, उस व्यक्ति को जानने में हमारी मदद करती थी कि वो किस तरह का पढ़ना पसंद करता है, उसके विचार कैसे होंगे। आप ज़रूर गौर कीजिएगा। और किताबें जो है ना, केवल ज्ञान का स्रोत नहीं होती श्रोताओं, बल्कि हमारे जो हमारा पर्सनैलिटी है उसको बनाने में, बिल्ड करने में, उसको डेवलप करने में, हमारे विचारों को विस्तार देने में और यहाँ तक कि हमारी जो संवेदनाएं हैं उसको विस्तार देने का एक बहुत ही बड़ा जरिया होती है। और लोग पहले आप जाइए कुछ समय पहले में, लोग घंटों किताबें पढ़ते थे और आपस में बात भी करते थे ना, तो किताबों पर चर्चा करते थे और बड़ा ही अच्छे विचार जो एक दूसरे से साझा करते थे और खुद के विचार उससे विस्तार पाते थे और लेखकों के विचारों पर भी बात होती थी कि कौन सा लेखक क्या सोचता है, कौन से भाव को जो है पाठकों तक पहुँचाना चाहता है। और आज जो किताबों की जगह हमारे हाथ में स्मार्ट फोन है, पुस्तकालयों की जगह सोशल मीडिया ने ले ली है, तो आज सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है माइंड में कोंधता है कि किताबें सचमुच पीछे छूट गई है। इस पर हम बात करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये म्यूजिकल ट्रैक।

0: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहां कहां इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
4: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
5: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, रानोजी का बाग, खोखरिया, बिरामंडो।
4: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
6: लालजी नर्सरी, आप कुछ समय हरियाली में बिताओ।

0: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।
1: दुनिया का सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न सुख एक तरफ,
2: निसंतान दंपतियारे जीवन में खुशियाँ री उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
3: दोस्तों आज के टाइम की बात करें तो विज्ञान और तकनीक ने जीवन को पहले से कहीं अधिक आसान और आसान के साथ साथ तेज बना दिया है। रफ्तार में सब दौड़ रहे हैं जीवन की आपाधापी में, और मोबाइल फोन में हजारों किताबें संग्रहित की जा सकती है, ऑडियो बुक, ई बुक और डिजिटल लाइब्रेरी। इन्होंने ज्ञान को सुलभ, है ना, असुलभ तो बना दिया है, सब तक ज्ञान पहुंच रहा है, लेकिन इसी सुविधा ने एक नई समस्या भी पैदा कर दी है। दोस्तों आज के जो ज्यादातर लोग हैं गहराई से पढ़ने की बजाय तेजी से बस जानकारी को प्राप्त करने के आदि होते जा रहे हैं, और जब बातचीत करेंगे तो उस किताब में क्या पढ़ा ये बात नहीं करेंगे, बस यही बात करेंगे, नंबर्स ऑफ बुक्स, आपने कितनी पढ़ ली है, क्या आपने ये किताब पढ़ी, बस यहाँ तक ही चर्चा खत्म हुए जा रही है, क्योंकि समय नहीं है, लोगों को आगे बढ़ना है। बस एक किताब पढ़ी, एक के बाद दूसरी को पढ़ा, लेकिन उसको गहराई से नहीं पढ़ा, उस पर चर्चा नहीं हुई दोस्तों, उस पर बात नहीं हुई। और सूचना की अधिकता ने ज्ञान की गहराई को बहुत ही प्रभावित किया है। दोस्तों हम बहुत कुछ देख रहे हैं लेकिन कम समझ रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ रहे हैं लेकिन कम आत्मसात कर रहे हैं, और ये जो हैबिट है ना दोस्तों, इसको चेंज करना बहुत ही जरूरी है।

दोस्तों, किताब और इंटरनेट के बीच ना बड़ा अंतर है, और वो अंतर है गहराई का। सोशल मीडिया सूचना देता है, जबकि किताबें जो है वो समझ डेवलप करती है हमारी। इंटरनेट हमें आंसर करता है, उत्तर देता है, लेकिन किताबें हमें प्रश्न करना सिखाती है। मोबाइल पर हम जानकारी खोजते हैं और किताबों में हम विचारों की एक यात्रा करते हैं। एक अच्छी किताब केवल डेटास का कलेक्शन नहीं होती, लेखक के अनुभव, चिंतन और शोध का सार होती है। और लेखक अपना लिखना तभी सफल मानता है जिस भाव को वो पाठक तक पहुंचाना चाहता है। वो भाव जब पाठक समझ लेता है तो वो अपना लिखना सफल मानता है, और पाठक का मन जो है वो धीरे धीरे विषय के भीतर प्रवेश करता है। और लेकिन आज कोई भी व्यक्ति अपने विचार साझा कर सकता है और नई जानकारियां प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसके कुछ

नकारात्मक प्रभाव भी है सोशल मीडिया से जो वो ज्ञान लेता है। आपने नोट किया, हम फटाफट स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं और छोटी छोटी सी रील्स देखते हैं, मीम्स देखते हैं और एक जगह पर हम ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहते हैं और छोटी छोटी सी जो हमको जानकारियाँ मिलती है यानी कि कहें कि संक्षिप्त सामग्री जिसे कहते हैं उसकी आदत ने जो है हमारे धैर्य को बहुत कम कर दिया है। श्रोताओं, एक मिनट में हिस्ट्री, 3 मिनट में दर्शन शास्त्र और 5 मिनट में पूरी किताब, ऐसी जो प्रवृत्तियां हैं ना वो हमारे पढ़ने की, हमारे अध्ययन के कल्चर को, संस्कृति को बहुत ही नींव से कमज़ोर कर रही है। और अक्सर जो धारणा बनाई जाती है, हम युवाओं को मोबाइल से ज़्यादा जोड़ते हैं कि युवा पीढ़ी किताबें नहीं पढ़ती है, वास्तविकता ये है कि युवा ई बुक पढ़ रही है, ऑनलाइन लेख पढ़ रही है और डिजिटल मंचों पर साहित्य से जुड़ रही है। समस्या ये है कि उनका ध्यान जो है वो एक की जगह अनेकों माध्यमों में बट गया है और एक पुस्तक पढ़ने के लिए जिस एकाग्रता की, जिस इंटरेस्ट की ज़रूरत होती है वो लगातार नोटिफिकेशन और डिजिटल एक तरह से डिस्ट्रैक्शन के कारण वो बहुत प्रभावित हो रही है। और इसीलिए चुनौती पुस्तकों की प्रासंगिकता पर नहीं है, उनके इम्पोर्टेंस पर नहीं है, बल्कि चुनौती एकाग्रता पर है। दोस्तों,

0: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।
1: पथरी प्रोस्टेट गुर्दा रोग मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट बरकतुल्लाह स्टेडियम के सामने जोधपुर। मोबाइल 9829027065।
2: दोस्तों एक किताब की महक उसको हाथों में लेकर पढ़ने का अनुभव अलग ही होता है। और याद कीजिए एक लाइब्रेरी जिसमें ढेर सारी बुक्स हैं वो विहंगम दृश्य याद कीजिए। कभी पुस्तकालय समाज के बौद्धिक केंद्र हुआ करते थे, वहाँ विचारों का जो है आदान प्रदान भी होता है। और आज पुस्तकालय पाठकों की कमी से जूझ रहे हैं। ज्ञान और संस्कृति के प्रतीक होते हैं ये पुस्तकालय। यदि पुस्तकालय कमजोर होते हैं तो समाज में गंभीर अध्ययन और एक तरह का जो बौद्धिक विमर्श की परंपरा होती है वो भी प्रभावित होती है। लेकिन ये भी हमें याद रखना चाहिए दोस्तों कि किताबें पीछे छूटी नहीं रही है, छूट नहीं रही, बल्कि परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। चुनौती जो है वो किताबों की नहीं है बल्कि हमारे जीवन शैली की है और हमारी घटती एकाग्रता की है। डिजिटल माध्यमों ने ज्ञान के नए दरवाजे तो खोले हैं लेकिन पुस्तकों की गहराई और चिंतन का कोई विकल्प नहीं है। और स्वस्थ समाज वही है जो तकनीक अपनाए लेकिन पुस्तकों से रिश्ता न तोड़े। किताबें सभ्यताओं की स्मृतियां, पीढ़ियों के अनुभव और मानवीय विचारों की विरासत है। और जब हम गाने सुनते हैं ना, जो आज के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं, जहाँ खत लिखने की बात हो रही है, पल पल दिल के पास रहने की जो बात हो रही है, वो तभी होगी जब आप किताबें पढ़ेंगे और अपने मन की बात को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। यदि आप किताबें नहीं पढ़ते हैं तो आप अनुभव करेंगे कि आप खुद को बहुत अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं, सामने वाले को अपनी बात नहीं उससे शेयर कर पा रहे हैं। तो किताबें ज़रूर पढ़िए दोस्तों।

दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि तमाम डिजिटल क्रांति के बावजूद भी आज आपने नोट किया कि किताब मेले, पुस्तक मेले आज भी लगते हैं और वो एक तरह से उत्सव सा माहौल होता है जब आप वहाँ जाते हैं तो। हजारों लोग उसमें आते हैं और नई किताबें खूब बिकती है। ये सबूत है इस बात का कि आज भी पाठक मौजूद है और लेखक लिखने वाले लिख रहे हैं और लाखों पाठकों तक उनके भाव, उनके विचार पहुंच रहे हैं। ये बताता है कि किताबों की ज़रूरत समाप्त नहीं हुई है, ना कभी होगी। और बात करें फ्यूचर की, तो उसमें भी किताबें नए रूप में सामने आएंगी। ई बुक है, ऑडियो बुक है और इंटरेक्टिव डिजिटल पुस्तकें अधिक लोकप्रिय हो सकती है, लेकिन माध्यम बदलने का मतलब ये नहीं है कि किताबें समाप्त हो जाएगी। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप किताब को हाथ में उठा के पढ़ते हैं, उसकी महक को महसूस करते हैं, तो वो अनुभव आज भी हमें सुकून देता है और उस अनुभव का महत्व भी हमें बकायदा मालूम है। जैसे कि रेडियो के आने से अखबार समाप्त नहीं हुए और टीवी के आने से रेडियो का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ और इंटरनेट के आने से टेलीविज़न समाप्त नहीं हुआ। ठीक उसी तरह से डिजिटल तकनीक जो है, कितनी भी डेवलप हो जाए, ई बुक्स आ जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन किताबें जो है कभी भी समाप्त नहीं होगी दोस्तों। वे बदलती रहेंगी और डेवलप होगी, विकसित होगी और नए नए रूप में नया नया कलेवर लेके धारण हो अपने सामने आ सकती है, लेकिन वो हमारे साथ हमेशा रहेंगी, हमेशा।

दोस्तों, जैसा कि हमने बात की कि जिस घर में किताबें होती है ना, वहां विचारों की रोशनी कभी भी खत्म नहीं होती। इसलिए हमें अपनी दिनचर्या में रोज कुछ समय पढ़ने के लिए जरूर निकालना चाहिए, चाहे दिन के केवल 15 या 20 मिनट ही क्यों ना हो। ये आदत जो है ना, वो धीरे धीरे हमारे ज्ञान में, हमारी लैंग्वेज यानी कि भाषा में और हमारे कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं जरूर डेवलप करती है, बढ़ाती है। और किताबें सबसे सच्ची मित्र हैं, ये कभी साथ नहीं छोड़ती। जितना इनके करीब जाएंगे उतना ही जीवन को बेहतर समझ पाएंगे। तो आइए, बस देर मत कीजिए, अच्छी किताब उठाइए और पढ़ने की आदत जरूर डालिए और इस अनमोल यात्रा का हिस्सा बनिए। इन्हीं अच्छी अच्छी बातों के साथ और गीतों के साथ दीजिए इजाजत नूतन सोनी को और सत्येंद्र को, और आज का सफर यहीं तक। सुनते रहिए रेडियो, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बातें और गीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सनसिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी कांट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शब्द कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTS और YouTube पर भी उपलब्ध।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है लाइव रेडियो लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस न्यूज पॉडकास्ट साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप

0: भारत अभियान। निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: बोल बोल के थक गया, क्या हुआ? नया किरदार चाहिए तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया गिड़ बैग,
4: आरबीआई कहता है।
0: पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन।
5: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
1: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सबसे जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने

डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है, यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी, और ये कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं, और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है, और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी

परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानि केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए,
एक ऐसा पक्षी

जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हर जिला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई।

महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी, फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है, जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है। और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनकी रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए AI इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहे, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य घड़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद

और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ, तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरेबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्म्य शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ

वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती है। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वार्जी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है
कि इस विषय

0: पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है। बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह मिलित्वा अहमत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवामि। 26,000 वर्षस्य अर्धवर्षम् प्रायः समाप्तमेव। एतेषु षण्मासेषु वयं मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे देशवासिनां नैकासाम् उपलब्धीनां चर्चां कृतवन्तः। जून मासे

0: ये जनाः श्रीगणेशस्य प्रतिमाः निर्मान्ति तेभ्यः अपि मम निवेदनमस्ति यत् ते मृण्मयीः प्रतिमाः एव प्राधान्येन दद्युः तथा च ये प्रतिमाः क्रीणन्ति तेऽपि एतत् अवश्यं पश्येयुः यत् गणपति बप्पा इति श्रीगणेशस्य प्रतिमा केन निर्मिता अस्ति तथा च सा कस्मिन् देशे निर्मिता अस्ति प्लास्टर् आफ् पेरिस् इत्यनेन निर्मिताः प्रतिमाः कदापि न क्रीणीत सखायः मृण्मय्यः प्रतिमाः पूजानन्तरं सहजतया जले विलीयन्ते अनेन अस्माकं नदीनां जलाशयानां पर्यावरणस्य च रक्षा भवति एवम् अस्माकम् आस्थापि अक्षुण्णा तिष्ठति प्रकृतिं प्रति अस्माकं दायित्वमपि सम्यक् परिपूर्यते यदा वयं स्थानीय शिल्पिभ्यः प्रतिमाः क्रीणीमः तदा वयं वोकल फॉर लोकल इति संकल्पं सुदृढं कुर्मः मम विश्वासः अस्ति यत् अस्मिन् गणेशोत्सवे सर्वेषु च एतेषु उत्सवेषु वयं एतादृशेषु सर्वेषु विषयेषु अवश्यमेव गंभीरतया चिन्तयिष्यामः राष्ट्रहिताय च पदानि नूनं उत्थापयिष्यामः सखायः अस्माकं देशस्य महत्तमा शक्तिः अस्माकं देशवासिनः एव सन्ति राष्ट्रस्य विविधेषु भागेषु प्रवर्तमानाः लघवो महान्तश्च उपक्रमाः अस्मान् बहु किमपि शिक्षयन्ति एते प्रयत्नाः अस्मान् बोधयन्ति यत् यदा मनसि दृढः संकल्पो भवति समाजस्य च सहयोगः लभ्यते तदा किमपि महत् परिवर्तनं साधयितुं शक्यते भवन्तः स्वपरिसरेषु प्रचलतां प्रेरणादायकानाम् उपक्रमाणां विषये माम् अवश्यं प्रेषयन्तु स्वविचारान् स्वपरामर्शान् च निरन्तरं प्रेषयन्तु सम्भवमेतत् यत् भवतां समीपे आरब्धः कश्चन लघुः उपक्रमः सम्पूर्णस्य राष्ट्रस्य प्रेरणा भवेत् आगामिनि मासे वयं पुनर्मिलिष्यामः देशवासिनां केषाञ्चन नवीनानां प्रयत्नानां चर्चां करिष्यामः तावत् भवन्तः स्वस्य स्वपरिवारस्य च परिचर्यां कुर्वन्तु आम् जलसञ्चयः तु करणीय एव वर्षा जलस्य एकः एकः अपि बिन्दुः अस्माभिः रक्षणीयः कैच द रेन इति अभियाने शैथिल्यं न कदापि आनेतव्यम् अतः मम विशेषः आग्रहः अस्ति यत् वर्षा जलस्य बिन्दुं बिन्दुं संरक्षामः बहु धन्यवादाः नमस्कारः
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं
3: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है
2: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी संशोधक और अग्रय का जलावतरण किया गया ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया इस बार यह आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी
3: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा
2: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन

0: समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। श्री मोदी आज सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को भी संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकमन में राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होंगे। समारोह में भारतीय रक्षा बलों का दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी हैं। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि श्री राव ने देश की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। रक्षा मंत्री ने उन्हें दूरदर्शी नेता और प्रख्यात राजनेता बताया। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। उधर बेलफास्ट में पुरुष टी20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है और आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं संगीतकार प्रीतम की संगीतबद्ध कुछ रचनाएं। ये है इस कार्यक्रम की पहली पेशकश। जावेद अली की आवाज, फिल्म का नाम आक्रोश, गीतकार इरशाद कामिल और संगीत प्रीतम का।

कार्यक्रम में अब सुनिए प्रीतम के संगीत निर्देशन में इरशाद कामिल का लिखा गीत। फिल्म का नाम है एक्शन रिप्ले और गाने वाले कलाकार हैं कार्तिक, महालक्ष्मी और अंतरा।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: प्रीतम के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर की रचना है, आवाजें आनंद राज आनंद और ऋचा शर्मा की, फिल्म का नाम दे दनादन।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज हम आपको संगीतकार प्रीतम की संगीतबद्ध कुछ फिल्मी रचनाएं सुनवा रहे हैं। आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म ए दिल है मुश्किल का गाना। इसे अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है और धुन प्रीतम की।

अरिजीत सिंह की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्मों ए दिल है मुश्किल का ये गीत। आइए सुनते हैं हिमशिखा और अरिजीत सिंह की आवाजी। फिल्म का नाम है एजेंट विनोद। गीत रचना अमिताभ भट्टाचार्य की और संगीत प्रीतम का है।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जावेद अली और जोजो की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है अजब प्रेम की गजब कहानी। गीतकार इरशाद कामिल, संगीतकार प्रीतम।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम का अगला गीत प्रीतम का संगीत है, सुब्रत सेना का लिखा गीत, कुणाल गंजावाला की आवाज और फिल्म का नाम आंखें।

कार्यक्रम का अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में है। फिल्म का नाम है बर्फी। इसे लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और धुन प्रीतम की ही है।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

केके की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म भूल भुलैया का ये गीत। और इस गीत के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे संगीतकार प्रीतम की कुछ संगीत रचनाएं।

लीजिए सुनिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी बताइए कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह अच्छे हैं? नहीं, आप बाहर से हंस रहे हैं लेकिन भीतर ही भीतर कुछ अलग चल रहा है ना? भाई होता है ऐसा, कई बार हम बाहर से बहुत खुश नजर आते हैं लेकिन भीतर कोई तूफान हमारे बहुत तेजी से चल रहा होता है। लेकिन एक इंसान को अपने स्वरूप को छिपाकर बाहर कुछ और दिखाना पड़ता है। शायद समाज में यही सब चलता है और हम यही तो करते हैं। तो आप में से हमारे बहुत सारे श्रोता भी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन हाँ कई बार ऐसा होता है जिंदगी में कुछ उथल पुथल भी हमारे चल रही होती है। लेकिन जब हम पूछते हैं कैसे हैं तो हम कहते हैं बहुत अच्छे हैं। यही है एक कलाकार की एक विशेषता, एक गुण जिसे हम कह सकते हैं। और आपने देखा है कि हिंदी फिल्मों में भी ऐसे कई गीत फिल्माए गए हैं दोस्तों, जहां नायक या नायिका होंठ नहीं हिलाते बल्कि कुछ गीत उनके अंतर्मन की आवाज या विचारों के रूप में पार्श्व में बजते रहे।

कहते हैं, है ना। तो ये फिल्मी पर्दे पर फिल्माए हुए गीत नायक या नायिका के मन की उलझनों और भावनाओं को बिना होठ हिलाए व्यक्त कर जाते हैं, और ये गीत किरदार की तन्हाई और आंतरिक पुकार को, उसके दिल के दर्द को, उसकी सोच को पृष्ठभूमि में बहुत खूबसूरती के साथ बयां करते हुए नजर आते हैं, और हमारी आंखें भी भीग जाती हैं, भीगती है ना। तो याद कीजिए वो पल जब आपकी आंखें किसी दृश्य को देखकर, किसी गाने को पर्दे पर चलते हुए देखकर भीगी होंगी। हाँ, आज की जो हमारा टेक्स्ट है, आज का जो टेक्स्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ, जो लोग फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं। बहरहाल ये भी आप जान लें कि www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं और हमारे परिवार के सदस्य बन सकते हैं। तो हमारा आज का टेक्स्ट है, बाहर की दुनिया में कदम रखते ही हम एक मुखौटा पहन लेते हैं मुस्कुराते हुए चेहरे का, सब कुछ ठीक होने का दिखावा करने का, लेकिन उस मुखौटे के पीछे हमारे भीतर एक अनवरत युद्ध चल रहा होता है। भीतरी उथल पुथल और इस वैचारिक तूफान से हम विचलित हो जाते हैं। आज कुछ ऐसे ही फिल्मी गीत आपके लिए लेकर आए हैं जिनमें नायक या नायिका फिल्मी पर्दे पर इन गीतों में होठ हिलाते हुए नजर नहीं आते, बल्कि ये गीत उनके अंतर्मन की आवाज या वैचारिक द्वंद्व के रूप में पार्श्व में बजते रहते हैं। तो कौन सी गीत है अब तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने आपके संदेश देखे हैं, आप लोगों ने दुनिया भर के गीत हमें लिखकर भेज दिए हैं। जी तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला सुरीला सफर का, और इस सफर में हम सभी साथ हैं, है ना। तो चलिए फिल्म आंधी का ये गीत याद कीजिए, जहां आवाज दे रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार, गुलजार साहब के बोल हैं, राहुल देव बर्मन की धुन। पर्दे पर संजीव कुमार और सुचित्रा सेन, कितने अंतर्द्वंद्व उनके भीतर चल रहे होते हैं, और एक दूसरे को वो कुछ इस अंदाज में बिना कुछ कहे कह रहे होते हैं।

सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे

0: कहां पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
0: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
0: 9 बरस लंबी थी ना।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे फिल्म आंधी में। और हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीला सफर कार्यक्रम में जरा हट के काफी रोचक विषय चुना गया है, जिससे सुरीला सफर का कार्यक्रम सुनने की जिज्ञासा और बढ़ गई है। हाँ, वैसे मैंने कई फिल्मों में देखा है कि बैकग्राउंड में एक ही गीत आरंभ से लेकर अंत तक थोड़ा थोड़ा बजता है। वो किसी अभिनेत्री अभिनेता पर फिल्माए नहीं होता। शायद ये बात भी आज कार्यक्रम में शामिल हो, तो चलिए आनंद लेते हैं आज के सुरीले सफर का। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज अगर देखा जाए तो मानव का दिखावटी चेहरा और उनके मन को भाव को जानना बहुत कठिन होता है, इसलिए कहा जाता है कि उसके मन में चोर है लेकिन दिखता बहुत शरीफ है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का टेक्स्ट देखकर ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे गाने बजेंगे, यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ जैसे कुछ गाने बजने वाले हैं। और हमने तो आज के सुरीला सफर में आपके साथ चलने के लिए पेटी बांध ली है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अरे तो हमारे साथ सफर में चलिए ना, हम तो सुरीला सफर लेकर जब भी आते हैं तो सारे श्रोताओं से कहते हैं कि चलिए और निकल पड़ते हैं। आप भी इसमें शामिल हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि हर इंसान अपने भीतर एक ऐसी कहानी लिए चलता है जिसे दुनिया कभी पूरी तरह पढ़ नहीं पाती। चेहरे पर सजी मुस्कान अक्सर जीवन की सच्चाई नहीं बल्कि परिस्थितियों से समझौता करने की एक खामोश कला होती है। भीतर विचारों का शोर, भावनाओं का द्वंद्व और अनकहे दर्द का तूफान चलता रहता है, फिर भी हम हर दिन सामान्य दिखने का अभिनय करते हैं। शायद यही जीवन का सबसे बड़ा साहस है, अपने संघर्ष को छिपाकर भी उम्मीद का दीप जलाए रखना और हर सुबह फिर से दुनिया का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार कर लेना। बहुत सुंदर

খাই আপনি শুক্রিয়া। वही एक श्रोता ने लिखा है कि बस कुछ ही देर में सुरीला सफर शुरू होने वाला है, लेकिन मन में अभी से अंतर्द्वंद चल रहा है कि आज आप कौन सा गीत सुनवाने वाली हैं। इबारत तो सुबह ही पढ़ लिया था और ये मनोरंजक प्रोग्राम है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज प्रसारित होने वाले सुरीला सफर कार्यक्रम में बहुत सारे गीत शामिल होंगे, लेकिन कुछ गीत हमने भी लिखे हैं, बिल्कुल लिखे हैं, और आज तो बहुत सारे गीत हमारी पसंद से आपके मिलने वाले हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाइयां हमारे श्रोताओं को। जी, जो हम ये म्यूजिक बजा रहे हैं इसमें भी आप गाना पकड़िए कौन सा है, और ये भी वैसा ही गाना है, यानी जहां नायक और नायिका सिर्फ पर्दे पर आते हैं

गीत शामिल होंगे, लेकिन कुछ गीत हमने भी लिखे हैं, बिल्कुल लिखे हैं, और आज तो बहुत सारे गीत हमारी पसंद से आपके मिलने वाले हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाइयां हमारे श्रोताओं को। जी, जो हम ये म्यूजिक बजा रहे हैं इसमें भी आप गाना पकड़िए कौन सा है, और ये भी वैसा ही गाना है, यानी जहां नायक और नायिका सिर्फ पर्दे पर आते हैं और अपना अभिनय करते हैं लेकिन होठ उनके नहीं हिल रहे होते हैं। तो आज के सवाल नोट कर लीजिए। जब आप कोई फिल्म देखने गए थे आज तक, जो भी फिल्म आपने देखी होंगी, वैसे तो बहुत सारी फिल्में देखी हैं, लेकिन कभी आपको याद हो कि किसी गीत को, ऐसे ही किसी गीत को जैसा विषय आज हम लेकर आए हैं, पर्दे पर देखकर आपकी आंखें भर आई हों और छलछला आई हों, या गला रुंध गया हो, या आप रोने से लगे हों, ऐसा कोई गीत जो आपकी याद में शामिल है तो उसका जिक्र करें। मेरे साथ तो फिल्म देखते समय अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी दर्द भरा गीत आया नहीं, आंखें छलछलाने लगती हैं और मन ऐसे लगता है जैसे रो लिया जाए। और एक और सवाल कि आपके भीतर क्या चलता रहता है, आपका अंतर्मन, आपके अंतर्मन की आवाज क्या कहती है, आपके जीवन में जो भी चल रहा है, बाहर आप हंसते हैं मुस्कुराते हैं, लेकिन आपके भीतर की आवाज क्या है, क्या कभी आपने उसे सुना? कम से कम शब्दों में बताइएगा। और आइए चलते हैं अगले गीत की ओर। एसडी बर्मन का संगीत है, कैफी आजमी के बोल हैं, गीता दत्त की आवाज, एक कालजयी गीत है, फिल्म का नाम कागज के फूल।

0: यह आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी वाटिका।
1: नारी वाटिका सुनने वाली सभी सखियों को उनकी रेडियो सखी लता परिहार
2: और बसंत कंवर का
1: स्वीकार कीजिए प्यार भरा
2: नमस्कार।

0: संडे है, थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, अपनों के साथ दो पल बिता लीजिए। जिंदगी भागती रहेगी अपनी रफ्तार से, आज दिल को भी थोड़ा सुकून दे दीजिए। लता जी, जैसे ही रविवार आता है तो हमारा मन अपने आप गुनगुनाने लगता है। आखिर पूरे सप्ताह की मेहनत के बाद छुट्टी जो मिलती है।
1: बिल्कुल सही कहा बसंत जी, लेकिन कई लोग संडे को बस सोने, मोबाइल चलाने, टीवी देखने में अपना समय बिताते थे और शाम होते होते कहते अरे भाई छुट्टी कहाँ गई पता ही नहीं चला, और पूरा संडे कब खत्म हो जाता है कुछ पता अंदाज़ी नहीं होता, समय जो है जो दौड़ता ही चला जाता है। तो क्यों ना कुछ इस तरह से संडे को इस बार मनाया जाए और कुछ अलग किया जाए कि संडे बन जाए हमारा फंडे।
0: बिल्कुल सही कहा लता जी, अगर संडे को सही तरीके से बिताया जाए तो ये पूरे सप्ताह के लिए नई ऊर्जा और नई प्रेरणा प्रदान कर सकता है। तो क्यों ना इस बार कुछ अलग किया जाए, क्यों ना संडे को फंडे बनाया जाए, है ना? और
1: बिल्कुल।
0: इसकी शुरुआत हम घर से ही करें।
1: संडे को एक्चुअली क्या होता है बसंत जी, एक माइंडसेट होता है शनिवार से, दिमाग में एक हमारा एक रूटीन माइंडसेट होता है कि अरे 6 दिन हम पूरे काम करते तो एक ही दिन तो मिलता है सोने के लिए। पर क्यों ना ऐसा सोचा जाए कि वो एक ही दिन ऐसा होता है जहां हमें भाग दौड़ के ऑफिस में नहीं जाना होता है, ट्रैफिक के जाम में फंसना नहीं होता और बच्चों की स्कूल के लिए भाग दौड़ नहीं लगती होती है। तो उस संडे को हम थोड़ा सा समय से पहले टाइम से उठ जाए, खुली हवा में बच्चों के साथ थोड़ा गार्डन में
0: टहलने जाए,
1: टहलने जाए,
0: घूमने जाए।
1: और नहीं तो जैसे कि अब तो कहते हैं कि शहर जो है वो बहुत गगनचुंबी इमारतों वाले हो गए, तो कोई बात नहीं आप अपने नीचे के गार्डन में घूम लीजिए, छत पर घूम लीजिए, थोड़ा बहुत योगा कर लीजिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लीजिए, और उसके बाद एक काम जो जरूर करिए कि

0: पूरे परिवार के साथ बैठकर सुबह का नाश्ता जरूर करिए।
1: बिल्कुल, और उसके बाद?
0: हाँ, और उसके बाद शाम का जो खाना है तो क्यों ना थोड़ी सी मदद भी करा दी जाए पत्नी जी को, है ना? क्योंकि 7 दिन वो भी तो, अगर वो कामकाजी महिला है तो उसे घर का काम भी करना होता है और ऑफिस भी संभालना होता है, तो एक संडे उसे भी सरप्राइज दे दीजिए।
1: बिल्कुल, जब रसोई में सबके हाथ लगेंगे तो वो जो खाना है उसका स्वाद जो है वो दुगना हो जाएगा, है ना? सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि खेल भी हो, जैसे कि लूडो, कैरम, अंताक्षरी या कुछ हंसी मजाक। यकीन मानो ये पल मोबाइल के स्क्रीन से कहीं ज्यादा खूबसूरत होंगे। और हाँ, थोड़ा समय अपने शौक के लिए भी निकालिए, गाना गाइए,
0: गुनगुनाइए,
1: किताबें पढ़िए,
0: और हो सके तो थोड़ा सा बागवानी भी करिए, क्योंकि प्रकृति के नजदीक आप जाएंगे तो बहुत कुछ आप रिलैक्सेशन फील करते हैं। और सचमुच में बसंत जी, किसी ने बहुत सही कहा है कि पौधे भी गाने सुनते हैं, तो हमारी सखियों को क्यों ना सुनवा दे एक प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल।

मानव का अफसाना होगा।

0: बसंत जी, पता है घर में जब हमारे बुजुर्ग होते हैं, खासकर जब एक प्यारा सा रिश्ता होता है दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ, तो अगर वो हमारे घर में हैं तो हम देखिए आज की तारीख में हम सबसे ज्यादा मतलब मानते कि हम बहुत ही खुशकिस्मत है। हम मतलब हमारे पास एक वो बेशकीमती धरोहर है जो हमें मतलब अपने किस्से कहानियां, जो हमें उनकी जीवन की जो अनुभव है वो हमें उनसे सुनने को मिल जाते हैं। तो खासकर एक संडे का समय एक ऐसा निकालिए जब आप थोड़ा सा समय उनके साथ बिताएं, क्योंकि जो बातें उनकी कहानियों किस्सों में जो हमें मिलेगी, जो धैर्य संस्कार और रिश्तों की जो अहमियत वो हमें उनकी बातों से मिलेगी, वो सिर्फ कहानियां नहीं होंगी बल्कि वे जीवन के हमारे लिए अनमोल सबक होंगे। और उनके साथ बिताएगा थोड़ा सा भी समय ना, उनको तो खुशी देगा ही देगा, मगर हमारी यादों में, हमारे जो कहते हैं ना एल्बम में, यादों के एल्बम में एक कुछ पन्ने और जुड़ जाएंगे, है ना?
1: बिल्कुल लता जी, बड़े बुजुर्ग तो हमारे परिवार की नींव होते हैं। उनके अनुभव, उनका स्नेह और उनका आशीर्वाद ही हमारे घर को घर बनाते हैं। वे हमारे परिवार की सबसे अनमोल धरोहर होते हैं और जब हम उनकी देखभाल करते हैं तो हमारे भीतर भी अपनापन बढ़ता है।
0: और खासकर जब परिवार का जब पूरे सदस्य, और एक सदस्य आजकल घरों में और जुड़ गए हैं, वो हमारे होते हैं पालतू जीव जंतु, हम उन्हें घर में रखते हैं, है ना? मगर कुछ जीव जंतु ऐसे भी होते हैं जो बाहर सड़क पर होते हैं, पेड़ पौधों पे हो चहचहाते हुए होते हैं, तो थोड़ा सा समय उनके लिए भी निकालिए, है ना?
1: बिल्कुल।
0: थोड़ा सा पानी के कुछ बर्तन भर के रख दीजिए, थोड़ा दाना दुनका उनके लिए भी निकाल दीजिए। सड़क पर चलने वाले जो गाय है, जो चार चौपाया वाले जो जीव है, उनके लिए पानी की जो खेड़ियां हैं, जो भी कुंडियां है, उनको थोड़ा साफ कर दीजिए, उनके लिए पानी भर दीजिए, उनके लिए दाने चारे की व्यवस्था कर दीजिए। बसंत जी, आपको नहीं पता ये कितना सुकून देता है। ये मतलब कहते हैं ना कि जब आप उनकी चहचहाट या आपके घर के बाहर निकलते ही कोई और आए ना आए, आपका चार पैरों वाला जो जीव है वो दौड़ता हुआ आपके पास आता है और आपके पास आके जब प्यार से पूंछ हिलाता है ना, तो ऐसा लगता है कि वो बिन बोले अपना सारा थैंक्स हमें दे रहा होता है। तो उनके लिए भी सखियों और परिवार के सब सदस्य मिलकर बच्चों के साथ थोड़ा समय जरूर निकालें।
1: अच्छा जी लता जी, जब आप संडे की बात कर रहे हैं तो संडे को पार्टी तो बनती है।
0: बिल्कुल, पार्टी भी होगी पर पार्टी को हम थोड़ा सा अलग तरीके से मनाएंगे, पर इस गीत के बाद हम अपने सखियों को बताएंगे।

0: ਦੀ ਤਪਾਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है।
2: अरे?
1: डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: सखिया सुन रही है अपना पसंदीदा कार्यक्रम नारी वाटिका। लता जी, हम संडे की पार्टी की बात कर रहे थे।
7: जी जी।
6: तो आजकल जन्मदिन हो, सालगिरह हो, शादी या अन्य किसी भी खुशी के मौके पर हम खूब सजावट करते हैं, लजीज खाना बनाते हैं और मेहमान भी जमकर लुत्फ उठाते हैं और हमारी खुशियों में शामिल होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी छोटी छोटी लापरवाहियां हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाती है?
7: बिल्कुल सही कहा बसंत, और खासकर जब खाना बनने के बाद या खाना जब सब लोग चले जाते हैं उसके बाद जो फैला जो कचरा होता है, यानी प्लास्टिक की प्लेटें, कप, चम्मच, थर्माकोल के सजावट के सामान, ये सब मिलकर बहुत सारी चीजों का मतलब कचरे का ढेर बना देते हैं। तो क्यों ना हम सखियों पार्टियों को इस बार थोड़ा सा अलग बनाया जाए, क्योंकि हमें देखिए जो भी होगा आज आने वाली पीढ़ी को ही इन सब का भुगतान करना पड़ेगा। हमारी धरती है जो प्रकृति माँ है, उस पर हम जाने अनजाने में इतना सारा कचरे का भार डाल दिया है कि उसको उसकी जो हवा में जो उसकी जो गंध है वो ऑक्सीजन की जगह दुर्गंध का जगह लेने शुरू हो गई है। तो क्यों ना हम थोड़ी सी इको फ्रेंडली हो जाए, हम कुछ ऐसी पार्टी मनाए जाए जिसमें हम ज्यादातर हमारा जो पार्टी की जो सजावट का जो सामान लगता है वो कोशिश करें कि प्राकृतिक जो फूल पेड़ पत्ते पौधे हो उनके हो जाए। कुछ घरों में जो हम क्रोशिए से कुछ चीजें बनाते हैं, सुंदर सुंदर चीजें, डिजाइन वाली चीजें बनाते हैं, उनसे हम सजावट कर लें। घर पे जो हमारी साड़ियां पड़ी हैं, चुनियां पड़ी हैं, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी है जिन्हें हम रीयूज भी कर सकते हैं और उनसे हम कुछ अच्छे अच्छे झालर बना सकते हैं, बहुत कुछ सुंदर तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात बसंत मैं बताना चाहूंगी कि हम टिश्यू का बहुत ज्यादा प्रयोग करने लग गए हैं, या आप मान के चलिए एक टिश्यू का पैकेट

0: अगर हम प्रयोग में लेते हैं तो न जाने कितने सारे पेड़ कटते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो जो हम पहले रुमाल रखने की जो हमारी एक प्रक्रिया होती थी कि घर से बाहर निकलते ही हमारे मम्मी वगैरह हमें टोक देती थी कि रुमाल साथ में लिया कि नहीं लिया, मगर आजकल हम जहाँ जाते हैं हमें टिश्यू पेपर मिल जाता है, हम बहुत सहज होकर जहाँ एक काम लेना होता है उसकी जगह हम चार पाँच टिश्यू पेपर काम लेते हैं। और तो और वो तो हम उस वक्त लेते ही लेते हैं, साथ में चार पांच बैग में और डाल के लेके जाते हैं, है ना, क्योंकि एक स्वाभाविक सी, क्योंकि वो इजी टू हैंडल होने लग गया कि भाई कहीं पे भी जरूरत पड़ सकती है। मगर हमें नहीं पता कि हमारी छोटी छोटी ये आदतें हमारे आने वाले समय पे, हमारे आने वाले भविष्य पे, हमारे आने वाले बच्चों पर कितना बड़ा हम एक कर्ज छोड़ के जा रहे हैं।
1: बिल्कुल लता जी, अब बात जब आती है खाने पीने की तो मोस्टली क्या करते हैं, डिस्पोजल बर्तनों का यूज करते हैं ना, तो उसकी जगह पर हम कोशिश करें कि मिट्टी के बने हुए बर्तनों को यूज करें,
0: पत्तल दोनों का यूज कर लें,
1: तो इससे क्या है ना, क्या पर्यावरण में कचरा भी नहीं होगा और हमारा भोजन भी जो है आसानी से हम ले सकेंगे।
0: बिल्कुल। और बसंत, आजकल तो वाकई में एक हर जगह एक मुहिम तो चली पड़ी है, लोग इस चीज को समझने भी लगे हैं, बस जरूरी है कि इसकी शुरुआत हम अपने घर से करें कि हम कोशिश, पहले एक होता था कि कभी घर में त्योहार होता था कुछ तो बर्तन खरीदे जाते थे, है ना, कोई भी फंक्शन होता था तो घरों में बर्तन लिए जाते, शुभ संकेत भी माना जाता था, कोई भी त्योहार होता था तो धातु के रूप में बर्तनों को इकट्ठा किया जाता और वो बर्तन आने वाले समय में जब भी घर में कोई प्रोग्राम होता था, फंक्शन होते थे, तो वही बर्तन काम लिए जाते थे। तो उससे बहुत सारा कचरा नहीं फैलता था, वही बर्तन वापस काम ले लिए जाते थे और ये चीजें मतलब घर में एक हिसाब किताब के लिए भी बहुत सही रहती थी। और साथ ही बसंत, आजकल जो मेहमानों की जो लिस्ट बनती है ना, मतलब सोचकर समझ में नहीं आता कि हम किसे खुश करने में लगे हैं, हम किसको इतना दिखावा कर रहे हैं, क्यों ना हम मेहमानों की लिस्ट को थोड़ा सा संकुचित करें, सीमित कर दें,
1: भोजन जो है वो मेहमानों के हिसाब से ही बनवाए,
0: बिल्कुल,
1: ताकि वो बर्बाद नहीं हो और अगर बच भी जाए तो जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाए, इससे किसी का पेट भरेगा और वो बहुत सारी दुआएं भी देगा।
0: और बिल्कुल, और वो नियम जो आज तक मतलब मुझे लगता है कि हमें समझाया जाता था कि अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए और अन्न का दान महादान, तो बहुत प्यारी पंक्ति एक याद आती है मुझे कि मैंने पढ़ी थी कि उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में।
1: बिल्कुल, है ना लता जी, जब इन सब त्योहारों की या हम बात करते हैं पार्टियों की, तो सबसे बड़ी चीज आती है उपहारों की। लोग क्या करते हैं कि उपहारों के नाम पे न जाने क्या क्या, कैसी कैसी वो कभी यूज आती है, कभी नहीं भी आती और घर में एक तरीके से भीड़ करती है,
0: खासकर जो वो उसके ऊपर जो प्लास्टिक की पन्नियां, हाँ, जो लपेटी हुई होती है,
1: जो
0: टेप होती
1: सजाने में जो वस्तुएं लगती है, तो उपहार का ध्यान रखना चाहिए। हमें ऐसे उपहार देने चाहिए जो हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक हो, जैसे कि किताबें हो, हाथ से बनी हुई वस्तुएं हो, या फिर हम पौधे भी दे सकते हैं।
0: बिल्कुल, है बहुत सुंदर। इससे पौधा देने से तो बेहतर कोई, मैं समझती हूँ, कोई उपहार ही नहीं हो सकता। और हम उपहार का क्यों बसंत इंतजार करें, हम उपहार पौधों को आप हर ओकेजन पे दे सकते हैं, किसी का जन्मदिन हो, किसी का एनिवर्सरी हो, तो हम पौधे लगा सकते हैं। और पौधे जो होते हैं ना, वो जैसे जैसे बढ़ते हैं ना और उनकी जब हम देखभाल करते हैं तो हर दिए हुए व्यक्ति के प्रति भी मन में एक आभार भी प्रकट होता है।
1: बिल्कुल,
0: रिश्तों में मिठास भी बनती है, अपनापन भी गहरा होता है। और मतलब वही वाली बात है ना कि पौधे जब हम लगाते हैं, और जब पौधों की बात आई रही है तो मानसून भी आ ही रहा है, है ना, तो मानसून में भी हमें पौधे लगाने की तैयारी करनी है। पर अभी जब बात पार्टी की हो रही है तो पार्टी करनी है, मस्ती भी करनी है, पर पूरी जिम्मेदारी के साथ।
1: बिल्कुल, तो अगली बार आप भी जब कोई पार्टी आयोजित करें तो उसे इको फ्रेंडली बनाने का संकल्प करें।
0: बिल्कुल, पर मॉनसून की तैयारी भी अब हमको करनी है, तो सुनाते पहले सखियों को ये प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल।

0: लता जी, हम बात कर रहे थे मानसून की और पार्टी की, है ना। तो बारिश का जो मौसम है वो अब दस्तक देने वाला है।
1: जी
0: रिम
1: जी
0: झिम फुहारे, मिट्टी की सौंधी खुशबू, पेड़ों पर झूमती हरियाली और ठंडी हवाएं हमारे मन को सुकून देने वाली है। लेकिन इस खूबसूरत मौसम का आनंद तभी दुगना होगा जब हम मानसून के स्वागत की तैयारी भी पूरे मन से और पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी जागरूकता और समय पर की गई तैयारी हमें कई परेशानियों से बचा सकती है।
1: सही का बसंत। और सबसे पहले घर की बात करें तो हमें हमारी छतों को, हमारी खिड़कियों को और दीवारों को सही जांच कर लेनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दरारों में पानी का रिसाव होने लग जाए। छतों पर कई बार नालियां बंद होती है, उससे भी कई बार पानी छतों पे भर जाता है और वो रिसना शुरू हो जाता
0: बिल्कुल
1: है ना। और साथ ही बारिश के मौसम में सबसे बड़ा जो खतरा होता है वो मच्छरों का होता है। तो आसपास का अपना वो भी व्यवस्था देख लें कि कहीं आपके घर के आसपास कोई नाली या कोई ऐसा जगह तो नहीं है कूलर में पानी भरा रहने की वजह से। कई बार टायर, पुराने टायर, पानी की टंकियों, उनकी भी नियमित सफाई कर लें ताकि उनमें मच्छर नहीं पनपे और मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से हम बच सके।
0: बिल्कुल। इसके साथ ही हमें खाने पीने की चीजों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इस मौसम में खाद्य पदार्थ बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। इसलिए सदैव ताजा और स्वच्छ भोजन ही खाना चाहिए। पीने के पानी को उबालकर या फिल्टर करके ही इस्तेमाल करें और पानी को ढक कर रखें। फल सब्जियों को भी अच्छी तरह से धोकर और इस्तेमाल करें।
1: बिल्कुल सही का बसंत। और बारिश का मौसम जितना सुहाना होता है ना, इस मौसम में हमें सतर्क रहने की बहुत जरूरत होती है क्योंकि बारिश के दिनों में अक्सर बिजली के जो खंभे होते हैं वो झूल जाते हैं, पेड़ झूल जाते हैं, उनके तार झूल जाते हैं।

0: और जो बिजली के टूटे हुए तार है वो कई बार जमीन पे भी गिरे हो जाते हैं या पेड़ की शाखाओं में उलझ जाते हैं, तो जब भी ऐसा कुछ लगे आपको तो उनसे एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें और कभी भी किसी गिरे हुए बिजली के तार को, खंभों को ना छुएं, इवन किसी पेड़ को भी उसके नजदीक ना जाएं, और जितना जल्दी हो सके तुरंत संबंधित बिजली विभाग को सूचित करें।
1: बिल्कुल लता जी, हम ऐसी जानकारी और भी देंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

0: अपने खेत बगीचे घर टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
1: आज ही पधारें लालजी नर्सरी, प्राणो जी का बाग, खोखरिया बिरामंडो।
0: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
2: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
2: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
2: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: इस कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम नारी वाटिका में। लता जी, आपने बात की थी जैसे कि बारिश में अगर कहीं बिजली के तार हैं गिरे हुए तो उन्हें छूने की कोशिश ना करें और तुरंत बिजली विभाग को सूचित करें। इसके साथ ही कई बार ऐसा होता है कि बारिश के मौसम में जगह जगह पानी भर जाता है और कई बार सड़क पर भरा हुआ पानी उसकी वास्तविक गहराई और गड्ढों को छिपा देता है, जिससे दुर्घटना होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए सड़क पार करते समय या वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, तेज बहते पानी में जाने से बचें। याद रखिए, सिर्फ कुछ मिनटों की सावधानी आपके आपको एक बड़े हादसे से बचा सकती है।
6: बिल्कुल सही कहा बसंत आपने, और खासकर बच्चों को ये बात समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों के लिए बरसता पानी आता हुआ बड़ा उनको अट्रैक्ट करता है, बड़ा अच्छा लगता है। और कुछ बच्चे जो बड़े जो व्हीकल चलाते हैं वो गाड़ी को सर्राटे से दौड़ाने की कोशिश करते हैं, एक अजीब सा उनको एडवेंचर फील होता है। पर आपको नहीं पता कि आपकी तेज चलाई हुई गाड़ी न जाने पास में चलते हुए कौन से राहगीर की कपड़ों को खराब कर दे, उसकी उसकी क्या व्यवस्था है, उसकी सारी व्यवस्था वो खराब हो जाती है और आगे जाकर आपके स्लिप होने का खतरा बनता है। तो जो भी गाड़ी वाहन आप चलाते हैं तो इतनी हम मानवीयता जरूर रखें कि हम पास से निकलते वक्त हम हमारी गाड़ी की स्पीड को थोड़ा थोड़ा धीरे कर ले, ताकि आसपास चलने वाले राहगीरों को तकलीफ ना हो। और ये आपका छोटा सा किया हुआ जेस्चर ना पास से निकलने वाले व्यक्ति के चेहरे पे एक मुस्कुराहट ले आता है, क्योंकि कहते हैं ना जितनी बड़ी गाड़ी में आप बैठे हैं मगर आप में थोड़ी सी मानवीयता भी आप रखते हैं तो पास में निकलने वाला व्यक्ति आपको मुस्कुराकर अभिवादन जरूर करता है, है ना। तो इन छोटी छोटी चीजों का भी जरूर ध्यान रखें। और साथ में जब घर की बात चल रही है तो घर में कुछ ऐसी व्यवस्था है जैसे टॉर्च है, पावर बैंक है, और साथ ही साथ कुछ प्राथमिक जिसे फर्स्ट एड किट हम बोलते हैं वो जरूर रखें, क्योंकि ऐसे समय में कई बार क्या होता है छोटे छोटे मच्छर या कीट पतंगे ऐसे होते हैं जो हमें काट जाते हैं या गलती से हम कपड़ों में घुस जाते हैं तो वो काट सकते हैं, तो वहां से आपको फफोला हो सकता है। तो ऐसे में एकदम बारिश में आप कहाँ भागे, तो कुछ बेसिक दवाइयां और वो चीजें आप अपने साथ रखें, मोबाइल को अपना पूरी तरह चार्ज करके रखें, और किसी भी आपातकाल अगर स्थिति का अगर आपका सामना होता है तो आप इमरजेंसी नंबर अपने पास जरूर रखें और उस पर संपर्क करें।
5: बिल्कुल, बरसात की बूंदे खुशियां भी लाती है और इम्तिहान भी लेती है। जो सावधानी का साथ निभाते हैं वही हर मौसम का आनंद लेते हैं। और अभी हम आनंद लेते हैं एक प्यारे से गीत का।

0: सखियों, स्वागत है सावन के सरगम में। और कहते हैं कि बारिश सिर्फ मौसम नहीं है बल्कि एक एहसास है। कभी बचपन की कागज की नाव है तो कभी किसी के यादों का कारवा है।
1: बिल्कुल, रिमझिम फुहारों ने धरती को फिर से संवारा है।
0: क्या
1: हर
0: बात
1: बूंद
0: है,
1: ने जीवन का नया संदेश उतारा है।
0: बहुत
1: सूखी
0: खूब।
1: डालियों पर फिर से हरियाली ने रंग बिखेरा है, मानो प्रकृति ने हरे रंग का सुंदर आंचल बिछाया है। और इस हरियाली को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है ना।
0: बिल्कुल। और मानसून सिर्फ पौधे लगाने का नहीं होता बसंत, बल्कि उनकी सही देखभाल करने का भी उचित समय है। इस मौसम में सबसे पहले आपको देखना होता है कि गमलों की मिट्टी को हम थोड़ा ढीला कर दें, हल्का कर दें, ताकि उसे पानी आसानी से निकल सके। सूखी और खराब पत्तियों की हम छटाई कर लें और पौधों को सहारा देने के लिए स्टिक या किसी रस्सी का इस्तेमाल जरूर करें। और गमलों में पानी बिल्कुल जमा ना होने दें, वरना जड़ें सड़ सकती है और उसमें मच्छर भी पनप सकते हैं। और सबसे जरूरी और खास बात जो पौधों को जिंदा रखता है, उनको हरा भरा रखता है, वो है हमारा प्यार और उसके साथ साथ है प्राकृतिक खाद, जैसे गोबर
1: बिल्कुल।
0: का खाद या कंपोस्ट। ऐसी ही कुछ चीजों आप अपने गमलों में डालें ताकि वो मुस्कुराते रहे, लहकते रहे, खिलखिलाते रहे।
1: बिल्कुल नेताजी, प्रकृति भी तभी मुस्कुराती है जब देखभाल सच्ची होती है। हर पौधे को जब अपनापन और समय पर देखभाल मिलती है तभी चारों ओर हरियाली खिलती है। तो आइए हम सब मिलकर प्रकृति की इस मुस्कान को बनाएं और हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक हरा भरा खूबसूरत संसार सौंप जाएं। क्योंकि जब पेड़ पौधे स्वस्थ होंगे तभी हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ रहेगा और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित होगा।

0: बादल गरजते हैं बिजली कड़कती है तो डर तो लगता है
1: बिल्कुल
0: पर हमें नहीं लगता ये बात
1: नहीं, अलग नहीं लगता है जब ज्यादा काले बादल छाएंगे और बिजली अगर कड़कती है तो डर लगता
0: जी
1: है
0: जी वो तो कुछ सावधानियां हम रखते हैं मगर आज जो डर जो लगता है जो मैं महसूस कर सकती हूं वो डर लगता है हमारे पालतू जानवरों को और खाली पालतू नहीं सभी जानवरों को जब बिजली कड़कती है या बहुत जोर से आवाज होती है बहुत तेज बारिश होती है तो हमारे जानवर डरते हैं चाहे वो सड़क के हो चाहे हमारे घर के हो तो हमें कुछ बहुत जरूरी है कि हम उनका भी ख्याल रखें ये सब कह के ना छोड़ दें कि ये जानवर है वो हमारे घर के परिवार के सदस्य है और साथ ही साथ जो बाहर सड़क पर घूम रहे चौपाया जीव है हमें उनका भी ध्यान रखना है कि उन कोशिश करें कि यदि वो हमारे घर के मुंडेर के पास आकर खड़े हुए हैं पेड़ के सहारे के नीचे खड़े हुए हैं तो उन्हें हम मार के भगाएं नहीं उनके ऊपर पानी का छींटा नहीं डालें कि ये बाहर गंदगी कर देंगे क्योंकि थोड़ा हम भी संवेदनशील हो जाए क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उस बारिश से बचने के लिए हमारे आसपास आकर खड़े होते हैं और घर के खासकर घर के अगर हम जानवरों की बात करें पालतू जानवरों की तो उन्हें गीला होने से बचाने के लिए पूरी तरह कोशिश करें और गीले हो भी जाए तो उन्हें अच्छे तरह से सुखाएं वह जो भी जगह पे वो सोते हैं उनकी सोने की जगह बहुत साफ सुथरी और सुखी रखें और समय समय पर उनको डीवॉर्मिंग भी करते रहें ताकि जो भी टिक या फ्ली है वो उनको नहीं लगे और उनके शरीर पर हाथ फेर के उनको देखभाल करें उनको चेक करें कि कहीं कीड़े तो न लगे और बसंत जी साथ ही साथ उनको भोजन और पानी इस पर भी उनका बहुत ध्यान देने की सख्त जरूरत है कि भोजन और पानी भी उनका साफ सुथरा हो
1: बिल्कुल और यदि अगर आप बच्चों को मतलब पालतू जानवरों को बच्चे हुए
0: बातें बहुत सही कहा आपने बिल्कुल
1: पालतू जानवरों को अगर बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं तो उन्हें जल भराव वाली जगहों से दूर रखें उन्हें साफ सुथरी जगहों पर घुमाएं और कई बार कहते हैं ना कि जैसे पानी वाली जगह पर जब वो जानवरों को ले जाते हैं तो उनके साथ साथ वो पिस्सू हुए जुओं का खतरा जो है बढ़ जाता है
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: समय समय पर पालतू जानवर को किसी अच्छे पशु चिकित्सक के पास लेके जाएं उनकी सलाह लेकर अपने जानवर की देखभाल करें क्योंकि वे भी हमारे परिवार का ही हिस्सा है और उन्हें की जो देखभाल की जरूरत होती है उनकी छोटी छोटी जरूरतों का समझना उन्हें पूरा करना ये भी हमारा ही कर्तव्य है तो जब हम उनका ध्यान रखते हैं तो वे भी हमें अपना प्यार वफादारी और स्नेह को दुगना करके लौटाते हैं
0: बिल्कुल और किसी भी प्रकार की अगर उनमें सुस्ती दिख रही है या अगर वो उल्टी कर रहे हैं तो उनका उनको इमीडिएट उनका उपचार करें और उनको चिकित्सक को जरूर दिखाएं यानी आपके जानवर में चाहे वो आपके पालतू जानवर हो चाहे आपके घर के आसपास के जानवर उनमें किसी तरह की भी एक अजीब सी हरकत अगर आपको महसूस हो रही है और एक और बात बताती हूँ बसंत जी इसी बात पे बात याद आई कि जानवर बहुत इतने संवेदनशील होते हैं कि वो आने वाली किसी भी विपदा को भी बहुत जल्दी समझ आते हैं है ना और कहते हैं कि जो टिहरी जो पक्षी होता है वो अपने अंडे भी उस ऊंचाई और समतल धरातल पर उस तरह से मतलब पानी के नजदीक या पानी की ऊंचाई पे देता है क्योंकि जानवर या पक्षी जो होते हैं वो मौसम को बहुत जल्दी से महसूस कर लेते हैं तो वो अपने बच्चों को भी संभालते हैं और उन्हें खतरा ना हो तो अपने अंडों को भी इस प्रकार सुरक्षित स्थान पर देते हैं ताकि उनके अंडे सुरक्षित रहे और पानी के बहाव में उनको नुकसान ना हो तो इन जीव जंतुओं की अगर आप छोटी छोटी हरकतों को इनकी आवाजों को इनके महसूस करने की जो थोड़ा सा यदि अपन ऑब्जर्व करते हैं तो कई बार हमें मौसम के संकेत भी हमको मिलते हैं और आने वाली विपदा का भी हमें पता चल जाता है
1: बिल्कुल

0: सखियों किसी ने बहुत खूब कहा है कि पहला सुख निरोगी काया है ना बसंत। और मौसम कोई भी हो, चाहे सर्दी गर्मी बरसात हो भी हो, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप हर मौसम का आनंद ले सकते हैं।
1: बिल्कुल, स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। हर इंसान के लिए अनमोल वरदान है, इसके बिना जीवन अधूरा सा लगता है, हर सपना वीराना सा लगता है। जो स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं वही सच्चा सुख पाता है, इसलिए इसे संभाल कर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि स्वस्थ जीवन ही खुशहाल जिंदगी की असली तैयारी है।
0: बिल्कुल, और मानसून का जो मौसम है ना, उसकी प्रकृति की सुंदरता और ताजगी का प्रतीक है। लेकिन जितना ये मौसम सुखद होता है ना, उतना ही इसे अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य का भी हमें बहुत ध्यान रखना आवश्यक होता है। और इस मौसम में अक्सर नमी बढ़ जाने से कई रोग भी फैलने की संभावना होती है, इसलिए व्यक्ति को सबसे पहले अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। उसे बाहर का खुला बासी तला भुना खाना, उससे खाने से परहेज रखना चाहिए। और साथ ही इसमें पेट संबंधी अक्सर जो बीमारियां इन मौसम में देखने को मिलती है, तो उस पर अपना जरूर ध्यान रखें। और साथ ही साथ बसंत, कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो हमारे दादी नानी ने जो हमें बताए हैं, जो कि कहते हैं कि खान पान में हमारी रसोई में ही कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि इस समय जो होता है हमारे जो पेट की अग्नि होती है वो थोड़ी मंद हो जाती है, तो उस अग्नि को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए, यानी हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने के लिए कुछ हमारे रसोई के कुछ ऐसे पदार्थ है जिनका हमें प्रयोग कर लेना चाहिए। यानी जो मेथी के जो बीज है या मेथी दाना, वो हमारे पाचन को सुधारता है। जीरा है, वो हमें गैस में राहत दिलाता है। और कलौंजी, उसको जरूर प्रयोग करना चाहिए, वो हमारी इम्यूनिटी को जरूर बढ़ाती है। और धनिया के बीज, अगर हमें इस मौसम में अगर हम पानी कम पी रहे हैं तो हमें उसको ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, ताकि हमें यूरिनेशन अच्छा आ सके, बाथरूम है जो खुल कर आए। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे अजवाइन हो गया, सौंफ हो गया, सरसों के बीज हो गए, ये सब हमारे पेट के दर्द में भी आसानी, मतलब पेट दर्द में भी लाभ देते हैं, हमें ठंडक देती है। सौंफ हमें ठंडक देती है, और सरसों के बीज अगर हम नियमित रूप से प्रयोग करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाता है।
1: बिल्कुल लता जी, बात अगर आए कि बारिश में अगर हम भीग जाएं, तो शरीर को अच्छे से सुखाकर गीले कपड़ों को तुरंत बदल लेना चाहिए, ताकि सर्दी जुकाम और त्वचा संबंधी बीमारियों से बच सके। यदि बुखार, खांसी या कमजोरी महसूस हो तो आराम करें, जरूरत पड़े तो डॉक्टर से सलाह लें। बारिश का मौसम में आनंद लेना अच्छा है, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी सावधानी हमें बड़े रोगों से बचा सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा बसंत, और वाकई में आज हमने यूनिवर्स में, हमें वो कहते हैं ना, हमने एक बहुत पॉजिटिव मैसेज भेजा है कि इस तपती दोपहर में जो हमने आज बारिश के जो गीत सुनाए हैं, जो सावन को हमने आमंत्रित किया है, तो बस यूनिवर्स हमारी बातें सुन ले। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज शाम को बारिश अच्छे से जम के हो जाएगी, और जिस तरह से हमने हमारे गीतों का आनंद लिया है ना, हमारी सखियां भी बारिश का आनंद लेंगी।
1: बिल्कुल लता जी, और इसी के साथ

0: की घड़ी की सुइयां टिक-टिक करके इशारा कर रही है कि अब कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है।
1: बिल्कुल, और आज हमारे साथ एचपीटी पे हमारे साथ थे विक्रम सिंह जी भाटी, पीके सैनी, एफएम पे थे सीएल सोनी, कंट्रोल रूम से थे दिलीप सिंह परमार, कंसोल से पद्मनी बोहरा जी जिन्होंने सुंदर गीत सुनाए, और इस प्रोग्राम का जो संपादन किया वो थे मनीष सोलंकी ने।
0: तो इसी के साथ ही अपनी रेडियो सखियों बसंत कंवर और
1: लता परियार को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी वाटिका। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं दोपहर समाचार, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
2: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
2: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
1: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
2: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पूलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की

0: चर्चा की, जिसने लगभग 3,500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
1: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम और अंधविश्वास को पीछे छोड़ कर के रहे।
0: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
1: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। नागालैंड के 2 ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
1: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
0: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
1: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
0: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
1: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति

0: पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
1: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है।
0: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किको पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। दो मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और

0: आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुति कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था राजकुमार। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शंकर।

मदन मोहन के संगीत निर्देशन में अभी आपने राजा मेहदी अली खान की लिखी रचना सुनी। स्वर लता मंगेशकर का था और फिल्म का नाम था आपकी परछाइयां।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू हुई। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत आवाज मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है मेरे महबूब। इस गीत को शकील बदायूनी ने लिखा है और धुन बनाई है नौशाद साहब ने।

कार्यक्रम में अब सुनिए चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी की लिखी गीत रचना। गायिका हैं लता मंगेशकर और ये फिल्म है बाघी।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम हैं राही प्यार के। जी हाँ, ये है फिल्म का नाम जिसका दो गाना अब आप सुनेंगे, स्वर लता मंगेशकर और तलत महमूद के। इस गीत को जानिसार अख्तर ने लिखा है और धुन बनाई है हयम साहब ने।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, आवाज मुकेश की। फिल्म का नाम है दिल ही तो है। गीत रचना साहिर लुधियानवी की है और संगीत रोशन का।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन, कौन
2: राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत हम आपको मदन मोहन के संगीत निर्देशन में सुनवा रहे हैं। स्वर मोहम्मद रफी का है और फिल्म का नाम है शराबी।

0: प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत।
1: मनचाहे गीत
0: मनचाहे गीत
1: मनचाहे गीत
0: मनचाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के दूसरे व्यक्तियों के अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्ट कार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्ट कार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मनचाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: तो इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत हम आप सबकी पसंद पर सुनवा रहे हैं। सुनने वाले हैं भोपाल से श्रवण सिंह गिन्नारे, गौरव सौरभ रेखा शेर सिंह गिन्नारे, और ये हैं तेलंगाना राजन्ना सिरसिल्ला जिला विलास सागर गांव से गंगाधर श्रीनिवास, लक्ष्मी प्रसन्ना, मनस्विनी चंद्रैया, मल्लवा लावण्या, रेवंत, महेश्विन, श्रीनु, सुजाता, ग्रीष्मा, दीपक, रमेश, कनक, लक्ष्मी, श्रीजा, साई कुमार और सुषमा। और ये खत हमें मिला है हथबंद करेली से भाई रामाधार ध्रुव, संजय कुमार ध्रुव और संजू कुमार का। आप सभी सुनना चाहते हैं शैलेंद्र सिंह की आवाज में फिल्म तराना का ये गीत।

अगला गीत सुनना चाहते हैं। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल, निशा और इनके परिवार वाले। आप हैं समाना मंडी पंजाब से अश्विनी कुमार वर्मा, श्रीमती सुनीता वर्मा, अर्पणा और विकास वर्मा। ये खत हमें मिला है सिमगा छत्तीसगढ़ से श्रीमती सविता जैन, प्रदीप जैन और उनके साथियों का। आपसे भी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म चंपा कली में। गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की है और तर्ज हेमंत कुमार की।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था चंपा कली। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला गीत सुनने के आप सभी ख्वाहिशमंद हैं। ये है सिमगा छत्तीसगढ़ से पुष्कर भोसले और इनके परिवार वाले। जवाहरगंज जबलपुर से जिनेन्द्र जैन और इनके परिवार वालों ने ये खत लिखा है। ये लिखने वाले हैं हमारे ग्राम दरचूरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू। आप सभी सुनना चाहते हैं मुकेश की आवाज। फिल्म का नाम है सहेली। गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी।

मनचाही गीत कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज है। फिल्म का नाम है अनोखी रात। इस गीत को इंदिवर ने लिखा है और धुन रोशन की है। सुनने के लिए आप सभी ने हमें फरमाइश भेजी। आप हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत और राशि रक्षित। इसी गाने को सुनना चाहते हैं। आप हैं महाराष्ट्र से विनोद कुमार अठिया, भारती अढ़िया, पारस, उर्वी बेन अढ़िया और इनके परिवार वाले। इसी गीत को सुनने के लिए आपने भी हमें खत लिखा है। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, वीना देवी आर्य, प्रतीक आर्य और ये हैं छत्तीसगढ़ से डॉक्टर प्रदीप, देवेंद्र और उनके साथी। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म अनोखी रात में।

डुनडुन और इनके परिवार वालों ने। और ये हैं वरुण जौलका से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद। आप सभी सुनिएगे लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म कटी पतंग का गीत सुनना चाहते हैं। आनंद बख्शी के बोल हैं और राहुल देव बर्मन की धुन।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर। आप हैं गांव टुकिया तहसील सिणधरी जिला बालोतरा राजस्थान से कृष्ण कुमार ढाबी और उनके परिवार वाले। अंबेडकर चौक खुरई से ये खत हमें लिखा है राम सखी परमानंद सौरभ गौरव एलपी रोहित लल्लू राम पूरन रोहित छोटू

यह आवाज थी लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम था कटी पतंग। कार्यक्रम का आखिरी गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल, मोहम्मद रफी की आवाज और फिल्म का नाम सूरज और चंदा। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे, बाबुल गांव पातुर से प्रकाश पाटिल, अलका पाटिल।

इप्ति, तृप्ति, यशुदीप और उनके परिवार वालों ने ये खत हमें लिखा है। आप हैं अमरावती कल्याण नगर से रमेश किल्लेकर, शकुंतला किल्लेकर, आराध्या किल्लेकर और माही किल्लेकर का। आइए आप सभी सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म सूरज और चंदा का ये गीत।

0: इस गाने के साथ ही आज का मनचाही गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में पेश किया आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने।
1: मनचाही गीत।
2: चाहेगी।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। आज इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं नाटक कंटीला रास्ता का दूसरा एवं अंतिम भाग। ये नित्यामूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत्य पाते का हिंदी रेडियो रूपांतर है। रूपांतर किया है ए शौर्य राजन ने और इसके निर्देशक हैं वीपी दीक्षित बटुक। तो आइए सुनते हैं नाटक कंटीला रास्ता, इस नाटक का दूसरा एवं अंतिम भाग।
1: मैं बहुत बदनसीब लड़की हूँ डॉक्टर साहब।
2: तुम क्यों दिल छोटा कर रही हो?
1: मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ रही है। आपके मामा जी छाती के दर्द से बेचैन थे, उसी के शिकार हो गए। मेरे झंझट में आप उनकी भी देखभाल नहीं कर पाई।
2: उनके रोग का इलाज इस गांव में नहीं था। मैंने भरसक कोशिश की, पर क्या किया जाए, उनकी अवधि पूरी हो चुकी थी।
1: वे देखते ही देखते चले गए डॉक्टर साहब।
2: एक बात मैं उनसे कह नहीं सकी। कहना तो चाहा था, कितने में ही चुड़ैल नागमणि आकर मुझे ले गई।
1: वो क्या बात थी डॉक्टर साहब?
2: अगर मैं मर्द होती
1: तो फिर
2: शकुंतला से शादी कर उसे नया जीवन देती, यही कहना चाह रही थी मैं।
1: आप बहुत महान हैं डॉक्टर साहब। मैं बेखबर सो रही थी, जब अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने आपके बारे में पूछा। इस जानम्मा से पता चला कि नागमणि डाइन आकर आपको ले गई है।
3: और तभी शकुंतला तुरंत चिल्ला उठी, नागमणि तो काली सापन है, भयानक सापन है।
1: ये सुनते ही मामा जी बहुत चिंतित हो उठे थे। उनको धक्का सा लगा, आप ही की फिक्र में वे छटपटाते हुए दम तोड़ गए।
2: उनको यही खबर जानलेवा साबित हुई। इस धक्के को सहने की ताकत उनमें नहीं थी, लेकिन मैं डॉक्टर होकर इतनी नाजुक दिल नहीं हो सकती। खैर, जो हुआ सो हुआ। सुनो जानम्मा।
3: जी डॉक्टर साहब, क्या बात है?
2: अल्लाह बख्श नहीं आया तक?
3: आते ही होंगे।
2: देखो शकुंतला
1: जी,
2: तुम अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई हो। अब आगे के काम जल्दी जल्दी होने हैं, और देखो तुम्हें बेहिचक गवाही देनी होगी।
1: डॉक्टर साहब, मैं कैसे भरी अदालत में गवाही दे सकूंगी? डॉक्टर साहब, मेरी जिंदगी का क्या होगा? मेरे भरोसे और मेरे मोहताज बनकर जी रहे मेरे परिवार की इज्जत का भी तो सवाल है।
2: शकुंतला, कैसी बातें कर रही हो तुम? उस दर्दनाक दिन की याद करो, बारिश की शाम को तुम पर जो वहशियाना जुल्म हुआ उसका बदला।
1: मेहरबानी करके उस घटना की याद न दिलाइए डॉक्टर साहब। मैं उस घिनौने धब्बे को धो डालना चाहती हूँ, आप उसे समाज के सामने मत आने दीजिए।
2: शकुंतला, इस तरह तुम ये साबित कर रही हो कि तुम भी औसत मामूली लड़कियों में ही हो।
1: माफ कीजिए डॉक्टर साहब, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे आराम से जिंदगी गुजारनी है।
2: शकुंतला, आगे बढ़े कदम को पीछे हटा लेना मेरे बूते की बात नहीं है। तुम निसंकोच सच्चा बयान देने को तैयार रहो।
3: शकुंतला बेटी, जरा सोच समझ कर आगे बढ़ो। डॉक्टर साहब तुम्हारी भलाई की ही बातें कर रही है, तुम निडर बनो बेटी।

0: गुड मॉर्निंग डॉक्टर।
1: हेलो उमा, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। देखो तो तुम्हारी डिस्पेंसरी देखने और कौन आए हैं।
2: हेलो।
1: ओह, डॉक्टर रतनगिरी, विश्वविख्यात हार्ट स्पेशलिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ। बैठिए।
2: धन्यवाद धन्यवाद। कहिए, आपकी डिस्पेंसरी तो ठीक ठाक है ना?
1: आपके नर्सिंग होम की तुलना में। भारती, तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं?
0: सुनाओ।
1: मैं शीघ्र ही मद्रास जाकर इनके साथ काम करने वाली हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। आपने अपनी पत्नी की शिक्षा का सम्मान करना शुरू किया, उसके लिए बधाई।
3: अम्मा जी,
0: बताइए क्या लेंगे आप? कॉफी, चाय, नारियल का पानी?
1: कुछ नहीं चाहिए, तुम हमारे साथ घर चलो।
2: वो हमारा मतलब था हमारे साथ भोजन करने का निमंत्रण। अगर
3: डॉक्टर साहब, ये चिट्ठी शकुंतला दे गई है।
1: शकुंतला? कौन शकुंतला?
0: तुम जानते हो उसे उमा?
1: उसके बारे में आज सुबह यहाँ के बड़े रईस कुमार सामी बातें कर रहे थे। ये शकुंतला ग्राम सेविका है ना?
0: हाँ हाँ, ये चिट्ठी उसी ने भेजी है। हाँ, क्या बातें हो रही थी उसके बारे में?
1: उसका दूर का रिश्तेदार एक लड़का है। तब खुद कुमार सामी ने उस लड़के के साथ

0: शकुंतला की शादी कराने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है। कह रहे थे गांव के मंदिर में शादी करा देंगे।
1: अच्छा, वो सुबह नए कपड़े, फूल मालाएं, फल तांबूल वगैरह लेकर जो लोग आए थे वो सब क्या ऐसी शादी के लिए थे?
0: जी हाँ। तब तो इस चिट्ठी का कोई उपयोग नहीं है। कैसी चिट्ठी है? इसमें एक दुखियारी की दर्दनाक कहानी है। ओ, शादी की आड़ में वो चैन से जिंदगी बसर कर सकती है। आइंदा समाज में सिर उठाकर चलने के लिए चिट्ठी ना रहे तो ही अच्छा है।
1: अरे ये क्या, आपने चिट्ठी फाड़ क्यों डाली?
2: क्या हुआ डॉक्टर साहब?
0: शकुंतला को हमसे भी बढ़कर पनाह मिल गई है।
2: कह क्या रही हैं आप?
0: इस वक्त कुमार स्वामी के संरक्षण में हमारे गांव के स्कंददेव मंदिर में शकुंतला का विवाह हो रहा होगा।
2: ओह, इसीलिए उसने मुकदमा वापस ले लिया है।
0: चलो, उस बेचारे दुखियारी की जिंदगी तो बन गई, हम उसी से संतोष कर लेंगे।
3: अरे, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी हिम्मत के साथ अन्याय का सामना कर सकोगी। तुम्हें अपनी प्यारी सहेली के रूप में पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है।
0: तुम खुद भोली भाली हो ना, इसीलिए हर एक में गुण ही गुण देखती हो।
1: सहेलियां एक दूसरे की बढ़ाई करने में होड़ लगाती ही हैं भैया।
0: ऐसी बात नहीं है डॉक्टर साहब, जरूरत पड़ने पर अपना हक छोड़ भी देती हैं।
3: मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारी कोई मदद करूं।
0: मदद? तुम
3: क्यों, शक है? अरे हाँ, उस दिन तुमने हार्ट पेशेंट के एक नाजुक केस के बारे में कहा था।
0: ऐसे तो कई केस हैं उमा, मेरे मामा जी की तरह कई हार्ट पेशेंट हैं जो सुविधा के अभाव में ठीक से इलाज नहीं करा पाते।
3: इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि यही एक अच्छा अस्पताल खोला जाए जिसमें सभी सुविधाएं मैसर
1: हों। एक बिल्कुल बेहुदा ख्याल है।
0: आप परेशान ना हो डॉक्टर साहब, मेरे मामा की खाली जमीन गाँव की सीमा पर है। जब तक वो रहे वहाँ मेहनत कर खेती बाड़ी करते रहे। अब मैं उनकी स्मृति में वहाँ एक अस्पताल बनाना चाहती हूँ।
3: अरे भारती, यू आर रियली ग्रेट।
0: वहाँ एक अच्छा अस्पताल बनाने में यदि आप लोगों की मदद मिल सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। आजीवन आप लोगों की आभारी रहूंगी।
3: भारती, मेरे पिताजी की ऊपर तक पहुँच है। भले काम के लिए अपने परिचय और प्रभाव का इस्तेमाल करना बुरा नहीं है।
0: जिस दिन ये काम पूरा होगा ना, उसी दिन तुम्हारे यहाँ आकर।
3: अरे छोड़ो उस दिन की बात, आज चलती हो कि नहीं?
0: अरे भाई सब्र करो, सब्र करो। तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन तो ठाट से मनाया जाएगा ना, तभी प्रीति भोज पर आऊंगी।
3: तुम तो बड़ी हट्टी हो भाई। चलिए जी, हम चलते हैं।
1: अच्छा भाई, फिर मिलेंगे। हाँ,
0: अच्छा, बाय बाय।
4: मुझे तो पहले ही मालूम था।
2: क्या मालूम था तुम्हें?
4: याद है तुम्हें, हमारे डॉक्टर साहब के पास एक मनहूस आदमी आया था।
2: हाँ हाँ, वो आरोग्य स्वामी।
4: उसने डॉक्टर अम्मा से कुछ दवाएं खरीदने के लिए एक नुस्खा लिखकर देने को कहा, पर डॉक्टर साहब ने मना कर दिया।
2: ये भी कम हटीली नहीं है।
4: ठीक ही तो है, झूठ मूठ नुस्खा सर्टिफिकेट वगैरह क्यों लिख कर दें?
2: ये लोग नुस्खा लेकर क्या करेंगे, इससे क्या फायदा है?
4: तुम नहीं जानती, ये लोग झूठ मूठ मर्ज बताकर दवाएं लेते हैं और घर में रख लेते हैं, फिर उन्हें दूसरों को बेच देते हैं। डॉक्टर से नुस्खा लेकर जाली बिल बनवाकर ऑफिस में पेश कर देते हैं और उसका पैसा ले लेते हैं।
2: छी छी छी, अरे ये तो साफ धोखाधड़ी है। हाँ तो फिर आरोग्य स्वामी का क्या हुआ?
4: डॉक्टर साहब ने साफ साफ कह दिया कि ये तिकड़म हमसे नहीं होगी, पर वो नहीं माना, बराबर जिद करता रहा। आखिर डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाकर उसे बाहर निकाल देने को कहा। मैंने उसे हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया।
2: फिर
4: जाते जाते चुनौती देके गया कि बहुत सिर चढ़ी हुई हो, ठीक कर दूंगा, है किस होश में?
2: ये तो बहुत बुरी बात हुई, मुझे तो बहुत डर लगता है।
5: कंपाउंडर
4: जी, अभी आया।
5: सुनो लवक्ष, ये दलाल कंपनी वालों का खत आया है, उन्होंने दवाओं का पार्सल भेजा है।
4: हस मामूल हफ्ते के आखिर में आने वाली गाड़ी में उस पार्सल को भिजवा देने को लिख दीजिए।
5: तुमने सुना है लवक्ष, आसपास के गांव में हैजा फैल रहा है, पर अचरज की बात यह है कि कोई भी आदमी हैजा से बचने की सुई लेने नहीं आया अब तक।
4: गांव है ना, सुई से कोसों दूर भागेंगे, फिर भी आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे। सरकार ने ऐलान करा दिया है कि सबको हैजे से सुरक्षा की सुई लेना लाजमी है।
5: अच्छा लवक्ष, ऐसा करो तुम लोग यहीं रहना। हाँ, मैं गाँव में जाकर रोगियों को देखती हूँ।
2: जी बहुत अच्छा।
6: अरे इस छोकरे की उछल कूद दिन पे दिन बढ़ती जा रही है।
4: एक नुस्खा लिख कर देने को कहा, कहती है कि ये तिगम यहाँ नहीं चलने दूंगी। मैंने समझाया तो मुझे गेट आउट किया।

0: फटकार दिया।
1: अजी जानते हैं आप, कहीं से कहला फुसला के अपने मामा की जमीन पे इमारत खड़ी कर रही है।
2: छी छी, एक छोकरी ये सब जोर जबरदस्ती कर रही है और हम मर्द होकर चुपचाप देख रहे हैं।
1: ये सब बड़े लोगों की सहायता के बल पे चल रहा है साहब।
3: गांव के लोग भी तो चंदा इकट्ठा करके उसी को भेंट करते हैं।
1: हर हफ्ते किसी कंपनी की गाड़ी पास के शहर से मुफ्त में दवाएं सप्लाई कर जाती है।
2: इसीलिए तो ये लड़की हम लोगों को तुच्छ मानकर हमारा अपमान करती रहती है।
3: आजकल गांव में हैजे का खतरा है ना, वो जगह जगह जाकर लोगों को इंजेक्शन दवा दी दे आती है।
2: इससे ये साबित करना चाहती है कि हमारा धर्म अर्थ औषधालय बेकार है, असली दवाखाना तो स्वयं उसका है।
1: अजी बड़ी आई धर्म सेवा करने वाली, हम भी देख हैं जी कब तक चलेगा।
3: आप क्या कर लेंगे श्रीमान?
1: अजी हमारे छोकरे किस दिन काम आएंगे आखिर? उनसे कह दूंगा ऐसा काम करो जिससे कंपनी की उस गाड़ी का आना ही बंद हो जाए।
2: शाबाश, ये हुई काम की बात।
3: देखें दवाओं के बगैर कैसे इलाज करेगी।
4: अपने खेत बगीचे घर टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
5: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, रानो जी का बाग, खोखरिया बिराम मंडो।
4: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
6: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
7: जल्दी आओ।
8: या खुदा, ये किस शैतान का काम है?
9: शहर से दवाएं लेकर कहीं आ रहा था डॉक्टर साहब, गाँव से 2-3 मील की दूरी पर ही 4-5 आदमियों ने गाड़ी को घेर लिया और मुझे खूब पीटा।
8: दवाएं क्या हुई?
9: कावेरी नदी के किनारे की सड़क पर ही इबादत हुई थी। सारी दवाएं नदी में फेंक दी। उन बदमाशों ने, अकेला आदमी क्या कर सकता था डॉक्टर साहब, उन्होंने मुझे खूब पीटा और फिर चले गए।
8: अब क्या किया जाए डॉक्टर साहब?
7: ऐसा करो, हाँ। पहले इस आदमी के घाव साफ करके दवा लगाओ।
8: अच्छा,
7: बाद में एक आदमी को शहर भेजेंगे।
8: ठीक है,
9: मैं ही चला जाऊंगा डॉक्टर साहब।
7: नहीं भाई, तुम्हें आराम करना है, तुम कल जाओगे। डॉक्टर साहब, एक बात है। बताओ जानम्मा, क्या बात है? कहने के लिए जबान नहीं खुलती, जी घबराता है, क्या कहूँ डॉक्टर अम्मा। घबराने की क्या बात है, बताओ ना। वो उमा जी के घर में,
8: मर्द नायकम जी के घर में, क्या बात है?
7: उनको उल्टी आ गई है, लगता है हैजा है। कोई भी उनके पास जाने को तैयार नहीं है। आपसे विनती करने आदमी भेजा है कि आप एक बार जाकर उन्हें देख आए। कह भेजो, मैं आ रही हूँ।
8: डॉक्टर साहब,
7: कोई बात नहीं है, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह बख्श। उनकी खातिर नहीं तो उमा की खातिर उनकी देखभाल करना हमारा फर्ज है। आओ हम सब चलते हैं। कौन है? डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की बुरी हालत है, आप जल्दी चलकर देखिए, बेसुध पड़ा हुआ है, दया कीजिए।
10: आप कौन है? अरे जानम्मा, तुम आ गई, चलो अच्छा हुआ।
7: डॉक्टर साहब,
11: ये रईस कुमार स्वामी की घर वाली है।
10: क्या,
11: कुमार स्वामी के घर?
7: डॉक्टर साहब, मैं उनकी पत्नी हूँ, मेरा इकलौता बेटा बेहोश पड़ा हुआ है, जान का खतरा है और कोई डॉक्टर नहीं मिला, मैं क्या करूं?
10: शहर ले जा सकती हैं आप तो काफी सुविधा संपन्न लोग हैं, शहर के बड़े अस्पताल में बड़े डॉक्टर के पास इलाज करा सकती हैं।
7: डॉक्टर साहब, वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है, मैं खुद दौड़ी आई, जानम्मा से विनती की कि आपको समझाए।
11: डॉक्टर साहब, ये घर से बाहर कभी नहीं निकलती, अपने बेटे को मौत से बचाने के लिए यहाँ आई हैं। डॉक्टर, अभी तो आप मरूद नायकम जी के घर से होकर आई हैं, अब इनके घर भी,
10: पर क्या हम यकीन कर सकते हैं? एक बार पहले इसी तरह कहकर मुझे धोखे में डाला जा चुका है।
11: अगली बार तो अल्लाह बख्श के साथ चलेगा, मैं तो हूँ ही। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा खाना खाकर आइए, तब तक हम सब चलते हैं।
10: नहीं नहीं, अब वो सब खाने वाने की बात छोड़ो, पहले इनके बेटे को बचाना है, चलिए आइए, जल्दी चलिए।
9: डॉक्टर साहब,
10: हाँ हाँ बताइए, बच्चा कहाँ है?
7: उस कमरे में।
10: चलिए आइए, उसी कमरे में चलते हैं।
9: आइए डॉक्टर साहब, घर से
10: चलिए।
7: राजा बेटा, बोलता क्यों नहीं? आंखें खोलो बेटा।
10: कंपाउंडर
8: जी,

0: 미리 기다가 가봤다.
1: 나.
0: दवा खत्म हो चुकी है, शहर से दवा आनी है और
2: कोई भी दवा बेकार है।
3: डॉक्टर साहब,
0: डॉक्टर साहब,
3: नहीं नहीं नहीं।
2: कंपाउंडर
0: जी,
2: बच्चे का शरीर ठंडा पड़ गया है
0: जी,
2: चाय निकले काफी देर हो चुकी है।
4: नहीं,
2: ऐसा करो,
4: नहीं।
2: इसकी इसकी माँ को तुम कुमार स्वामी साहब, धीरज से काम लीजिए, भगवान ने दिया उसी ने वापस दिया।
3: मुझ पाजी को यही सजा मिलनी चाहिए थी डॉक्टर साहब, मैंने दवा लेके आती हुई गाड़ी को रोक के लुटवाया, दवाओं को नदी में फेंकवाया, उसी की सजा मिल रही है डॉक्टर साहब, मुझे उसी की सजा मिल रही है।
5: इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटता।
2: कंपाउंडर चुप रहो, जो बदतमीजी है।
0: माफी चाहता हूँ डॉक्टर साहब।
2: कुमार स्वामी जी, जो नहीं होना चाहिए था सो गया, आप धैर्य रखिए और अपनी पत्नी को भी संभालिए।
0: चलो
2: चलो मेरा राजा बेटा।

0: थोड़ी देर के लिए बाहर चलिए डॉक्टर साहब, आपके दर्शन करने और अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं।
1: अरे भाई, कृतज्ञता तो परमात्मा के प्रति प्रकट करनी चाहिए। आओ चलो, फिर भी देखती हूँ।
0: चलिए चलिए।
2: बाप रे बाप, कितने कुछ फल फूल, कितनी फूल मालाएं, वाह रे वाह।
1: भाइयों, ये सब फिजूल खर्ची है, इसके बदले नया अस्पताल बनवाने के लिए चंदा देते तो अच्छा होता।
0: डॉक्टर साहब, वो देखिए, गांव के बड़े काश्तकार मरुद नायकम जी भी पधार रहे हैं।
1: आइए आइए आइए। अरे आपने ये तो तकलीफ क्यों उठाई?
3: डॉक्टर साहब, आपको अपनी कृतज्ञता प्रकट करने आया हूँ, आपने हम पर बड़ा एहसान किया है।
1: ऐसा मत कहिए, आप बड़े और बुजुर्ग हैं, फिर मेरी सहेली उमा आपकी बहू है, उस नाते भी आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है।
3: छूत की बीमारी मालूम हो जाने पर पैसे के लिए भी कोई डॉक्टर पास नहीं फटकेगा। आपने मेरी जान बचाई।
1: ये तो डॉक्टर का कर्तव्य है, डॉक्टर बनने के बाद बीमारी से डरकर पीछे हटना कैसे संभव होगा।
3: डॉक्टर साहब, आपको एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ, मेरा पोता हुआ है।
1: अच्छा, बहुत बहुत बधाई।
3: उमा और रतनगिरी दोनों आए हैं।
1: अच्छा,
3: बच्चे के नामकरण संस्कार पर आपको निमंत्रण देने दोनों ही आ रहे हैं। मैं पहले आ गया हूँ, आपको हमारे घर अवश्य आना होगा।
1: अब आप इतने बड़े आदमी होकर खुद चलकर बुलाने आए हैं तो भला मैं कैसे चल सकती हूँ।
3: आप ये फल फूल ले लीजिए और अवश्य पधारिएगा।

0: अरे डियर भारती, तुम आ गई। मैंने सोचा कोई बहाना बनाकर तुम फिर रुक जाओगी।
1: मुझे सोचा ही नहीं होगा कि क्या उपहार ले आऊं, इसलिए भाई यहाँ से नहीं हूँ। माँ
0: बारी वाह, पालने पर पड़े बच्चे को हवाई जहाज भेंट कर रही हूँ।
2: आप भी खूब है डॉक्टर भारती। अरे बच्चे को क्या अभी एरोप्लेन में बिठा के उड़ाएंगे हैं?
1: नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा मतलब था भविष्य में ये होनहार बालक देश विदेश घूमे, ऊंची ऊंची शिक्षा पाए, इसी आशा और अरमान के साथ ये भेंट कर रही हूँ।
3: आइए डॉक्टर अम्मा, भोजन तैयार है, चलिए। हाँ अरे ये एरोप्लेन तो बहुत बढ़िया है।
0: आपका पोता इसमें बैठकर देश विदेश घूमेगा, आसमान पर उड़ेगा।
3: अरे ये आसमान पर उड़ता रहा तो धरती पर कौन रहेगा?
0: धरती पर ही रहेगा, धरती पर रह लेने के बाद ही तो आसमान पर उड़ना सीख सकता है।
3: अच्छा अच्छा, आइए भोजन ठंडा हो रहा है, आइए आइए
0: आइए, चलिए चलिए। भाई तुम्हारे नर्सिंग होम का उद्घाटन कब होगा? सुना है शहर से कोई बड़ा आदमी आने वाला है।
1: मैं उमा, इस मामले में तुम

0: तो मेरे बेटा जानते हैं। फिर भी एक मामूली देहाती आदमी जो मेहनत कश मजदूर है उसके हाथों उद्घाटन होने वाला है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुमने पूरी बिल्डिंग नहीं देखी अस्पताल की, उमा देखोगी ना तो खुश हो जाओगी।
1: एक मिनट सुनिए डॉक्टर।
2: क्यों, क्या हुआ, तुम घबराए हुए क्यों हो?
1: बड़ा अन्याय हुआ है, आरोप स्वामी ने कुछ गुंडों के साथ लेकर नर्सिंग होम की किवाड़ तोड़ डाली और भीतर
2: भारती अकेली चली जा रही है, जालिम राक्षस कहीं उसको भी। मामा जी बचाइए हमारी भारती को।
3: अरे कोई है? राजू

0: कोई भी इमारत के अंदर घुसने की हिम्मत मत करना, तोड़फोड़ की तो बहुत बुरा होगा, खबरदार।
1: बड़ी आई है, हमें डरा दी है, हटा पीछे हटा।
0: हाँ हाँ, अगर आप किसी ने पत्थर फेंके तो मैं उसका खून पी लूंगी।
1: ए लड़को, चलाओ पत्थर।

0: ये सारी शरारत उस बदमाश आरोग्य स्वामी की है।
1: पुलिस ने ऐन मौके पर आकर सब बदमाशों को पकड़ लिया। मरुद नायकम जी ने इस वक्त बड़ी मदद की हमारी।
0: वो तो है, गांव वालों का प्यार भी तो देखो। डॉक्टर साहब के बारे में तरह तरह के सवालों के जवाब दे देकर थक गए हम लोग जानम्मा।
1: डॉक्टर साहब के लिए इन लोगों के दिलों में कितना गहरा प्यार और आदर है।
0: लगता है उमा जी और डॉक्टर रतन साहब तशरीफ ला रहे हैं। अंदर जाकर डॉक्टर साहब को इतना दिखाता हूँ।
1: आइए आइए आइए।
2: डॉक्टर साहब कैसी हैं?
1: आराम कर रही है। चलिए अंदर चलिए। आइए आइए आइए।
2: चलो भारती, तुमने खुद ही पहली मरीज बनकर अस्पताल का उद्घाटन कर दिया।
3: क्या किया जाए, अच्छे काम के लिए पहले कुछ भेंट तो करनी ही पड़ती है। ये देखो ना, ये मेरे माथे का घाव पहली भेंट है।
4: तो डॉक्टर भारती, आपने उस वक्त बहुत ही जल्दबाजी की। आपको अकेले वहां जाना ठीक नहीं था।
3: उस वक्त सोचने समझने या रुके रहने का होश कहाँ था, और फिर कुछ सूझा ही नहीं। नर्सिंग होम वाले मेरे सुनहले सपने को कोई बड़ी परपरता से कुचल रहा है। बस यही बात मेरे भीतर आवेग भर गई, इसी से तैश में आ गई मैं।
2: भारती, मेरे ससुर साहब बहुत दुखे हैं कि वो तुम्हें इस पथराव से बचा नहीं सके। तुम्हारे लिए बड़े चिंतित हैं वो।
3: चिंता की कोई बात नहीं, और अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल से मेरा काम यहीं शुरू होगा। तुम मामा जी को समझा देना उमा।
2: आज तुम्हें मरीज के रूप में लोग यहाँ आकर देख लेते हैं, कल से तुम उन लोगों को मरीज के तौर पर देखना शुरू करना। ये आदान प्रदान अच्छा है, ठीक है ना?
4: अच्छा डॉक्टर भारती, अब हम चलते हैं। वो अब हमें मद्रास जाने की तैयारी भी करनी है ना।
3: हाँ। डॉक्टर रतनगिरी, आप जब भी इस गांव में आए, कृपा कर हमारे उमा नर्सिंग होम में पधारने का कष्ट अवश्य करें।
4: जरूर जरूर।
3: और देखिए, चिकित्सा संबंधी नई बातों का परिचय मुझे अवश्य दिया करें।
4: ओह सर्टेनली सर्टेनली। अच्छा, गुड बाय डॉक्टर।

0: क्या सोच रहे हैं?
1: हाँ? नहीं कुछ नहीं, ये एक छोटे से गांव में इतनी लगन और मेहनत के साथ भारती ने कितना बड़ा और बढ़िया काम कर दिखाया है। मैं उसके सामने हार गया हूँ।
0: मैं सब जानती हूँ।
1: क्या जानती हो?
0: आप जितना समझते हैं मैं उतनी बेवकूफ नहीं हूँ।
1: क्या कह रही हो तुम?
0: याद रखिए, डॉक्टर उमा डॉक्टर भारती की सहेली है।
1: हाँ, लेकिन ये तो सभी को मालूम है।
0: पर ये बात तो किसी को मालूम नहीं, और भारती ने भी कभी नहीं कहा कि उसकी जगह मैंने ली है और उसकी जिंदगी मैं जी रही हूँ।
1: क्या?
0: हाँ, पहला हक उसी का था।
1: ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई?
0: क्या लाभ होता इससे?
1: माँ,
0: भारती अपने उसूल की पक्की है। लंबा कंटीला रास्ता पार करके उसने स्वयं अपने जीवन की दिशा निश्चित कर ली।

0: वो एक मिसाल, एक आदर्श बन चुकी है। वो अपनी अंतश्चेतना के अनुसार चलने वाली कर्तव्यनिष्ठ महिला है।
1: बड़ी ऊंची बातें हैं ये उमा।
0: ऊंची नहीं, सही बातें हैं ये। जरा सोचिए तो, गाड़ी का रुकना और छूटना उस सिग्नल के इशारे पर निर्भर होता है। हमारा जीवन भी सिग्नल के खंभे जैसा है। ठीक इशारा पाने पर गाड़ी पटरी पर चलती है, गलत इशारा करने पर गाड़ी पटरी से उतर जाती है। इसी तरह कुछ लोग गलत इशारे पर चलते हैं, कुछ सही इशारे पर। क्या किया जा सकता है, अपनी अपनी मजबूरियां हैं।
1: उमा, आज मैं तुमसे भी हार गया हूँ।
0: हार मान बैठना पुरुष का लक्षण नहीं है डॉक्टर साहब। वो भी एक विश्वविख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ के लिए बिल्कुल गलत बात है।
1: सिर्फ एक जगह हार मानना गलत बात नहीं।
0: किस जगह?
1: वो प्रेम की दुनिया में।
0: डॉक्टर साहब, सिर्फ संवेदन और भावना तक ही सीमित ना रहिए, दिल टटोलना भी सीख लीजिए।

कंटीला रास्ता। अभी आप सुन रहे थे इस नाटक का दूसरा एवं अंतिम भाग, नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नेत पाते का। ये था हिंदी रूपांतर। रूपांतरकार ए शौर्य राजन, निर्देशक थे वीपी दीक्षित भटुक, और ये केंद्रीय नाटक एकांश दिल्ली की प्रस्तुति थी। अब नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों के उजाले

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों हम सुन रहे हैं जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले। बांट रही हैं हमारे साथ उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। पिछले सप्ताह हमने इस बातचीत की पहली कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं दूसरा भाग।
1: हम बात कर रहे थे रात से स्वराज तक अमाला लाना का सीरियल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की आजादी की कहानी और इतिहास अगर आपको देखना हो तो बहुत महत्वपूर्ण सीरीज। लेकिन इसके साथ साथ जो जिक्र निकला वो श्याम बाबू का निकला, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल मिला था सदाशिव जी को भारत एक खोज में, उसके बारे में बताइए।
2: हाँ, वो रोल था महात्मा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, और वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था जैसे मैंने कहा, क्योंकि महात्मा फुले ये पापा के जो ऐसे कुछ हमारे आइडियल्स होते हैं,
1: बिल्कुल,
2: जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, समझते हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं, तो महात्मा फुले वैसे आइडियल्स में से एक थे। सो शाहू फुले अम्बेडकर, ये तीनों नाम महाराष्ट्र में काफी लिए जाते हैं। और ये एक विचारधारा है कि सब इंसान जो है, सब लोग इक्वल है, समान है। और इसकी पहल ज्योतिबा फुले ने की थी जब उन्होंने स्त्री शिक्षण के लिए काम किया, जब उन्होंने दलितों को काम देने के लिए काम शुरू किया। उनकी एक कंपनी थी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो शुरू किया जिसमें हर एक जाति धर्म के इंसान को काम दिया जाएगा, इस तरह से काम होता था। तो ये जो है वो पापा की जो जीवन के प्रति दृष्टि थी उससे बहुत मिलता जुलता ये सब था, तो इसलिए उनके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये एक रोल वॉज अ ड्रीम रोल फॉर हिम। क्योंकि देखने में तो वो बहुत ज्यादा महात्मा फुले जैसे थे ऐसा मैं नहीं कहूंगी, पर जो आइडियल्स और जिस तरह से श्याम बाबू ने वो भारत एक खोज की स्क्रिप्ट जिस तरह से लिखी गई थी और श्याम बाबू ने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे कि जाति व्यवस्था किस तरह से इन्हें फेस करना पड़ा, सब कुछ वो जिस तरह से आया था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था पापा के लिए और उन्होंने बहुत एंजॉय किया। बिकॉज श्याम बाबू के साथ काम करना यही एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस, हर एक कलाकार जिसने श्याम बाबू के साथ काम किया है वो आपको बता सकते
1: हैं, अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया।
2: हाँ,
1: वो आप तो किसी भी विषय का जिक्र करें
2: करेक्ट
1: तो वो पेज खुल जाएगा।
2: करेक्ट,
1: वैसे जैसे आज हम क्लिक करते हैं ना।
2: हाँ हाँ, वैसे तो ही हिमसेल्फ वाज अ सर्च इंजन, इस तरह से हम कह सकते हैं।
1: yes.
2: क्या होता है किसी भी कलाकार के लिए कि वो खुद की एक तैयारी करता है, राइट? तो महात्मा फुले के बारे में हम बचपन से स्कूल में पढ़ते आते हैं, स्पेशली महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है, तो एक सोच होती है अपनी, एक विचार होता है और फिर बड़े होते हो और स्कूल की किताबों के अलावा भी कुछ पढ़ते हो तब हमें और ज्ञान मिलता है कि और ये इंसान कैसा था, इसकी रिलेशनशिप अपनी वाइफ के साथ कैसी थी, इसने जो स्त्री शिक्षण के लिए काम किया ये क्यों किया। पापा कहते थे कि मैं मेरी एक सोच लेकर गया था कि महात्मा फुले ऐसे थे, उन्हें ऐसे दिखाना जरूरी है, पर जब श्याम बाबू ने उनका पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन किया तो एक बहुत अलग तरीके से महात्मा फुले उन्हें समझ

0: तब तक के जो महात्मा फुले पापा को समझ में आए थे वो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के रेफरेंस से समझ में आए थे। और जब भारत एक खोज में पापा ने वो रोल किया और श्याम बाबू ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि महात्मा फुले की जगह भारत के इतिहास में पूरे इतिहास में क्या है, उस समय पापा को ये समझ में आया कि नहीं, ये महात्मा फुले, हम लोग भले ही उनको लिमिट करते हैं महाराष्ट्र तक, पर ही इज अ नेशनल हीरो।
1: एक व्यापक दृष्टिकोण,
0: व्यापक दृष्टिकोण है ऑफ कोर्स। और उन्होंने जो मूवमेंट शुरू की है अछूत परंपरा के खिलाफ या स्त्री शिक्षण के लिए, ये आगे जाकर गांधी जी ने, अंबेडकर साहब ने, इन सब ने वो आगे वो लेके गए हैं, पर उसका मुख्य स्रोत महात्मा फुले है। तो ये जब पापा को समझ में आया तब बहुत ही प्राइड वाला वो मोमेंट था कि मैं महात्मा फुले कर रहा हूँ और श्याम बाबू के साथ कर रहा हूँ। और उस वक्त भारत एक खोज एक ऐसी सीरियल थी, जिन्हें याद होगा कि हर रविवार को लोग बैठे रहते थे कि अभी नेक्स्ट एपिसोड आएगा, और पूरे देश के सबसे बेहतरीन कलाकार उस समय उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे। और बिकॉज अगेन श्याम बाबू थे, तो इसलिए श्याम बाबू ने एक एक चुन चुन कर कलाकार उसमें लिए हुए थे। तो इट वॉज अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस, ऐसा मैं कहूंगी। जैसे मैंने कहा कि लोकमान्य तिलक का तो वो उनका एक जुनून था कि अभी मैं करके दिखाऊंगा, पर महात्मा फुले का जब उन्होंने कैरेक्टर किया तब और थोड़ा आगे आ चुके थे जिंदगी में, थोड़ी मेच्योरिटी और आ गई थी, और श्याम बाबू के निर्देशन में वो करना बहुत ही सुंदर अनुभव था। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने लिटरेचर, दलित लिटरेचर जिसे हम कहते हैं मराठी में, वो पढ़ा, उसके बारे में उनकी सेंसिटिविटी है, उनकी जो समझ है वो जिस तरह से डेवलप होती गई, और फिर उसके बाद वो जब सामाजिक कामों में गए तब उन्हें उसका बहुत फायदा हुआ उस रोल का और उस समझ का।

0: बहुत सारे ऐसे लोग हैं बाद की पीढ़ी के जिन्होंने अपने बड़ों से भारतीय कोच की कहानी सुनी है कि ऐसा सीरियल होता था और लोग रुक जाते थे और रविवार का इंतजार किया जाता था, तो बाद की पीढ़ी के लोग इसे ढूंढ कर देखते रहे हैं। बल्कि इस इंटरव्यू के लिए जब मैं वो एपिसोड देख रहा था तो मैंने देखा कि सदाशिव जी की आंखों में एक इंटेंसिटी नजर आती है जब वो अपने संवाद बोल रहे हैं। अलग अलग दृश्यों में जहां उनको खेलने का मौका मिलता है तो खेल जाते हैं, उस रोल को वो एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। क्या कभी कोई ऐसा जिक्र है जहां किसी ने उनसे कहा हो कि तुम्हारी आंखें बहुत बोलती हैं और तुम्हारे अभिनय की बड़ी जंग आंखों से जीतती हैं?
1: एक्चुअली ये इसके लिए हमें फिर से अर्ध सत्य की तरफ जाना पड़ेगा, बिकॉज मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। तब गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिसका जिक्र है।
1: तो तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है और इसलिए वो कैरेक्टर के लिए तुम एकदम परफेक्ट हो। और आप अगर अर्धसत्य देखेंगे आज भी तो आप देखोगे, आई थिंक वेव्स पर ही है, वेव्स प्लेटफॉर्म पर, तब आप देखोगे कि जिस तरह से आंखों का अभिनय किया है पापा ने, उसके बाद जब भी उन्होंने कमर्शियल फिल्में की उसमें वो इंटेंसिटी नहीं आई है। पर वही इंटेंसिटी आपको राज से स्वराज तक में दिखेगी,
0: बिल्कुल
1: वही इंटेंसिटी आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया में दिखेगी, वही इंटेंसिटी आपको वास्तु पुरुष में दिखेगी। ऐसी कुछ चुनिंदा रोल्स हैं जिनमें वो इंटेंसिटी समझ में आती है, और मेरे ख्याल से ऐसे बहुत कम निर्देशक है जो वो एक्सप्लॉइट कर पाए हैं जो आंखों की उनकी इंटेंसिटी थी।
0: अर्धसत्य जब कामयाब हुई और अर्धसत्य में जब हम सदाशिव जी को देखते हैं तो जब उनके दृश्य आते हैं तो एक सिहरन देखने वाले को दौड़ जाती है। मतलब एक ठंडा सा भय महसूस होता है, जबकि कितने कम दृश्य हैं
1: और वो पूरे
0: साढ़े तीन दृश्यों में जो उन्होंने कमाल किया। उसके बाद उनके पास बहुत ज्यादा ऑफर्स आने लगे और उसके बाद की जो कहानी है कि कैसे उनसे कहा गया सेक्रेटरी रख लो वो बताइए।
1: तो इसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि जब अर्धसत्य रिलीज हुई तब क्या हुआ था।
0: हाँ, बिल्कुल यहाँ से ही आगे चलेंगे।
1: तो जब अर्धसत्य रिलीज हुई तब मेरे चाचा जी ने केमिस्ट की दुकान खोली थी अहमदनगर में। मेरे चाचा जी बहुत मेरे दादाजी की तरह ही बिजनेस माइंडेड और इस तरह से

थे कलाकार, मेरे पापा एक हमारी फैमिली में निकल गए कलाकार था। और पापा उनको मदद कर रहे थे क्योंकि नया नया दुकान शुरू हुआ था, प्रीमियर था बंबई में अर्ध सत्य का। तो पापा ने दादाजी से पूछा, बिकॉज उस वक्त तो ऐसे होता था ना कि पिताजी की परमिशन के बिना आप कहीं नहीं जा सकते। तो उन्होंने पूछा कि मैं जाऊं वहां पर प्रीमियर है, तो क्योंकि उससे पहले 22 जून 18

0: तो क्योंकि उससे पहले 22 जून 1897 आई हुई थी और वो फिल्म कुछ खास चली नहीं थी, तो दादाजी ने पूछा अच्छा कितना रोल है तुम्हारा? कुछ है, 3-3.5 सीन है। 3-3.5 सीन के लिए तुम अहमदनगर से उठ के बॉम्बे जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना, यहाँ पे काम करो, यहाँ पे लोग नहीं है, मदद करो। ऐसा माहौल था उस वक्त घर पर। तो पापा ने हाँ कहा। उस वक्त हमारे यहाँ पर फोन भी नहीं था और हमारे ही हवेली में बाहर की तरफ जो दुकानें थी वो रेंट पे दी हुई थी। तो हमारे बाजू में एक जो दुकान था, मेडिकल शॉप के बाजू में, वो एक स्पोर्ट्स का दुकान था, वहां पर एक फोन था। तो पूरा जो हमारा एरिया था वो उसी फोन पे फोन उसके लिए आते थे। फिल्म रिलीज हुई और प्रीमियर पे रामा शेट्टी तो था नहीं, और सबको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये है कौन, ये बंदा है कौन, ये रहता कहाँ है, क्या करता है। बिकॉज उनका ऐसे नेटवर्क भी नहीं था हिंदी थिएटर में जैसे पहले हुआ करता था लोगों का। तो फिर तेंदुलकर साहब से लोगों ने फोन नंबर लेकर, अहमदनगर में ट्रंक कॉल होते थे उस वक्त, तो वो नंबर लगाकर रुकना पड़ता था, जब कॉल लगेगा तब वो लगेगा, इस तरह से। और उस दिन जो वो फोन बजना शुरू हुआ वो दिन भर वो फोन बंद ही नहीं हुआ। अल्टीमेटली शाम को वो शिंदे स्पोर्ट्स के जो मालिक थे उन्होंने वो उठाया फोन और बाजू में रख दिया, निकाल के रख दिया, अनहुक कर दिया कि बस अभी नहीं बजना चाहिए फोन। और जब इस तरह से देखा तब दादाजी ने कहा ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा हुआ है, तो अब तुम जाओ बम्बई और देखो क्या हुआ है। उसके बाद फिर हम बम्बई आए, बिकॉज उस समय दिवाली के दिन चल रहे थे, तो वो छुट्टियों का मौसम और वो सब करके 83 की बात है ये, हम लोग बम्बई आए। और जैसे ही हम तो उस वक्त लाल डिब्बे से ट्रैवल करते थे, स्टेट बस से हम लोग उतरे, बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन था वहां पर उतरे, क्योंकि उस वक्त अहमदनगर में फिल्म भी इमीडिएटली रिलीज नहीं होती थी,
1: देर से आती थी,
0: एक 1.5 साल के बाद वहां फिल्म आती थी। तो हमें तो पता ही नहीं था बॉम्बे में क्या हुआ है। तो हम लोग उतरे और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: वा, वा,
0: फिर
1: वा,
0: एक सरदार जी ने पापा को कहा कि अरे भाई तुम टेंशन मत लो, चलो चलो चलो चलो, और उन्होंने हमारा सामान उठाया, टैक्सी में डाला हम सबको, वरना हम लोग
1: गिर जाते।
0: हम लोग ट्रेन से घर जाने वाले लोग थे कि अभी बस से उतरे हैं, ट्रेन पकड़ेंगे घर जाएंगे, इस तरह से नहीं नहीं बैठो तुम टैक्सी में, ये वो करके फिर हम लोग गए अंधेरी में किराए का घर जो था वहां पर। पापा पैसे देने लगे टैक्सी के, तो नहीं नहीं नहीं, नहीं रामा शेट्टी से पैसे नहीं दे सकता मैं। और हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो क्या रहा है।
1: बिल्कुल, सोचिए कि हम किस जमाने में ये बात कर रहे हैं जबकि फिल्म के प्रीमियर के बाद रीलें चल पड़ती हैं।
0: हाँ,
1: और रातों रात बंदा स्टार बन जाता है। और कोने कोने में खबर फैल जाती है और यहाँ अहमदनगर में पता ही नहीं है कि बम्बई में क्या धमाका हो चुका है।
0: वाह। उस वक्त फिर ऐसा हुआ था कि हमारे घर पे जब हम पहुंचे तो वहां पर किराए का घर था, पर लोगों को पता चल गया था कि यहाँ पर ये रहते हैं। अगेन हमारे जो नेबर थे उनके पास फोन था तो उनका फोन बजता था, हमारे घर पे फोन ही नहीं था, हमारे घर पे उस वक्त टीवी भी नहीं था एक्चुअली। इसलिए फिर उन्होंने अल्टीमेटली हमें कहा, पवार साहब करके थे, कि भाई अभी तुम एक फोन ले लो।
1: इतने फोन आने लगे।
0: मेरे ख्याल से उस समय जो टेलीफोन कंपनी थी उसमें नंबर लगाना पड़ता था, 6-7 महीना, 1-1 साल फोन आने में लग जाता था, पर बिकॉज रामा शेट्टी के लिए वो था इसलिए रातों रात हमारे घर पे उस वक्त फोन आ गया था। मुझे याद है कि अल्टीमेटली तेंदुलकर साहब ने ही पापा से कहा था कि देखो सदाशिव, अभी तुम इतने ये हो चुके हो कि तुम अभी खुद बात नहीं कर सकते प्रोड्यूसर्स से, यू नीड अ मैनेजर। और फिर उन्होंने एक सेक्रेटरी उनको रिकमेंड किया था और फिर पापा ने वो सेक्रेटरी रखा था। और मुझे याद है एक हफ्ते में उस समय पापा ने 200 फिल्में साइन की थी।
1: अरे बाप रे, इतना आदमी एक जीवन काल में करता है
0: एक्चुअली। तो एक हफ्ते में 200 फिल्में उन्होंने साइन करी थी, जो आगे 8-10 साल तक उनका काम उसी में चल रहा था।
1: गजब। मैंने ये भी बात पढ़ी है कि चूंकि थिएटर की दुनिया से आए थे और एक सीधे साधे व्यक्ति थे, तो उन्हें मुंबई के फिल्म जगत की तिकड़म नहीं पता थी कि कैसे अपना रेट तय करना है, कितने पैसे मांगने हैं। और वो शुरुआती जो दौर था वो इसी तरह का दौर था जब उन्हें

0: खुद अपना ही मोल नहीं पता था।
1: मैं तो कहती हूँ पापा को अंत तक खुद का मोल नहीं पता था। मैं ये इसलिए कहती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल अंदर बाहर से एक कलाकार थे। जैसा मैंने पहले कहा था कि भोला सांब जो मराठी में कहा जाता है कि जिसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता, वैसी ही उनकी ये थी। उस वक्त भी ही यूज्ड टू डिपेंड ऑन हिज सेक्रेटरी कि भाई तू डिसाइड कर कितना लेना है, किससे कितना लेना है।
0: एग्जैक्टली
1: पर उसमें भी उनका ये होता था कि भाई ये रोल के लिए एक पैसा भी नहीं मिला फिर भी मैं ये करूंगा। हालांकि ही वॉज अ बिग स्टार उस वक्त, लेकिन वो आखिर तक उनका था। कुछ लोगों के लिए, कुछ प्रोग्राम्स के लिए वो कहते थे कि मैं अवेलेबल हूँ, तुम बताओ तुम्हें कब की डेट चाहिए, फिर भले ही वहां पर काम अगर मेरा छूटता है दूसरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो बिल्कुल कलाकार थे और एंड तक उन्होंने कभी पैसों के मामले में और इसमें ध्यान ही नहीं दिया। जो पैसा आना शुरू हुआ तो लकीली मम्मी को उसका सेंस था कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, मैनेजमेंट कैसे करनी है पैसों की, इसलिए उन्होंने वो किया, इसलिए आज तक हम लोग सही सलामत है। वरना पापा को उनका खुद का भी मोल पता नहीं था। मुझे नहीं लगता टिल द एंड उन्होंने खुद की जो वैल्यूएशन की थी, बहुत ज्यादा मांग सकते थे पर उन्होंने मांगा नहीं कभी, बिकॉज पैसा ये उनके लिए प्रायोरिटी ही नहीं थी। उनके लिए प्रायोरिटी थी कि मैं काम करता रहूं, मैं एक्टिंग करता रहूं, मैं लोगों से मिलता रहूं, मैं लोगों के लिए कुछ करता रहूं। तो टेक्निकली क्या था, बिकॉज पापा ने फिल्म इंडस्ट्री को घर से बाहर रखा हुआ था, हमारे घर पे बहुत ज्यादा फिल्मी लोग नहीं आते थे, तो इसलिए उनकी उस वक्त क्या प्रोसेस थी, वो रेट किस तरह से डिसाइड होता था, फिल्म की फीस क्या डिसाइड होती थी, ये प्रोसेस के बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। पर जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगी तब मुझे समझ में आया कि पापा ने तो खुद को बहुत अंडर वैल्यू कर रखा है।
0: सत्य की बात, जब वो बिजी हो रहे थे लगातार तो जाहिर है कि वो एक थिएटर की धारा पीछे छूटती चली जा रही थी। जाहिर है कि इस बात की एक एक तकलीफ, एक एक खालीपन उनके मन में रहा होगा। उसका कभी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे थिएटर का हाथ छूटता जा रहा है?
1: हाँ, पर उनका थिएटर का हाथ भले ही दूर गया हो उनसे पर छूटा कभी नहीं था।
0: हाँ हाँ,
1: ये मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि उनके दोस्त, जिन लोगों के साथ उनकी उठन बैठन होती थी, वो सारे या तो थिएटर के होते थे या तो समाज सेवक होते थे। तो उनका जो स्ट्रक्चर था, जिस तरह से वो बने हुए थे, उसमें ही थिएटर था। तो उनके जो कॉलेज के दौरान जिन लोगों के साथ वो थिएटर करते थे, जिन लोगों के साथ रिहर्सल्स करते थे, उनका जो ग्रुप था वो उनका ग्रुप आखिर तक था। तो इसलिए थिएटर कभी उनसे छूटा नहीं था एक्चुअली। और उन्होंने थिएटर किया नहीं किया ऐसी भी बात नहीं है, उन्होंने एक प्ले किया था अकस्मात मीना कुलकर्णी के साथ जो सुपर हिट था, और ये मैं बात कर रही हूँ 91-92 की,
0: जब वो बहुत बड़े स्टार
1: बहुत
0: बन चुके
1: बड़े स्टार थे, सड़क से थोड़ा सा ही पहले, तो या आफ्टर सड़क आई थिंक। तो उस वक्त भी उन्होंने वो प्ले किया हुआ था बिकॉज वो कैरेक्टर ऐसा था कि इट नीडेड अ परफॉर्मेंस एंड इट वॉज चैलेंजिंग। तो अगर चैलेंजिंग है तो वो करने के लिए तैयार थे, क्योंकि क्या होता है एक बार आप स्टार बन जाते हो तो थिएटर वाले हो या फिल्म वाले हो, ये आपका स्टारडम एनकैश करने के लिए ही ज्यादा आपके पास आते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और वैसे ही रोल आपको ऑफर किए जाते हैं। काफी सारे कलाकारों के साथ ये ट्रेजेडी हुई है, पापा भी उससे छूटे नहीं हैं। पर उन्होंने वो प्ले किया था क्योंकि उनके जो दोस्त थे सुरेश चिखले, उन्होंने वो लिखा हुआ प्ले था, और वो प्ले बहुत ज्यादा चला। उसके लगभग आई थिंक 1.5 साल उन्होंने उसके शोज किए, पर उस वक्त थिएटर का परफॉर्मेंस या फिल्म के शूटिंग्स इतने इराटिक हुआ करते थे कि एक डेट देना और वो स्टिक करना, जैसे अभी होता है कि जो मराठी कलाकार थिएटर करते हैं वो वीकेंड्स रख देते हैं कि वीकेंड्स पे मेरे शोज होंगे और मंडे टू फ्राइडे मैं काम करूंगा, राइट? सो वैसे उस समय एक्टर्स के पास ये सहूलियत नहीं
0: थी, उतनी सिस्टमैटिक इंडस्ट्री नहीं,
1: बिल्कुल ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। तो इसलिए उनका वो छूटा। पर बाद में जब उन्होंने धीरे धीरे काम कम करते गए, वो तब उन्होंने एक प्ले किया था जैसा तैसा विठोबा, विच वॉज अ वन मैन शो।
0: ओके, सोलो था।
1: सोलो था और पूरा 2 घंटे पापा अकेले स्टेज पर।
0: क्या बात है, क्या बात
1: ये
0: है।
1: 2003-04 की बात कह,
0: खुद ही डायरेक्ट किया था या किसी
1: नहीं,
0: और
1: नहीं,
0: को दिया?
1: चंद्रकांत कुलकर्णी करके हमारे मराठी के बहुत बड़े दिग्दर्शक हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था ये प्ले।
0: वाह।
1: और लिखा था आनंद विनायक जातेगावकर करके, बहुत बड़े फिलोसॉफिकल राइटर होकर गए हैं, उन्होंने लिखा हुआ था ये प्ले। सो तुकाराम महाराज जो संत है उनके अभंगों के ऊपर बेस्ड ये प्ले है। ये इसका ऑडियो ट्रैक है बिकॉज ये सुनने वाला

0: प्ले है।
1: बिल्कुल, ये भी एक माइलस्टोन है कि वो करते चले गए जहाँ तक उनका बस था।
0: अगर कुछ नया करने के लिए मिल रहा है तो उन्हें वो करना होता था, तो इसलिए आई थिंक जैसा तैसा विठोबा वॉज अ ब्रिलियंट अटेम्प्ट दैट ही डिड। उसके बाद वो थिएटर फिर से शुरू करना चाहते थे, हालांकि जब उनकी तबीयत बिगड़ गई उस वक्त भी वो एक प्ले निर्देशित और एक्ट करने की प्रोसेस में थे, और तब वो उनका रिहर्सल्स और ये शुरू हो ही रहे थे, पर उनकी तबीयत उनकी साथ नहीं दी इसलिए वो नहीं हो पाया।
1: जी, जिस समय वो व्यस्त होते चले जा रहे थे उस समय जाहिर है कि उनका एक रूटीन होता होगा और घर पर थोड़ा कम समय देते होंगे, तो बच्चों ने कितना मिस किया उनको?
0: बहुत। मैं तो खैर बहुत ही छोटी थी
1: जी,
0: लेकिन मेरी बहनों ने काफी मिस किया।
1: वो बड़ी थी और
0: समझदार थी। क्योंकि मैं छोटी थी इसलिए मुझे ऐसे कुछ अलग लगता नहीं था, बिकॉज पापा बिजी ही थे। तो आप कहते हो कि रूटीन है, तो ये फिल्म एक्टर्स का ना रूटीन ही नहीं होता है।
1: बिल्कुल
0: हाँ, क्योंकि जो शिफ्ट लगती है, शूटिंग की जो शिफ्ट होती है, उस हिसाब से उन्हें जाना पड़ता है। और जैसा मैंने कहा कि अभी कलाकारों के पास ये सहूलियत है कि एक टाइम पे वो एक ही फिल्म करेंगे एक समय पे, वैसे उस वक्त नहीं था कि दो तीन दिन एक हफ्ता किसी एक फिल्म का शूटिंग कर लिया, फिर बाद में दूसरी किसी फिल्म का शूटिंग कर लिया। तो जैसे शूटिंग लगते थे, जैसे डेट्स दी जाती थी वैसे देते थे, क्योंकि पापा हो लिए, गोविंदा हो लिए, ये जो सब सारे कलाकार थे, इनकी डेट्स तीन तीन चार चार साल तक बुक्ड रहती थी।
1: बिल्कुल,
0: तो इसलिए उनका कोई रूटीन नहीं था एक्चुअली, लेकिन एक ही रूटीन था कि पापा होंगे तो पापा है, घर पर है, हमसे बात करेंगे, हम सब बैठ के साथ में खाना खाएंगे, उनके दोस्त आएंगे, उनके साथ टाइम पास होगा, ये रूटीन एक डेफिनेटली होता था। और जब वो अनिल शर्मा जी की फिल्में कर रहे थे तब तो राजस्थान और कश्मीर में महीना महीना शेड्यूल लगते थे, तो जब पापा आने वाले हो तो हम बच्चों को कैसे पता चलता था, बिकॉज उनकी जो फेवरेट मिठाइयां होती थी ना वो मम्मी बनाती थी।
1: अच्छा, तो उससे
0: अंदाजा था शायद पापा आजकल में आने वाले।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
0: तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और हमारा रूटीन लगभग मम्मी के साथ ही रहता था, मम्मी ही डिसाइड करती थी हम कैसे पढ़ेंगे, हम कहाँ ट्यूशन के लिए जाएंगे, हम क्या कपड़े पहनेंगे, हम क्या करेंगे, बिकॉज वो ही पूरा वक्त होती थी हमारे साथ। पापा तो बाहर गांव होते थे और इतने बिजी होते थे कि ही वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ आर डिसीजन मेकिंग, हमने जो निर्णय लिए उसमें वो कभी नहीं थे। पर मैं इस बारे में बहुत लकी समझती हूँ खुद को कि जैसे मैं कॉलेज गई 2001 के आसपास, तब पापा ने काम बहुत कम कर दिया था, बिकॉज उन्हें ही हैड बिकम बोर्ड ऑफ डूइंग द सेम थिंग्स, कि एक विलन है या एक कॉमेडियन है, वही वही काम करके उन्हें ऐसा हो गया था यार अभी नहीं करना है बस। और जैसा मैंने कहा कि पैसा और बिजनेस और इन्वेस्टमेंट, इसमें उनका कभी ध्यान नहीं था, तो उन्होंने एक दिन ये डिसीजन ले लिया और मम्मी को बोल दिया कि देख जितना मैंने कमाया है उसमें तुम और मैं मरने तक तो खा पी के सुखी रह सकते हैं, अभी और कमाने की जरूरत है क्या? क्योंकि मेरी माँ ऐसी है कि उन्होंने उनको पूजा ही था प्रैक्टिकली। तो उन्होंने कहा अगर आपको नहीं करना है तो आप मत कीजिए, आपको जो दिल में आता है वो कीजिए। और उस तरह से उन्होंने काम छोड़ दिया था, प्रैक्टिकली छोड़ दिया था कि अब अगर मुझे इस तरह के रोल्स आते हैं तो मैं नहीं करूंगा। और उन्होंने फिर उनकी किताबें पढ़ना, फिर अहमदनगर जाना, पूना जाना, दोस्तों के साथ मिलना बैठना, उस समय सैटेलाइट टेलीविजन आ गया था तो इंटरनेशनल फिल्में घर पर बैठकर देख सकते थे, तो फिल्में देखना, नेशनल फिल्म आर्काइव में जाकर वो एक एक हफ्ते के लिए, उनका एक छोटा स्क्रीनिंग रूम है पूना में, वो बुक करके रखते थे कि मुझे अच्छा, ये फिल्में देखनी है, और वो फिल्में वो देखते थे वहां बैठकर।
1: ड्रॉइंग और फोटोग्राफी का क्या मामला था?
0: जैसा मैंने कहा कि पापा एक निर्देशक भी थे, तो उनकी नजर हमेशा कुछ अलग अगर दिखता है तो उसके ऊपर टिकी रहती थी।
1: ओके।
0: और हमेशा ढूंढती थी कि कोई नया कुछ अगर दिखाई दे तो लकीली और उनके काम की वजह से उन्हें पूरा भारत वो घूमे, हालांकि आधे से ज्यादा दुनिया वो घूमे। उस वक्त तो बड़े बड़े कैमरास होते थे, लेंस और फिल्म्स होती थी उसमें, रोल वाले कैमरास होते थे, वो लेकर वो चलते थे साथ
1: वा,
0: में
1: वा।
0: जहां पर भी वो जाते थे, राजस्थान हो, वेस्ट बंगाल हो, साउथ इंडिया हो, कोडाईकनाल, जहां पर भी वो शूटिंग के लिए जाते थे वहां पर उनके साथ उनका कैमरा होता था। तो अगर अहमदनगर में जो हमारा घर है जो पापा ने बनाया हुआ है उसमें

0: अगर आप कभी जाओगे, किसी को अगर चांस मिलता है वहां जाने का और देखने का, उस घर का पूरा हमारा इंटीरियर सिर्फ फोटोग्राफ्स है जो पापा ने पूरे इंडिया में जाकर खींची हुई तस्वीरें हैं। उसमें फैमिली फोटोग्राफ्स भी है ऑफ कोर्स। तो वो जो टेक्निक है फोटो की, उन्हें मैनुअल कैमरा अच्छा लगता था, डिजिटल कैमरा उन्हें बिल्कुल, उन्हें लगा ये क्या बचकाना है ना। तो वो लेंस एडजस्ट करो, फोकस करो, इत्मीनान से शूट करो, इस तरह से उनकी वो स्टाइल थी। तो उन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक था। और उनके जो दोस्त थे, सबसे करीबी दोस्त हम जिन्हें कह सकते हैं, डॉक्टर अनिल अउसट है, फिर डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर है जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जिन्होंने शुरू की थी, तो इन सब लोगों को भी ये सब शौक थे। तो इसलिए इनके साथ तो किताबें, फोटोग्राफी और पेंटिंग, ये तीन चीजें थी जो इनको बहुत ज्यादा पसंद थी, ये सब लोगों को और पापा को विशेषता, क्योंकि उनके काम की वजह से वो जाते थे। और इसमें एक बात बताने वाली ये है कि ये जब भी जाते थे ना, जैसे उन्होंने मिथुनदा के साथ काफी सारे फिल्में की थी, तो उस वक्त ऊटी में शूटिंग होता था, 90s की बात कर रही हूं मैं। तो जब भी वो जाते थे तो उनके साथ उनके ये जो दोस्त थे, नरेंद्र दाभोलकर हो गया, डॉक्टर अनिल अउसट हो गए, या राइटर्स थे, वो लोग साथ में होते थे।
1: वाह वाह।
0: कि वहां पर शांति से मैं शूटिंग करूंगा, तुम बैठ के रूम में अपना लिखने का काम करना। तो ये सब लेखक थे, लेखक वैचारिक इसमें शामिल होने वाले, इस तरह के सारे लोग थे। तो हमेशा उनके साथ उनके दोस्त रहते थे, फैमिली मेंबर्स को वो कभी लेकर नहीं थे। बिल्कुल डे वन से, जैसे याद है जो लोग मम्मी की किताब पढ़ेंगे, अभी उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी आएगा, मेरी बहन ही कर रही है, तो जब पढ़ेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि बचपन से लेकर आज तक, मतलब अभी भी टिल हिज लास्ट, उनके आजू बाजू हमेशा उनके दोस्त हुआ करते थे। जब वो छोटे, बिल्कुल छोटे थे, तब मेरे दादाजी की ईट बनाने का जो कारखाना होता है वो था, और वहीं पर एक साइड में एक छोटा सा घर बनाकर दादाजी, दादी और पापा सब लोग रहते थे। और वहां पर जो कामगार होते थे उनके रहने के लिए भी वहां पर रूम्स बनाए हुए थे। तो उन सारे कामगारों के बच्चों को लेकर पापा घर पर आते थे और दादी से कहते थे कि इन सबको भी दो,
1: वाह वाह,
0: मैं इनके साथ बैठ के खाऊंगा। तो दादी कहते थे कि चलो ठीक है, इसी बहाने खा लेगा। सबको खिलाते थे।
1: हाँ।
0: और मुझे जब से याद है बचपन से, तब से हमारे घर पे एक भी दिन ऐसा, मतलब पापा भले ही शूटिंग के लिए गए हो, पर उनके दोस्त बॉम्बई में किसी काम से आते थे, तो वो अहमदनगर का कोई भी आदमी अगर बॉम्बे आता था तो हमारा घर उनका खुद का घर होता था।
1: वाह वाह वाह। हाँ,
0: तो एक भी दिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ, मैं, मेरी माँ, मेरी बहनें और पिताजी इतने ही घर पर है, ऐसा एक भी दिन आज तक मुझे याद नहीं है।
1: हमेशा कोई ना कोई,
0: हमेशा कोई ना कोई होता था, या तो वो कोई लेखक होता था, कोई नया कलाकार होता था, या उनका कॉलेज का दोस्त होता था, या कोई समाज सेवक होता था, या कोई ऐसा होता था जिसका कोई काम है, जिसे कोई परमिशन चाहिए, कोई है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है नया काम, जिसे भी बंबई में आकर कुछ मदद की जरूरत चाहिए होती थी, हमारा घर उन सब के लिए खुला होता था।
1: क्या बात है। इतनी शिद्दत से हम उन दिनों को याद करें जब वो बिजी थे, तो मुझे लगता है यहाँ बख्शी साहब का एक गाना आना चाहिए, तकदीर फिल्म का, पापा जल्दी आ जाना, सात समुंदर पार से।
0: श्योर।
1: ये गाना सुनते हैं।

0: बहुत सारी बातों के सिरे यहाँ पर खुले रीमा जी, लेकिन जो जिक्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से आया वो नरेंद्र दाभोलकर जी का है, अंधविश्वास निर्मूलन समिति का। उनके साथ उनके बहुत गहरे रिश्ते रहे, उसका जिक्र कीजिए कि किस तरह से वो इस समिति के साथ भी काम करते रहे।
1: करेक्ट, नरेंद्र काका जो थे वो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जो भारत में जो अंधश्रद्धा के खिलाफ बहुत बड़ी मूवमेंट हुई उसके प्रेरक तो थे ही, पर वो एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत उम्दा इंसान थे। उनकी जो पहचान थी वो पहले डॉक्टर अनिल अवसट, डॉक्टर श्रीराम लागू, निळू फुले, इनके जरिए पापा की और उनकी पहचान बनी और आगे जाके फिर वो दोस्ती और आगे बढ़ी।
0: तस्वीरों में भी ये लोग साथ नजर आते हैं, हाँ, बहुत सारी हाँ, तस्वीरों,
1: काफी सारी तस्वीरें,
0: डॉक्टर लागू हैं, निळू फुले हैं, ये सब हाँ, साथ में दिख रहे हैं।
1: हाँ, एकदम, क्योंकि इन्होंने एक मूवमेंट करी थी जिसका नाम था सामाजिक कृतज्ञता निधि। सो सामाजिक कृतज्ञता निधि ये एक मूवमेंट थी जिसमें इन्होंने फंड रेजिंग की थी। लग्नाची बेड़ी करके एक प्ले था जिसमें पापा निळू फुले, डॉक्टर लागू, तनुजा

0: जो एक्ट्रेस
1: अनुजा,
0: सुहास जोशी, रोहिणी हट्टंगड़ी, ऐसे सब बड़े बड़े बड़े बड़े कलाकार, और इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूमकर निधि जमा किया हुआ था
1: नाटक करके, जो
0: नाटक
1: जिसका
0: करके
1: जिक्र आता है कि बड़ा तूफानी दौरा किया।
0: एग्जैक्टली और ये मैं 84-85 की बात कर रही हूँ, और उस समय उन्होंने लगभग 60 लाख रुपए 84-85 में जमा किए हुए थे, जिसका हेतु ये था कि ये पैसे हम फिक्स करेंगे और इसका जो इंटरेस्ट इनकम आएगा उसमें से हर साल हम जो समाज के लिए काम करते हैं, जिनके घर चलने का और कोई जरिया नहीं है, उन्हें हम ये पैसे हर महीना देंगे 2 साल तक।
1: क्या बात। एक तो ये कि ये रकम जो 80 के दशक में थी वो आज की तुलना में मुझे लगता है शायद 10 गुना और ज्यादा ही।
0: तो इस तरह से वो कंसेप्ट थी, ये कंसेप्ट निकली थी नरेंद्र काका के दिमाग से, और डॉक्टर लागू और नीलू फुले ये बहुत करीब से काम कर रहे थे ऑलरेडी डॉक्टर दाभोलकर के साथ, और उन्होंने क्योंकि पापा के साथ उन्होंने काम किया हुआ था कन्यादान में, जैसे मैंने कहा डॉक्टर लागू से बहुत ही करीबी रिश्ता पापा का हो चुका था तब,
1: आगे चलकर उसकी अलग से बात करते हैं।
0: हाँ हाँ डेफिनेटली, हालांकि बहुत ही करीबी रिश्ता तब तक हो चुका था, इसलिए फिर डॉक्टर लागू ने कहा कि सदाशिव हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, आर यू इंटरेस्टेड? तो पापा ने कहा जरूर, क्यों नहीं, और इस तरह से पापा उसमें शामिल हुए। और ये सब लोग महाराष्ट्र के जितने भी थिएटर्स हैं, जितने भी छोटे बड़े गांव हैं, वहां जाकर आप इमेजिन कीजिए उस वक्त के नेशनल स्टार्स डॉक्टर लागू, निलू फुले, पापा, तनुजा,
1: कमर्शियल सिनेमा की
0: कमर्शियल,
1: एग्जैक्टली,
0: हाँ हाँ, ये सब लोग वहां पर प्ले तो करते थे, परफॉर्मेंस तो लोग देखने आते ही थे इनका, और उसके बाद ये सब लोग जहां ऑडियंस एग्जिट होती है वहां पर झोला लेके खड़े रहते थे।
1: वाओ,
0: झोला लेके खड़े रहते थे और लोग पैसे देते थे। सो जो शो के टिकटों में से पैसे आते थे वो तो आते ही थे, और लोग जिन्हें लगता है कि हमें और मदद करनी चाहिए, वो उस झोली में 5 रुपया हो, 1 रुपया हो, 100 रुपया हो, जिसे जो अच्छा लगे वो उस झोली में डालता था, और ये सब पैसे मिलकर सामाजिक कृतज्ञता निधि के लिए जाते थे।
1: ये कितना बड़ा मुहिम, मतलब
0: बहुत ही
1: ये अद्भुत काम रहा उस जमाने
0: तो,
1: के हिसाब से।
0: और पापा ने मुझे कई बार बता भी चुके हैं, जिसका मेरे ऊपर भी काफी परिणाम रहा है, कि मेरी कला जो है वो सिर्फ मेरी नहीं है, मैं इस समाज का एक घटक हूँ, इसलिए इस समाज के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और इसलिए मैं ये हमेशा पहली जिम्मेदारी ये समझूंगा कि मेरा देश और मेरा समाज, इसके लिए मुझे जो करना है वो मुझे करना है, और फिर मेरा कुटुंब आता है, फिर मेरी फैमिली आती है, फिर मैं आता हूँ। इस तरह से वो जिए भी इसी तरह से, और उन्होंने उनकी करियर भी इसी तरह से की, इसलिए जब वो टॉप पर भी थे तब उनके साथ कभी कोई फिल्मी लोग नहीं होते थे, उनके साथ ये सब समाज सेवक हुआ करते थे। हालांकि ये हमारी फैमिली की परंपरा रही है, मेरे दादाजी भी अहमदनगर के सामाजिक सर्कल्स में बहुत कार्यरत रहे थे टिल द एंड, और उस वक्त भी कॉलेज में भी जब पापा थे तो कोई बाढ़ आई है तो बाढ़ग्रस्तों के लिए कोई शो कर लिया, उनको फंड रेजिंग करके दे दिया, तो ऐसा फंड रेजिंग पापा करते रहे हैं। तो मुझे याद है 97 की बात है, तब हमारे अहमदनगर इज अ हिस्टोरिकल सिटी, और वहां पर एक म्यूजियम था जो एक सुरेश जोशी करके एक थे, जो बहुत भाग दौड़ करके वहां पर वो म्यूजियम उन्होंने तैयार किया था, जमा किया था, पर फंड्स नहीं थे, इसलिए वो म्यूजियम जो था वो अभी बंद शायद करना पड़े इस कगार पर आ चुका था, और गिरीश कुलकर्णी जो है अहमदनगर के स्नेहालय के, उन्होंने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा हुआ था जो महाराष्ट्र टाइम्स में आया था, बॉम्बे में पापा ने पढ़ा, और उन्हें याद आया कि ये सुरेश जोशी जब वो छोटे थे तो अगर कुछ मिला, उस वक्त मोड़ी लिपि में सारे खत लिखे जाते थे, उसमें मिला तो आकर दादाजी के साथ बैठते थे, डिस्कस करते थे, बातें करते थे, तो पापा से रहा नहीं गया, वो उन्होंने गाड़ी निकाली, वो अहमदनगर पहुंच गया।
1: गजब।
0: क्योंकि सुरेश जी के पास ये नहीं था, फोन नहीं था, तो बात कैसे हो, तो वो अहमदनगर पहुंच गए, वो गए वहां पर उनके घर पर, उनसे मिले और कहा क्या कर सकते हैं हम, तो उन्होंने कहा कुछ फंड्स तो चाहिए जो हमें रेज करने ही पड़ेंगे, तो पापा ने कहा ठीक है। उस वक्त स्टार नाइट का ट्रेंड काफी चल रहा था।

0: था. तो उन्होंने अहमदनगर में, बिकॉज पापा का कहना था कि ये हमारे शहर की धरोहर है और इसके लिए हमारे शहर ने ही कंट्रीब्यूट करना चाहिए.
1: क्या बात है.
0: तो इसलिए उन्होंने उस वक्त गोविंदा असरानी जी, जॉनी लीवर, ये सारे जो बड़े बड़े कलाकार थे उनको लेकर एक स्टार नाइट अरेंज की अहमदनगर में, जहां पर रिलीज की डेट पे फिल्में भी रिलीज नहीं होती थी उस समय, तक लेट रिलीज होती थी. उन्होंने एक स्टार नाइट अरेंज की जिस एक रात में, ये मैं 97 की बात कर रही हूं, एक रात में 26 लाख रुपया खड़ा किया गया फॉर द म्यूजियम. और ये बहुत बड़ी बात है और आज भी वो म्यूजियम खड़ा है और बहुत अच्छे से चल रहा है बिकॉज लोगों को अभी उसका इम्पोर्टेंस समझ में आया है. तो कई बार ऐसे होता है, पापा भी ये कहते थे कि लोग भूल जाते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या है, महत्व किस चीज को देना चाहिए. तो हम अपनी जिंदगी तो जीते हैं लेकिन जो ये अपना हमारा इतिहास है जिसमें से हम आगे आए हैं, हमारे जो पूर्वज है जिनके कंधों पर हम खड़े हैं आज, उनका रिस्पेक्ट रखना, उनकी यादें ताजी रखना, ये भी हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है.
1: क्या बात है.
0: तो इस तरह से वो करते रहे हैं और हमेशा, मैंने ये मेरे किसी आर्टिकल में भी लिखा हुआ है, मुझे याद है कि जब भी कोई आता था, जैसे मैंने कहा कि हमारा घर तो खुला ही था सबके लिए, तो जब भी कोई आता था तो अच्छा क्या हुआ, क्या चाहिए, अच्छा आप ये संस्था चलाते हो ठीक है, क्या आपको मदद की जरूरत है, तो कुछ परमिशन चाहिए, तो सीएम साहब को फोन लगा लिया, दिल्ली में फोन लगा लिया, कुछ फाइनेंशियल चाहिए, अच्छा चलो, तो मम्मी को बोल दिया अच्छा नंदा चेकबुक लेके आ जाओ, चेक निकाल के दे दिया. और इसमें मुझे मजे की बात ये लगती है कि मम्मी ने भी कभी उन्हें पूछा नहीं कि आप अभी इन्हें क्यों दे रहे हो, 10,000 रुपए इन्हें किस लिए दिए. इट वॉज वेरी क्लियर कि उन्हें देना है, उन्होंने दे दिए, खत्म बात.
1: वाह वाह.
0: तो ये जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी ये बहुत जबरदस्त थी और उन दोनों की वैल्यू सिस्टम सेम थी. जैसा मैंने कहा कि वो एक ही स्कूल में बड़े हुए, एक ही गांव में, उनके पिताजी आपस में अच्छे दोस्त थे, तो उनकी जो मूल्य जिसे हम कहते हैं मूल स्वभाव में जो वैल्यूज थी वो बिल्कुल एक जैसी थी. और आई थिंक इसी की वजह से वो एक दूसरे को इतने अच्छे से साथ भी दे पाए. इट वॉज अ वंडरफुल फीलिंग. और ऐसे घर में बड़ा होना ये नसीब वालों का ही काम है. तो आई एम वेरी लकी दैट कि इस घर में मैं
1: बिल्कुल. चूंकि उनके सामाजिक सरोकारों की बात चल रही है तो यहाँ मुझे होली वाली एक घटना का जिक्र जरूरी लगता है.
0: करेक्ट करेक्ट.
1: वो बताएं.
0: उस समय मैं पूना में थी, मेरी शादी रिसेंटली हुई थी और मुझे वहां पर फोन आया. प्रसन्न जोशी करके कॉरेस्पॉन्डेंट है मराठी में बहुत बड़े, उनका फोन आया और उन्होंने पूछा रीमा ये सच है जो हम सुन रहे हैं. मैंने कहा क्या. मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या हो रहा है. तो आपके पापा पर किसी ने हमला किया है. ऐसा क्या, मुझे पता ही नहीं था. और बात यह हुई थी कि उस समय नरेंद्र दाभोलकर, डॉक्टर अनिल अवसट, डॉक्टर लागू, इन सबके लिए काफी सारी धमकियां आने लगी थी. राइट. सो मुझे ऐसा लगा कि शायद वैसा ही कुछ हुआ हो, वी डोंट नो. मैंने कॉल किया मम्मी को कि क्या हुआ है ये वो. मम्मी का अभी नहीं, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ. तो फिर मैंने मेरी बहन को कॉल किया. मेरी बहन बॉम्बे में ही, पास ही में उसका घर है, तो वो वहीं पर थी. तो उसने कहा इतना कुछ नहीं हुआ है, तुम आराम से बम्बई आ जाओ, फिर हम बात करते हैं. मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम. तो फिर मैं बॉम्बे पहुंची, तब पता चला कि हमारी जो सोसाइटी है उस समय 2012-13 की ये बात है, बहुत बुरी तरह से सूखा पड़ा हुआ था महाराष्ट्र में. दो दो साल तक बारिश नहीं हुई थी, तो जो किसान थे वो अनाज नहीं उगा पा रहे थे और पानी हफ्ते में एक बार 2 घंटे के लिए पानी आ रहा था. इतना कम पानी लोगों को मिल रहा था छोटे गांव में, छोटे शहरों में. और यहां पर बंबई में, बिकॉज हम बंबई है तो यहां पर किसी भी चीज की कमी नहीं होती. पानी 24 घंटे होता है, बिजली होती है 24 घंटे. तो हमारे सामने ही जो एक बिल्डिंग है उसके आंगन में उन्होंने उस वक्त होली के लिए रेन डांस का माहौल तैयार किया था. तो 8-10 ऐसे शावर कंटिन्यूअसली 3-4 घंटे चल रहे थे वहां पर. और उस समय ऐसा था कि उस समय मैंने भी एक डॉक्यूमेंट्री करी थी सातारा डिस्ट्रिक्ट में, जो कैटल कैंप्स लगे हुए थे कि किसानों के पास पानी नहीं है, इसलिए वो उनके जानवरों को पानी नहीं पिला पा रहे, इसलिए वो कैटल कैंप्स में रह रहे हैं. पापा ने भी वो कैंप विजिट किया हुआ था. तो इस तरह से हम लोग बहुत ज्यादा उस समय उस चीज के बारे में अवेयर थे. और मीडिया से कॉल आए बिकॉज सारे

0: कलाकारों ने उस वक्त और महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा था कि सूखी होली खेलनी है ये साल, पानी नहीं जाया करना है. बिकॉज अलग अलग चैनल्स के रिएक्शंस के लिए फोन आते थे, वैसा फोन आया पापा को कि आपका क्या कहना है सूखी होली. तो पापा ने कैसी सूखी होली, मैं अभी देख रहा हूं मेरे सामने 3 घंटे से 10 शावर चालू है जिसके नीचे लड़के लड़कियां नाच रहे हैं, सब लोग होली खेल रहे हैं, मजे चल रहे हैं. यहां पर तो यहां पर किसी को कुछ पड़ी नहीं है महाराष्ट्र के किसानों का क्या होने वाला है. और ये पापा ने कहने के बाद इमीडिएटली ओबी वैन्स वहां पहुंची और उन्होंने वो कवर किया. तो पापा बिल्डिंग में से नीचे उतरे और एक रिपोर्टर उनके साथ था जो वो बातें रिकॉर्ड कर रहा था और पापा दिखा रहे थे देखो किस तरह से ये चल रहा है. वो बिल्डिंग के जो लोग थे उन्हें ये समझ में आया कि अरे ये कवर कर रहे हैं, न्यूज कवर हो रही है. तो उस वक्त वो सब दौड़ के हमारी बिल्डिंग में घुसे और उन्होंने वो कैमरा खींचा वो कॉरेस्पॉन्डेंट से. उस धक्का बुक्की में पापा को थोड़ा सा लग गया धक्का. उसका न्यूज में ऐसा हुआ कि उन पर हमला हुआ है, पर खैर वो बहुत दिनों तक वो बात चली, आगे उसकी कोर्ट केस हुई, सब हुआ, पर उनसे वो रहा नहीं गया. और पापा वैसे ही थे, वो झूठ नहीं बोल पाते थे, तो जो है वो बात वो मुंह पर कह के ये हो जाते थे. तो इसलिए उन्होंने वो इसको दिखाया देखो पर ये क्या हो रहा है, इस तरह से उनका चल रहा था वो किस्सा. इस तरह से कुछ हुआ था
1: और किसानों के प्रति उनका जो सरोकार था वो यहाँ नजर आता है.
0: हाँ, और क्योंकि मेरी दादी जो थी वो खुद एक किसान की बेटी थी. पापा के जो मामा वगैरह थे, मामा नाना, वो सब बहुत ही गरीब किसान थे. इसलिए जब भी छुट्टी होती थी तो ये छोटे गांव में जाते थे, क्योंकि उस समय तो ऐसा था ना नानी के घर जाना है, तो तब ये खेतों में घूमते थे, तब ये रहते थे. तो किसान की जिंदगी क्या होती है
1: वो उनको
0: ये
1: पता था,
0: बहुत करीब से देखी हुई थी.
1: बिल्कुल.
0: तो इसलिए उनकी वो जो तड़प थी कि हमारे किसान किस तरह से सफर कर रहे हैं, किस तरह से उनकी जिंदगी पानी की कमी की वजह से खराब हो रही है, ये बहुत स्ट्रांगली उन्हें लगता था.
1: बिल्कुल. यहाँ एक गाना सुनते हैं, दो आंखें बारह हाथ का.
0: हाँ.
1: ए मालिक तेरे बंदे हम.
0: ऑफ कोर्स.

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की दूसरी कड़ी। ये बातचीत जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। इस कार्यक्रम में संपादन नेहा शर्मा का, विविध भारती की ओर से कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सनसिटी चैनल है। शाम के 5 बजे हैं, प्रस्तुत है सूर्य नगरी चैनल से प्रसारित होने वाला कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो हाय नमस्कार दोस्तों दोस्तों, सूरज ढल चुका है, आसमान ने शाम की चादर ओढ़ ली है और इसी हसीन लम्हे के साथ हम लेकर आए हैं एक और यादगार मुलाकात। स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम यो वाणी में, जहां हम दो रेडियो बडीज जुड़े हैं आपके साथ। मेरा नाम है आयुषी और आज मेरे साथ ही हैं
1: मैं हूँ विकास। तो जैसा कि श्रोताओं आयुषी ने बताया कि सूरज ढल चुका है और जो हमारा प्रोग्राम है आयुषी, वो भी सभी श्रोताओं के लिए जो है वो हम लेकर आ गए हैं। और हम सभी जानते हैं कि आज का जो हमारा संडे स्पेशल प्रोग्राम होता है वो होता है फ़ोन इन, यानी कि जहाँ हम हमारे श्रोताओं को जो है हमारे लिसनर्स हैं उनको एक टॉपिक देते हैं और वो हमसे उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि आज का जो प्रोग्राम है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं तो आयुषी यही कहना चाहूंगा कि अगले 1 घंटे तक जो हमारे श्रोता है ना जितने भी, वो अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि उनसे होगी ढेर सारी बातें और काफी अच्छा डिस्कशन भी होगा।
0: बिल्कुल दोस्तों, क्या है ना, रोज हम बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन अक्सर आप हमारी बातें सुनते हैं,
1: बिल्कुल
0: लेकिन आज स्पेशल है, आज हमें मौका मिलेगा आपकी दिल की बातें जानने का। लेकिन इन बातों का हम सिलसिला शुरू करेंगे जल्द ही, फिलहाल सुनते हैं आज का हमारा ये आने वाला पहला म्यूजिकल सॉन्ग।

0: दोस्तों, हर शहर की अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक पहचान होती है। कहीं की गलियां मशहूर होती हैं, तो कहीं का खाना, तो कहीं के लोग। लेकिन विकास, आज मैं तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि अगर मैं तुमसे पूछूँ कि तुम्हारे शहर की सबसे खास बात क्या है, तो तुम क्या बताओगे?
1: एक्चुअली जो मेरे शहर की खास बात है यानी कि जोधपुर की, तो मैं ये कहना चाहूँगा सबसे स्पेशल चीज़ ही यही है कि पूरे वर्ल्ड में जो है वो हमारे शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है।
0: जी
1: और यहाँ पे जो भी आपको पुरानी चीज़ें हैं, जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं यहाँ पर, वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको पुराने टाइम के या पुराने समय की जो भी कलाकृतियाँ रहती थी, जो भी जो पत्थर यूज़ लिए जाते थे, इनफैक्ट जोधपुर के जो पत्थर है वो काफ़ी फेमस है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर मैं खाने पीने की बात करूँ तो
0: तो
1: हम
0: सबसे
1: सभी जानते
0: फेमस
1: हैं
0: है
1: कि
0: जोधपुर।
1: बिल्कुल, चाहे वो मिर्ची वड़े, समोसे या कचौड़ी क्यों ना हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जोधपुर शहर की बहुत ही ज़्यादा खास है।
0: अब इतनी बात, अब ये सवाल मैंने तुमसे पूछ ही लिया है, तो
1: बिल्कुल
0: मेरा
1: बिल्कुल
0: मन कर रहा है ना कि आज मैं मेरे दोस्तों से भी जानूं, जो मेरे लिसनर्स हैं ना, उनसे भी
1: बिल्कुल
0: पूछूं कि आप अपने शहर के बारे में क्या सोचते हैं, आपको क्या खास लगता है?
1: बिल्कुल। तो अगर हमारे लिसनर्स जो है हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर है 02912553300, और हमारे दूसरे नंबर है 02912554300।
0: तो दोस्तों, आप हमसे जुड़ सकते हैं इन नंबर पे कॉल करके, फिर हमें बताइए कि आप क्या सोचते हैं अपने शहर के बारे में।

0: आयुषी, हम सभी जानते हैं कि जो मई के बाद है, ठीक है, वो मानसून का जो टाइम है वो स्टार्ट होने लग जाता है। यानी कि भारत के कई सारे क्षेत्रों में जो है वो काफ़ी जगह एरिया में जो है वो बारिश भी शुरू होने लग जाती है, ठीक है। तो मेरा तुमसे ये सवाल है कि बारिश से जुड़ी हुई ऐसी कोई याद आपके
1: अच्छा,
0: पास है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे?
1: अब मुझे लगता है मेरे पास क्यों, सभी के पास बारिश से जुड़ी तो याद होगी। अब
0: बिल्कुल
1: बात करें बारिश की, अगर पहली बारिश हो तो उसकी मिट्टी की, अगर किसी को
0: बिल्कुल
1: किताब पढ़ना पसंद है तो बारिश आने पे वो लोग किताब लेके, और कुछ लोग जिन्हें गाने गाने पसंद है या फिर सुनना पसंद है, जो कि मेरी भी कैटेगरी है, तो मैं सीधा गाने चला करके बैठ जाती हूँ और गाने
0: गर्मा
1: सुनती
0: गर्म
1: हूँ
0: चाय की चुस्की भी जो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार हो जाती है।
1: बिल्कुल। लेकिन उसके बाद में क्या होता है ना, वो गाने सुनने के बाद में मैं जाती हूँ एकदम पुराने जमाने, वो जमाना
0: बिल्कुल
1: जब मुझे लगता है कि मेरी मेरे बचपन का जमाना था।
0: बिल्कुल
1: मुझे याद
0: बिल्कुल
1: है, मेरी फेवरेट यादें तो वही है कि जब स्कूल बस आती थी, हम लोग स्कूल पहुँचते थे और पता चलता था कि तेज भारी वर्षा के होने के कारण स्कूल जो है कैंसिल कर दी गई है,
0: बिल्कुल
1: पढ़ाई कैंसिल, फिर घर जाके जो मजे होते थे, मेरी फेवरेट अभी तक की मेमोरी तो वही है। बाकी कुछ यादें हैं, कुछ लोग हैं जो बारिश के चालू होते ही याद आ जाते हैं, वो अलग
0: बिल्कुल
1: बात
0: बिल्कुल।
1: है।
0: और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि काफ़ी लोगों को जो है वो बारिश में गाड़ी लेके निकलने का और घूमने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, और मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि हालांकि लोग ऐसी बात नहीं है, कार भी प्रिफर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बाइक या स्कूटी पर अगर आप बारिश का मज़ा लेंगे तो मेरा मानना है पर्सनली कि वो मज़ा ही कुछ और है।
1: बिल्कुल, बारिश में अगर मौसम के आपने मज़े नहीं लिए तो फिर आप घर में बैठकर तो क्या ही है, ऑफिस तो हम अक्सर जाते ही है। और अगर सोचो
0: बिल्कुल
1: संडे हो और संडे को बारिश हो जाए
0: वाह, फिर
1: और
0: तो बात ही
1: सबकी
0: कुछ और
1: छुट्टी
0: हो।
1: है और बारिश हो जाए, क्या दिन बन जाता है। नहीं, मैं तो सोच रही हूँ काश आज भी बारिश हो जाए, लेकिन फिलहाल मैं अब विश करती हूँ कि मेरे किसी दोस्त का कॉल आ जाए, जिसमें हमारे
0: बिल्कुल
1: नंबर क्या थे विकास।
0: 02912553300 और हमारे दूसरे नंबर है 02912554300।
1: तो दोस्तों, हम लोग बेसब्री से आपके कॉल का जो है इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि यही सवाल जो है हम आपसे कर सके और आपका जो जवाब है वो सुन सके। तो
0: बिल्कुल
1: फटाफट से हमें कॉल लगाइए और अपना जवाब बता दीजिए। फिलहाल तब तक के लिए बढ़ते हैं आने वाले इस अगले म्यूजिकल सॉन्ग की तरफ।

0: तो लगता है हमारी शाम में जो है वो हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आयुष ठीक करते हैं उनसे बातचीत।
1: बिल्कुल।
0: हेलो
2: हेलो,
0: हेलो जी सर
1: नमस्ते
0: नमस्कार।
1: सर।
2: हेलो,
0: हेलो
2: हाँ सर, नमस्कार सर।
0: जी जी नमस्कार। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए।
2: हाँ सर, मेरा नाम दारूराम मेघवाल, गांव चोकड़ी, जिला जोधपुर, तहसील पिपार से बोल रहा हूँ सर।
0: तो दारूराम जी, जैसा कि आपने हमारा सवाल तो सुना ही होगा कि बारिश से ऐसी जुड़ी हुई कोई याद जो अभी तक आपके साथ में बनी हुई है या जिसे आप लाइफ टाइम अपनी डिक्शनरी में जोड़े रखना चाहते हैं।
2: हाँ सर, बारिश बारिश तो ऐसी चीज है कि वो बचपन की यादें हैं मेरी। तो
0: जी।
2: सर बारिश आती सर, स्कूल जाते थे और रिमझिम रिमझिम बारिश बरसती थी, और वो बारिश बहुत ज्यादा चालू हो जाती तो हमारे पिताजी ने स्कूल नहीं भेजते थे, और बारिश का आनंद लेते थे या स्नान करते थे और रिमझिम बारिश बरसती थी।
0: अच्छा, बारिश में जैसे घर पे आपके गर्मा गर्म पकवान खाने का जो मजा है वो कुछ
2: हाँ,
0: और ही रहता था।
2: पकौड़ा वकौड़ा बनाना खाना।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। पकोड़े या फिर कोई भी गर्मा गर्म कोई ऐसा पकवान हो जिसको खाते ही मजा आ जाए।
2: हाँ,
0: बिल्कुल।
2: बिल्कुल।
1: तो बारिश के लिए तो आपने ये बता ही दिया है, लेकिन आप आज के टाइम, अभी थोड़े टाइम बाद में जब बारिश स्टार्ट हो जाएगी तो उसका क्या, आप तब के लिए क्या सोचते हैं कि तब आप
2: तो
1: किस
2: मैडम,
1: तरीके से अपनी जो यादें
2: मैडम
1: ताजा
2: बारिश आ
1: करेंगे?
2: रही है तो अच्छा गाना सुनना, वो आते ना, आजा बहारों की मलका, कैसे उमड़ जाए दिल का।
1: अच्छा,
2: सर
1: तो
2: ये
1: आपको
2: बारिश
1: भी
2: आ रहा था।
1: बारिश आते ही गाने चलाकर सुनने का शौक है ऐसा?
2: हाँ
1: फिर तो आपको हमारा जो है 5 बजते युवाणी लगा लेना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे ना हमारी भी प्लेलिस्ट, अभी आपने जैसा गाना बताया ना, वैसी ही होने वाली है। तो ये
2: हाँ
1: सुनना तो मत भूलेगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: धन्यवाद।

0: लगता है आयुषी हमारे जो आज की शाम के दूसरे कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो
1: क्या
0: आइए
1: बात है।
0: करते हैं उनसे बातचीत। हेलो
1: हेलो हेलो
0: हेलो हेलो।
1: हेलो हेलो
0: जी, आवाज़ सुन पा रहे हैं आप हमारी?
1: जी, बिल्कुल सुन पा रहे
0: जी
1: हैं।
0: जी सबसे पहले तो स्वागत है आपका कार्यक्रम युवाणी में।
1: ओके, थैंक यू सो मच।
0: जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए।
1: शालिनी बोल रही हूँ, जोधपुर से।
0: जी, शालिनी जी, तो जैसा कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो आपने सुना ही होगा
1: बिल्कुल,
0: कि
1: आपके टॉपिक में है
0: बिल्कुल
1: कि फर्स्ट बारिश में जो
0: बिल्कुल
1: भी आप क्या फीलिंग्स होती हैं वो बताएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो आपके साथ ऐसी कोई जुड़ी मेमोरीज है जो आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं?
1: बिल्कुल, जब फर्स्ट बारिश होती है वो भी जोधपुर जैसी जगह में जहाँ पे
0: बिल्कुल
1: इतनी
0: बिल्कुल
1: गर्मी होती है, और जब फर्स्ट बारिश होती है तो ऐसा लगता है जैसे कि मतलब वाकई में जैसे हम किसी एक अच्छे से हिल स्टेशन पे पहुंच गए हों, जहाँ पे हमें बहुत सुकून मिलता है। ऐसे
0: बिल्कुल
1: में लगता है कि या तो आप कोई अच्छी सी पुरानी किताबें पढ़ें,
0: जी
1: या
0: जी
1: आप पेंट ब्रश लेके अपनी कोई अच्छी सी पेंटिंग बनाएं,
0: जी
1: ये बहुत ही अच्छा लगता है। और इससे एक और जुड़ी चीज है कि
0: जी
1: जब
0: जी
1: पहली बारिश होती है तो ये तो फीलिंग्स होती ही है।
0: जी जी
1: और यहाँ पे जो मेरे काफी स्टूडेंट्स जो मेरे साथ जो मैं पढ़ाती हूँ, तो
0: जी जी
1: फर्स्ट बारिश में वो एक जब फर्स्ट बारिश हो रही थी वो बहुत जिद कर रहे थे कि मैम हमें तो बारिश पे नहाना ही है, और वो उन्होंने इतना एंजॉय किया और इस चीज को उन्होंने ऐसे फील किया, बोले कि मैम ऐसा लगा जैसे कि हम वाकई में किसी हिल स्टेशन पे आ गए हैं। मैंने कहा ये तो बहुत ही बड़ी अच्छी बात है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं कि जैसा आपने बताया कि आप बाय प्रोफेशन जो है वो टीचर है, तो हम भी अपना बचपन जो है वहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से जब कभी भी बारिश होती है, तेज बारिश होती है, और जब स्कूलों में छुट्टी हो जाती है, तो वो खुशी ही एक अलग होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, इतना अच्छा फील होता है कि काश जैसे छुट्टी हो वैसी बारिश हो, अगर भीगे किताबें तो भीगे, कम से कम एंजॉय तो करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो मैम अब आप हमें ये बताइए कि जब आपने उन बच्चों को ऐसे मस्ती करते हुए देखा ना, तब आपको अपना बचपन याद आया कि नहीं?
1: बिल्कुल बिल्कुल याद आ गया, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और मैंने मतलब उन्होंने इतना एंजॉय किया और उस चीज को मैंने ऐसे फील किया, ये कितना मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने बचपन में फिर से पहुंच गए हैं।
2: बिल्कुल मैम, तो मैम आगे और भी ऐसी ही बारिश होने वाली है। मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसे बच्चों से जुड़े ही रहना चाहिए कि आपका जो बचपन है उसकी जो याद है वो आपके लिए ताज़ा होती रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम।
1: थैंक यू सो मच।

0: तो दोस्तों इसी के चलते हमारे जो अगले लिसनर हैं वो भी हमारे से जुड़ चुके हैं, तो चलिए फिर बात करते हैं उनसे। नमस्ते सर।
1: नमस्कार मैडम।
0: तो सर आप अपना नाम बताएं।
1: मेरा नाम ताज मोहम्मद है, मैं चांसलर से बोल रहा हूँ साहब।
0: अच्छा, तो अभी आप हमारा प्रोग्राम सुन ही रहे हैं, हमारी जो बातें सुनी होगी आपने, तो आप भी बता दीजिए बारिश को लेकर के आप क्या सोचते हैं।
1: बारिश तो याद बहुत आती है मैडम, छोटा था बचपन में, कहीं गायों और चार था और घर कहता जाओ गायन ले जाओ निगे राखी जो दूजो और मैं मत बढ़न दी जो मैं दोरो माथे जान कूदता कूदता कूदता हो जाता नींद आ जाती उनटे में गायो पड़ो सिर्फ जान फसल है खा जाते।
0: अच्छा, तो सर आपको तो बहुत याद आ गई है बारिश को।
1: आओ तो जो को अगर ठोक राय तो कर दे तो ठोकता ठोक हाल तक नहीं छा भूलिया मैं।
2: बिल्कुल सही कहा आपने तान मोहम्मद जी के पुराने जो हमारे रीति रिवाज थे, चाहे वो जानवरों से जुड़े हो, इंसानों से हो या पशु पक्षियों से हो, तो वो भी हमारे साथ कभी कभी एक मेमोरी बन जाते हैं हमेशा के लिए।
1: साहब
0: बिल्कुल सर, ये जो यादें हैं ये भूलने जैसी है भी नहीं कि हम सब भूलें इन्हें, तो बस बार बार जिया जा सकता है। फिलहाल के लिए सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह आगे
1: धन्यवाद
0: भी जुड़िएगा। धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: तो

0: विकास लगातार हम जो है बारिश की बातें कर रहे हैं ना दोस्तों, है ना विकास?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसी के चलते मैंने भी क्या है ना एक शेर सुना था, वो मुझे याद आ गया, मैं वो सुनाना
1: जरूर जरूर।
0: तो वो कुछ ऐसा था, मुझे लगता है काफी लोगों ने सुना होगा, कि उसने बारिश में भी खिड़की खोल के नहीं देखा, उसने बारिश में भी खिड़की खोल के नहीं देखा, भीगने वालों को कल क्या क्या परेशानी हुई।
1: वाह क्या बात कही है आपने। और इसी के साथ जो है वो मैं हमारे श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि अगर आप भी बारिश से जुड़ी हुई जो चीज़ें हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे नंबर है 0291255300 और हमारे दूसरे नंबर है 0291255400।

0: लगता है हमारे अगले कॉलर भी जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए करते हैं उनसे बातचीत। हेलो
1: जी नमस्कार विकास जी एंड अभिषेक
0: जी, नमस्कार आपको भी।
1: जी। मैं गांव धुंधाड़ा तहसील लोनी जिला जोधपुर से निवेदन कर रहा हूँ। अल्लादीन धुंधाड़वी
0: जी, तो अलादीन जी, जैसा कि आपने आज का हमारा विषय सुना ही होगा कि बारिश से जुड़ी हुई कोई ऐसी मेमोरी है जो आपके साथ अभी तक है, या फिर जो लंबे समय तक आप जिसे अपने साथ रखना चाहते हैं
1: जी
0: वो आप
1: विकास जी,
0: हमारे
1: ऐसी
0: साथ शेयर।
1: मेमोरी तो है मेरे पास
0: जी
1: दो
0: जी
1: चार, थोड़ी वो तो लंबी लंबी है।
0: जी
1: मैं तो
0: जी
1: आज के हालात में बता रहा हूँ आप।
0: जी
1: गांव
0: जी
1: में हर मौसम में क्या है कि लोग अलग अलग अंदाज से, मतलब अब क्या बारिश का इंतजार कर रहे हैं,
0: जी जी बिल्कुल
1: अब खेतों में क्या है

0: वो सूट वगैरह कर दिया तैयार खेती
1: जी जी।
0: और अबे तो हुकम बादल हमें देख कह रही है किसान
1: जी जी
0: के मैं थोने पूछू काला बादल थे कद आसो मारे पौना
1: जी
0: मैं थोने पूछू काला बादल थे कद आसो मारे पौना सगड़ा करे उड़ीक थारी थे कद बसोला जोदाना रे आंगने
1: वाह क्या बात कही है आपने।
0: करड़ा वे डिडरिया भूले कोई पपया करे पुकार खेजड़ियों में बिलके निरणिया कहवे थे कदा तुम और द्वार
1: वाह क्या
0: हमें
1: बात कही
0: तो
1: आपने
0: देर
1: यानी
0: इंतजार है बारिश रो इंतजार है
1: बिल्कुल सही कहा आपने। जहाँ एक तरफ जो है शहर में लोग बारिश को एंजॉय करते हैं, वहीं दूसरी ओर जो ग्रामीण क्षेत्रों में किसान वर्ग के जो भी लोग हैं वो इंतजार करते हैं अपनी फसलों के लिए कि कब उनकी जो फसलें हैं
0: नहीं जी
1: उनको
0: जी
1: अच्छा पानी मिले। बिल्कुल
0: जी जी जी बिल्कुल
1: सही
0: आपका कार्यक्रम मैं लगातार सुनता हूँ और
1: जी जी
0: वैसे
1: बिल्कुल
0: रेडियो सुनता हूँ मैं करीब 40 साल से लगातार रेडियो सुनता हूँ
1: बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है इतना लंबे समय तक जो है वो हमारे साथ बने रहे।
0: जी जी जी
1: तो अलादीन
0: जी
1: जी आशा करते हैं कि आपके गांव में जो है वो जल्दी से जल्दी बारिश हो और आप सभी को जो है वो इसका
0: आमीन
1: भरपूर फायदा मिले। हमारे साथ
0: जी
1: जुड़ने के
0: आमीन
1: लिए बहुत बहुत
0: बहुत
1: धन्यवाद
0: बहुत शुक्रिया साहब
1: जी।
0: ओके।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। बताए कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: तो दोस्तों, इसी के चलते हमारे साथ हमारे श्रोता जो है वो लगातार जुड़ रहे हैं। देखते हैं अब हमारे साथ में हमारे कौन से श्रोता जुड़े हैं। नमस्ते सर।
5: हेलो, नमस्कार सर।
6: जी नमस्कार,
4: आपका नाम बताएं।
5: मैं पचपदरा से धनाराम बोल रहा हूँ।
4: अच्छा, तो आप क्या बताना चाहते हैं हमें बारिश से रिलेटेड, अपनी कोई याद के बारे में?
5: बारिश की याद तो बहुत आती है। जब छोटे थे तब हम कहीं खड्डों में पानी वगैरह इकट्ठा हो जाता तो हम कागज की नाव बना कर चलाते थे और कंपटीशन भी करते थे कि सबसे आगे किसकी जा रही है, हवा के सहारे उसको चलाने की कोशिश करते थे।
4: बिल्कुल सर, और साथ में ये भी तो है ना, आजकल मैंने देखा है बच्चे कहाँ फोन में ऐसे लगे रहते हैं, लेकिन वो कागज की जो नाव बनाने का सिलसिला है वो जो छोड़ ही दिया है, वो तो अब आपसे ही सुनने को मिल रहा है हमें शायद।
5: बचपन हमारे उस समय की बात है, कुछ अलग ही थी। जब चलाते थे ना तो फीलिंग अच्छी थी, रिच फीलिंग आती थी कि अपनी नाव जा रही है पानी।
4: बिल्कुल सर, इसके अलावा और भी कोई याद जो बारिश से आपकी जुड़ी हो?
5: हाँ, बारिश से जुड़ी मैम, एक बार क्या हुआ बचपन में, हम हमारे जहाँ खेत था, खेत के पास में एक बड़ा खड्डा था, वो भर गया था। तो हम क्या गलती से उसके अंदर नहाने के लिए चले गए, तो 2-3 घंटे आए नहीं तो हमारे पिताजी पीछे आए।
4: अच्छा,
5: और हमें क्या धुलाई हुई उस दिन, वो धुलाई आज दिन तक, उसके बाद मैं खड्डे में नहाने के लिए नहीं गया।
6: बिल्कुल सही कहा आपने कि ये मेमोरी तो, जो छोटी छोटी सी मेमोरीज होती है वो काफी टाइम तक हमारे साथ रहती
4: है। और मुझे ऐसा लगता है ऐसी तो सबकी एक ना एक याद होगी जिसमें बारिश की वजह से उनकी एक बार धुलाई हो चुकी है मम्मी या पापा से, है ना?

0: बिल्कुल
1: तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े और साथ में हमें भी याद दिलाई कि किस तरह के तरीके से हमारी भी बचपन में एक बार हमारी मम्मी और पापा से धुलाई हो रखी है।
0: बिल्कुल। तो आयुषी, जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं बारिश के बारे में, कि जैसे आप बारिश में क्या करना पसंद करते हैं? ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे ये करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है? वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपके पास, आपने बताया 8-10 है, लेकिन उसमें से भी आप प्रायोरिटी पर किस चीज़ को रखते हो?
1: प्रायोरिटी पर मैं जो है, मुझे कविता है, मुझे शेर शायरी ये सब
0: जी
1: पढ़ना
0: जी
1: बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा भी मैं सबसे जो मेरे दिल के बहुत करीब लोग हैं उन्हें मैं फटाफट से कॉल लगा के उनसे लंबी लंबी घंटों तक बातचीत करती हूँ जब तक
0: बिल्कुल
1: बारिश ख़त्म नहीं हो जाए। तो मेरी ये फेवरेट एक्टिविटी है बारिश की। मैं तुमसे पूछूँ तो विकास इसका क्या जवाब दोगे?
0: जैसा कि बताया आपने कि याद के अगर मैं बात करूं, तो अभी इन्होंने, एक श्रोता ने जो बताया था ना, अभी हमारे लिसनर कॉलर थे, कि नाव बना के जो है वो हम चलाते थे, तो वैसे ही नाव के साथ साथ हमारा बचपना तो वैसे निकला ही है, और उसके साथ साथ जैसे साइकिल लेके, जैसे बचपन में साइकिल लेके जो है बारिश में निकलना, या फिर कहीं जो कहते हैं ना भरा हुआ पानी होता था ना कहीं पे बारिश में, तो वहां से फास्ट साइकिल निकाल के जो पानी को उछालना, मतलब
1: बोतलें
0: ये
1: मिलती
0: बचपन में
1: थी।
0: बहुत चीज़ें होती थी हमारे साथ में, है ना। और फिर दूर दराज जाके, मतलब दूर दराज ज़्यादा भी नहीं, लेकिन थोड़ा अपने घर से दूर जाके जो है वो नमकीन मिर्ची बड़े समोसे का जो आनंद लेना, तो वो सारी मेमोरीज होती है। अब तो देखो आयुषी, ये कहना है कि जब आप धीरे धीरे जब मैच्योरिटी के लेवल पे आते हैं, या फिर आप बड़े होते हैं, आप अपने प्रोफेशन में आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो छूट जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है आयुषी के इंसान को हमेशा जो ये बेहतरीन पल है, मोमेंट्स है, वो हमेशा अपने डिक्शनरी में जो है वो जोड़ने चाहिए।
1: बिल्कुल, और इसका बेस्ट तरीका ये है ना कि हमारे जो छोटे भाई बहन हैं या हमारे आस पड़ोस में कोई छोटे बच्चे हैं जो भी है, हम उनसे जाके चला करके बात करें। आजकल क्या है ना, फोन में हम इतने बिजी हो गए कि आसपास
0: बिल्कुल,
1: बच्चे अगर कोई दिखता है हम भी उन्हें इग्नोर करते हैं, वो भी खुद में मस्त रहते हैं।
0: अक्सर हम ये भी देखते हैं कि हम जैसे हमारे साथ वाले मित्र हो गए या दूसरे जो भी फैमिली मेंबर्स हो गए, तो हम कभी ऐसे डिस्कशन करते हैं कि यार आप बारिश में कहाँ घूमने का प्लान बना रहे हो, तो वो बताते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिल पाता है, हम जो अपनी बिजी, इतनी हमारा शेड्यूल रहता है कि हमें 1% भी टाइम नहीं मिल पाता है बाहर जाने का। तो मैं ये कहना चाहूंगा उन सभी को जो इन मोमेंट्स को एंजॉय नहीं कर पा रहे, कि आपको हर चीज़ के लिए समय तो निकालना पड़ता है थोड़ा सा, ऐसी बात नहीं है, आजकल सभी लोग अपनी लाइफ में बिजी है, लेकिन जो चीज जब समय के लिए जरूरी है वहां पे वो होना बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है।
1: बिल्कुल विकास, मुझे भी यही लगता है कि आपको टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। और पता है, मैं ये पक्का कहती हूँ कि बहुत सारा काम करने के बाद में भी हमें कई बार सुकून नहीं मिलता है,
0: बिल्कुल
1: लेकिन बारिश में थोड़ा सा 5 मिनट तो निकाल ही सकते हैं आप। निकाल करके बैठिए, अपनी पुरानी यादों को याद कीजिए, किसी से बात कीजिए, कुछ नहीं मिले तो गाने सुन लीजिए, फिर भी कुछ नहीं मिले तो सीधा सीधा 102.1 लगा करके हमारे जो प्लेलिस्ट है, हमारे जो
0: बिल्कुल
1: गाने हैं वो आप सुन लीजिए, वरना इसी तरीके से हमें कॉल करके बातें कर लीजिए। फिलहाल विकास जरा बता दो, अगर कोई हमें कॉल करना चाहे इस टाइम तो किस नंबर पे करेगा?
0: हमारा नंबर है 02912553300, और हमारे दूसरे नंबर है 02912554300।
1: तो दोस्तों फटाफट से हमें कॉल करिए, हम इंतजार कर रहे हैं आपके अगले कॉल का।

0: इसी के साथ चलते हैं आयुषी हमारे अगले कॉलर की ओर।
1: लेकिन उससे पहले ना विकास, मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, इतने लोगों की अलग अलग यादें होती हैं बारिश में, लेकिन उसी
0: बिल्कुल
1: में पता है एक कैटेगरी अलग ऐसी भी होती है, जो कि अगर मेरे कई दोस्त होंगे उन्हें भी पता ही होगा कि कुछ लोग जो है बारिश को किसी की याद में भी देखते हैं, कुछ
0: बिल्कुल
1: लोगों को बारिश से उनकी किसी के साथ में हुई पहली मुलाकात याद आ जाती है
0: बिल्कुल
1: ना। तो इसी में मुझे एक दो शेर, एक लाइन थी जो मैंने कहीं पढ़ी थी वो याद
0: बिल्कुल
1: आई है, वो मैं तुम्हें बता देती हूँ
0: जरूर
1: कि वो कुछ ऐसी थी कि याद आई है वो पहली बारिश, याद आई है वो पहली बारिश जब तुझे एक नज़र देखा था, है ना। तो
0: वाह
1: ये
0: क्या
1: ऐसी
0: बात
1: जो
0: है
1: कुछ लाइंस होती है ना, उससे ये पता चलता है कि किसी ने किसी को अगर पहली बार देखा है, पहली
0: बिल्कुल
1: बार छुआ है, या फिर साथ में बैठ के चाय भी पी है, या कुछ
0: बिल्कुल
1: बातें भी की है, तो
0: बिल्कुल
1: अगली बारिश में मुझे लगता है वो सारी चीज़ें अगर सच में प्रीशियस थी या दिल की कुछ बातें थी वो पक्का याद आती है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बारिश को इन सारी चीजों के अलावा किसी की याद में, किसी की मुलाकात में भी देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है?
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि ये अक्सर चीज़ें जो है वो होती रहती है इंसान के साथ में। तो जितने भी हमारे श्रोता है वो हमें सुन रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आयुषी ने जो भी चीज़ बोली है, अगर आप भी हमारे साथ, आपके पास कोई ऐसा मोमेंट हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। लेकिन आयुषी, मुझे ऐसा लग रहा है हमारे अगले कॉलर जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए पहले करते हैं उनसे बातचीत। हेलो
2: हेलो हेलो,
1: नमस्ते सर।
2: नमस्ते मैम।
1: सर आप अपना नाम बताएं।
2: मेरा नाम भूपेंद्र है मैम।
1: अच्छा, तो आप बारिश से जुड़ी जो आपकी जो लाइन है वो, जो भी याद है ऐसा जो भी है वो बताएं।
2: बारिश की तरंगी ऐसा है, बचपन में तो एंजॉय करते ही, हर बच्चा एंजॉय करता है।
0: जी
2: जैसे अभी तुमने बताया कि जैसे साइकिल लेके निकल जाना बारिश आए।
1: तो
2: जी
1: सर
2: जी
1: आपकी क्या याद है ऐसी, आपसे जुड़ा कोई, आपका कोई किस्सा हो जो आप हमें सुनाएं।
2: हमारे किसी यही है मैडम जी, जैसे पहले बारिश होती थी बचपन में, हम तो गांव के हैं, तो फिर कहीं पे भी खड्डा वगैरह में पानी इकट्ठा हो जाता, हम झूलने के लिए निकल जाते थे।
1: अच्छा, तो सर आप ये बताएं कि बारिश से जुड़ी तो आपने ये बात बताई दी, ऐसा कोई और किस्सा जो आपने कभी किसी और के साथ होते हुए देखा हो तो अगर आपको वो भी याद हो तो आप वो भी बता सकते हैं हमें।
2: हमारे दोस्त झूलते थे, उनको घर वाले मारते थे, मम्मी पापा वगैरह डांट देते थे, वही किस्सा था मेरा।
0: भूपेंद्र जी, अगर आपके पीछे रेडियो चल रहा है तो आप थोड़ा सा उसका वॉल्यूम धीरे कर दीजिए। जी
1: हाँ, तो आप हमें बताइए आप किसका किस्सा सुना रहे थे।
2: हमारे दोस्त क्या मैडम।
1: अच्छा ठीक है, आपने ये जो किस्सा सुनाया है ये काफी अच्छा था, लेकिन अगली बार के लिए आप फिर से हमसे जुड़िए क्या। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं हमारे इस ट्रैक की ओर।

0: इसी के साथ आयुष ही चलते हैं हमारे अगले कॉलर की ओर और करते हैं उनसे बातचीत। हेलो
1: हेलो
0: जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका कार्यक्रम युवाणी में। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम सर अब्दुल अमित छिपा है।
0: जी, अब्दुल जी, तो आपने आज का हमारा जो चर्चा का विषय तो सुना ही होगा।
1: जी सर, चर्चा के वैसे आपका बहुत ही अच्छा है।
0: जी, बिल्कुल
1: बारिश बारिश का मौसम, मजे आते हैं, मजे लेने चाहिए बारिश के, खाना पीना सब कुछ।
0: बिल्कुल
1: मगर
0: सही
1: इसके
0: कहा
1: सर
0: आपने।
1: इसके साथ सर सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: जी,
1: बिल्कुल, सेफ ड्राइव करें, गीली सड़कें होती है,
0: बिल्कुल
1: उसको भी
0: सही
1: नुकसान
0: कहा,
1: पहुंच सकता है, दूसरों को पहुंचा सकते हैं, और पानी से दूर रहें।
0: बिल्कुल।
1: जी, बारिश
0: पानी के साथ साथ
1: में
0: जो बिजली के कुछ खंभे होते हैं उनसे भी हमें
1: बिजली के
0: दूरी
1: खंभे
0: बनानी
1: वगैरह
0: चाहिए।
1: अक्सर सुनने में आता है, ये बच्चा डूब गया, ये फलाना हो गया, ये हो गया,
0: जी
1: इन
0: जी
1: चीजों से थोड़ी सावधानी बरतें सर। हमारा परिवार हमारा वेट कर रहा है, हम घूमे फिरे, कोई
0: ठीक
1: दिक्कत
0: है,
1: वाली बात नहीं है, मगर सावधानी जरूर बरतें।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स के मार्गदर्शक में जो है वो बारिश को भी एंजॉय करें ताकि उनको जो है वो कोई नुकसान भी ना पहुंचे।
1: बिल्कुल सर,
0: तो
1: बिल्कुल
0: सर आपने तो बहुत अच्छी बात बताई है। हम सभी बातें कर रहे थे लेकिन उसमें जो सबसे ज़रूरी बात थी बिल्कुल
1: वो हमें आपने आके बता दी। तो सर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद और हमें ये बात बताने के लिए बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप सभी भी ध्यान दें कि किस तरह बारिश
0: बिल्कुल
1: में बारिश को इंजॉय करने के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें हमें सावधानी बरतनी चाहिए।

0: तो विकास इसी के बीच लगता है हमारे जो अगले श्रोता है वो हमसे जुड़ चुके हैं।
1: बिल्कुल।
0: हाँ तो देखते हैं कौन है इस बार। नमस्ते।
2: हेलो
0: हाँ नमस्ते सर, आपका युवाणी कार्यक्रम
2: सर,
0: में बहुत बहुत
2: नमस्कार
0: स्वागत है।
1: जी। जी नमस्कार
2: गांव त्यूरी से मोहम्मद साकिर बेलिम बोल रहा हूँ जी।
1: जी। जी मोहम्मद जी, तो जैसा कि आपने हमारा आज का सवाल सुना ही है, तो आपके साथ कोई है ऐसी मेमोरी बारिश से जुड़ी हुई जो आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते हो?
2: बिल्कुल सर, बहुत पुरानी याद आ गई सर, 1992 की।
1: बिल्कुल बिल्कुल बताइए फिर वो
2: मैं
1: कौन सी
2: उसका
1: याद है।
2: छोटा था और
1: जी
2: ईद का त्योहार था
1: जी जी
2: और उस टाइम क्या बारिश बहुत ज्यादा हुई थी
1: जी
2: हमारे
1: जी
2: त्यूरी में।
1: जी जी
2: तो हम बच्चे थे, खेलने खेलने के चक्कर में सर एक घर के आगे सोपिट खोदा हुआ था गटर, मेरे को पता नहीं
1: जी
2: था।
1: जी जी
2: तो मेरे एक खाला का लड़का था छोटा,
1: जी जी
2: सर नहाने के लिए सब चले गए थे लेकिन कोई इधर भाग गया कोई इधर भाग गया। वो मेरा छोटा भाई उस गड्ढे में डूब गया और उसका इंतकाल भी हो गया सर। मैं
1: ये
2: इसके
1: तो
2: लिए कहता हूँ सर बच्चों को, अभी तो बहुत समझ आ गए बच्चों को भी, लेकिन
1: बिल्कुल
2: थोड़ा बहुत पानी से दूर रहना चाहिए अच्छा रहता है, और लाइट के खंभे से दूर रहना चाहिए, बारिश में आनंद लेना चाहिए, दूर रहकर जो
1: जी।
2: आसे उसे बच सकते अपन।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि ये तो बहुत ही दुखद खबर है कि एक इस चीज से जुड़ी हुई जो भी आपकी याद है वो हमेशा आपके साथ में रहेगी कहीं ना कहीं।
2: बिल्कुल सर, याद आती है सर क्या क्या। और छोटा दो एक एक खुशी भी थी जब घर घर घूम कर हम गाँव इकट्ठा कर कर और गुगरी पकाते थे सर स्कूल
1: जी जी
2: के अंदर,
1: जी जी
2: सब
1: बिल्कुल।
2: बच्चे इकट्ठे होकर, बच्चे बच्चे छोटे छोटे बिल्कुल
1: वाह क्या बात
2: सात
1: है ये।
2: साल 8 साल बच्चे थे उस टाइम, मेरे को याद है जी, गुगरी पकाते थे हम एक बाड़े के अंदर और सब खाते थे एक साथ मिलकर, तो बहुत अच्छी खुशी होती थी उस टाइम।
1: बिल्कुल सही कहा
2: अब तो
1: आपने
2: वो
1: कि
2: माहौल भी नहीं रहा सर कोई खाने का, वो गुगरी वगैरह बनाने का। तो
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे, अगर मैं बात करूं मेरे बचपन की, तो हमारे स्कूल टाइम में भी जो है वो आपने जो बताया कि गुगरी वगैरह ये बनती थी बारिश के मौसम में स्पेशली, और इसको खाने का जो
2: हाँ जी
1: मजा था वो
2: बारिश के
1: अपना अलग
2: लिए
1: ही
2: भी
1: था।
2: बिल्कुल, उस टाइम अंदाज अलग ही था, लेकिन अब तो बारिश हो नहीं रही है, अल्लाह से दुआ करें। आज भी आज सुबह जाकर इकट्ठा हुआ ईदगाह में जाकर,
1: बिल्कुल
2: हम दुआ
1: बिल्कुल
2: की अल्लाह से भाई बारिश जल्द से जल्द करे। हमारे किसान भाई बहुत चिंता में अभी की बारिश नहीं हो रही है, मूंगफली की बुआई भी चल रही है, तो सब खुशहाली से रहेंगे तो अमन शांति से रहेंगे, खाना पीना भी अच्छा होगा, अपन भी रहन सहन अच्छी होगी सर।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और हम भी ये आशा करते हैं कि जो ये बारिश का इंतजार जो आप लोग कर रहे हैं वो आपका जल्द ही खत्म हो। और मोहम्मद जी
2: जो
1: इसी
2: जी
1: के साथ
2: हमारे
1: हमारे
2: यहाँ
1: साथ
2: किसान
1: जुड़ने
2: ही
1: के
2: है
1: लिए
2: सर।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
6: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
6: 2 लाख
7: क्या हुआ पापा?
6: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
6: काट दिया।
7: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
6: फ्रॉड?
7: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
6: तो पैसे गवाओगे।
8: RBI कहता है
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: तो जैसा कि आज का जो हमारा विषय था आयुषी, काफ़ी
1: हम्म,
0: लोगों से जो हमारी बात हुई उस पर, और ऐसा सुनने को हमें मिला है कि लोग जो है वो बारिश का मौसम बेसब्री से जो है इसका इंतज़ार भी करते हैं, खूब सारे मोमेंट्स भी बनाते हैं, काफ़ी सारी ऐसी मेमोरीज होती है, किसी के साथ अच्छी होती है तो किसी के साथ बुरी मेमोरी भी होती है जो लाइफ टाइम जो है उनके साथ में चलती।
1: हाँ, लेकिन इन सब में एक चीज पता है, हमेशा परमानेंट होती है कि ये सब जो है ये यही चाहते हैं कि जब भी बारिश हो, गाने तो हम सुने ही सुने, है ना। अब
0: बिल्कुल
1: अगर आप
0: बिल्कुल
1: सैड हो बारिश में तो भी गाने अच्छे ही लगेंगे, आप हैप्पी हो तो भी गाने अच्छे ही लगेंगे, है ना। तो गाने जो
0: बिल्कुल
1: है वो
0: बिल्कुल
1: हमारे दोस्त की तरह हमारे साथ ही रहते हैं। लेकिन आज हमने इतनी सारी बातें सुनी, इतने सारे लोगों ने,
0: बिल्कुल
1: किसी ने हमें ये बताया कि बारिश में इंजॉय करना जरूरी है, तो किसी ने बताया कि बारिश में इंजॉय के साथ साथ सावधानी रखना भी बहुत
0: बिल्कुल
1: जरूरी है। लेकिन फिलहाल लगता है कि अब समय हो चुका है
0: बिल्कुल
1: कि
0: आयुषी
1: अब हम यहाँ से इजाजत ले हमारे दोस्तों से,
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: हम दो जो रेडियो बडीज है, दो रेडियो बडीज आपके साथ जुड़े थे। मेरा नाम है आयुषी और आज मेरे साथ थे।
0: मैं था विकास। तो दोस्तों आप भी जो है वो बारिश का मौसम एंजॉय करें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एंजॉय करें। नमस्कार।

0: एफएम बैंड 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सनसिटी चैनल है। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु कार्रवाई उचित, उत्तरदायित्वपूर्ण और समान होनी चाहिए। सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जलवायु न्याय का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां विकास समग्रता में हो और जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करें। श्री मोदी ने कहा कि भारत के विजन महासागर में सेशल्स का विशेष स्थान और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
2: I came here because I believe that Seychelles occupied a special place in India's vision for the Indian Ocean. Today, as I return here after a decade, that conviction is stronger than ever. And I'm delighted to join you as you celebrate 50 years of your independence. Congratulations to you and the people of

0: special on this special occasion.
1: श्री मोदी ने कहा कि मानचित्र में सेशेल्स हिंद महासागर में द्वीपों के समूह के रूप में दिखाई देता है. उन्होंने कहा कि भारत इसे ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो अपनी सीमाओं से परे है. श्री मोदी ने कहा कि ये विशेष सम्मान है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशेल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है.
0: President Armini and the people of Seychelles for honoring me with the guardian of the Blue Horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को सेशेल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया. सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान प्रदान किया. प्रधानमंत्री ने सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया. गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है. श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है. प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है. आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है. ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत में गांव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी. आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है. श्री चौहान ने आश्वस्त किया कि ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी. अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं. ये कार्रवाई शुक्रवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुई ड्रोन हमले के जवाब में की गई. भारत ने एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप का कांस्य पदक जीत लिया है. अहमदाबाद में कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में भारत ने बहरीन को 3-1 से हराया. ये भारत का इस प्रतियोगिता के इतिहास में पहला पदक है. भारत ने आयरलैंड के साथ 2 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला के दूसरे और अंतिम मैच में बेलफास्ट में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है. और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत आज अपने ग्रुप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा. ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा. भारतीय टीम 4 मैच में 3 जीत के साथ ग्रुप में दूसरे स्थान पर है. सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल करनी होगी. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
2: FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सनसिटी चैनल है. समय हो चला है गुड इवनिंग FM का.

होगी, मस्ती धमाल होगा और साथ ही साथ सुरों से दोस्ती भी होगी, यानी हम आज कुछ बॉलीवुड के नए पुराने गीत भी सुनेंगे। सो बी विद अस एंड एंजॉय टुडेज गुड इवनिंग एफएम।

0: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: फ्रेंड्स, एक बरस में मौसम तीन होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, रेनी सीजन स्टार्ट होने वाला है। कहीं मानसून ने दस्तक दे दी है तो कहीं देने वाला है। हम हमेशा सुबह जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें बरसात के समाचार होते हैं। अमुक जगह मानसून की बारिश हो रही है तो अमुक जगह प्री मानसून बारिश हो रही है। इसी के साथ में टीवी न्यूज़, रेडियो न्यूज़, हर जगह बारिश की खबरें आ रही है, बरसात के समाचार आ रहे हैं। हम जोधपुराइट्स भी गर्मी और उमस से बेहद परेशान हैं। हम आसमां की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं, ये बादल उड़ते उड़ते जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाके बरसेंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो मौसम वही गर्मी का बना हुआ है और हमें गर्मी से बेहाल किए जा रहा है। और हम ये सोच रहे हैं कि ये उड़ते उड़ते जो बादल जा रहे हैं, यहीं थम जाएं और यहीं पे बारिश हो जाए, मौसम जो है वो कुछ खुशनुमा हो जाए। यही सोचकर हम और साथ ही साथ किसान भी टकटकी लगाकर आसमां को निहार रहे हैं।

किसान टकटकी लगाकर आसमां की तरफ निहार रहे हैं क्योंकि खरीफ की फसल बोने का समय है और कुछ किसानों ने खेतों को जोत दिया है, बीज लेकर तैयार बैठे हैं कि बारिश आए, बारिश का मौसम बने और वो खरीफ की फसल को बोएं। तो इस तरह से ये जो बारिश है ना, वो समाज के हर वर्ग को प्रभावित करती है और सबसे ज़्यादा प्रभावित जो होते हैं वो आम जनजीवन प्रभावित होता है और साथ ही साथ किसान, किसानों की ज़िंदगी और किसानों की जो आशाएं हैं वो प्रभावित होती है। आशाएं यदि बारिश हो समय पर तो आशाएं फलीभूत होती है और यदि बारिश समय पर नहीं हो या बारिश कम हो तो आशाएं धरी की धरी रह जाती हैं। इसीलिए आज हम हमारे कार्यक्रम में मानसून पूर्व हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए ये बातें करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मानसून में हमारे घरों में किस तरह से मानसून से पहले हमें तैयारी करनी है। देखो ना, आजकल जब शादियां होती है तो प्री वेड होता है, तो मानसून आता है तो प्री मानसून तैयारी हमारी होनी ही चाहिए। तो हमें मानसून से पहले किस तरह से हमारे घरों में तैयारी करनी है, देखो मानसून डोर स्टेप पर है, बरसात शुरू हो उससे पहले हम अलर्ट हो जाएं। हालांकि हमने रेनी सीज़न के स्वागत की तैयारी शायद सभी ने शुरू कर दी है, लेकिन कोई ऐसा भी होगा जो जिन्होंने अभी शुरू नहीं की है और कोई ऐसे होंगे जो धीमी गति से कुछ न कुछ अपने घरों में तैयारी कर रहे हैं मानसून के स्वागत की। किस तरह से हमें मानसून आने से पहले यानी बारिश आने से पहले हमें तैयार हो जाना है, ये बातें हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से करने वाले हैं और साथ ही साथ हम बहुत अच्छे अच्छे बॉलीवुड के गाने भी सुनने वाले हैं। हम सारे गाने बरसात के नहीं सुन रहे हैं, सारे गाने हम आपको बरसात के नहीं सुनवा रहे हैं क्योंकि अभी तो बरसात का मौसम शुरू ही नहीं हुआ है। शुरू होने के बाद में तो हमें हमेशा कोई ना कोई बरसात का गाना सुनने को मिलेगा ही। कुछ बरसात के सुनेंगे, कुछ दूसरे मेलोडियस सॉन्ग सुनेंगे। तो चलिए बढ़े चलते हैं आगे एक और प्यारे से गीत की तरफ जो मैंने खास आपके लिए हमारी प्लेलिस्ट में रेडी रखा है।

0: माँ सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रसुख एक तरफ।
1: निसंतान दंपतियारे जीवन में खुशियाँ री उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
3: आज ही पधारे लाल जी नर्सरी, रानो जी का बाग, खोखरिया बिरा मंडो।
2: लाल जी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
4: लाल जी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।

वेलकम अगेन इन गुड इवनिंग एफएम प्रिंस। हम आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से बातें कर रहे हैं कि बारिश पूर्व हम हमारे घरों में किस तरह से तैयारी करें ताकि हमारी जो चीज़ें हैं वो सुरक्षित रह पाएं। फ्रेंड्स, बारिश के मौसम में वातावरण में नमी हो जाती है, नम वातावरण में फंगस जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं, इसीलिए घर में जो भी अनाज या खाने पीने की चीज़ें हैं उन्हें एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखें। और साथ ही साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें मानसून से पहले यदि आपने ले ली है तो उसे धूप दिखा दें, धूप दिखाने के बाद यानी धूप में अच्छी तरह से उसे सुखा लें, सूख जाए उसके बाद में उसमें सिलिकॉन बॉल्स या फिर पारे की गोली या इस तरह से एंटी फंगस आइटम्स सावधानी से डाल कर रखें ताकि वो ख़राब नहीं हो। इस तरह से हमारे जो ये भंडारण की हमारी पुराने रीति है इसको यदि हम पालन करते हैं तो हमारे घर में जो भी चीज़ें हैं वो सुरक्षित रह पाएंगी। और साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि इस बारिश के मौसम में अचार वगैरह इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसमें फंगस आ जाती है, काई आ जाती है, फफूंद आ जाती है, तो उनको उससे बचाने के लिए या तो फ्रिज में रखें या फिर ऐसी अलमीरा में रखें जहां पर नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़े, यानी वो वातावरण के प्रभाव से प्रभावित ना हो। बस खोला, उसमें से जो सामान चाहिए वो निकाला, वापस उसे बंद कर दिया, तो उससे बारिश का प्रभाव हमारे जो काम में आने वाली वस्तुएं हैं उन पर नहीं पड़ता है।

0: बचपन की बहुत सारी यादें हमारे जेहन में आज भी ताजा है, और ऐसी यादें जो होती है वो गाहे बेगाहे जब भी हम साथ में इकट्ठे होते हैं उन यादों को ताजा कर लेते हैं। जब भी हम सखियां बैठी होती हैं या जब भी हम हमारे रिश्तेदारों के साथ में बैठे होते हैं तब उन यादों को हम ताज़ा कर लेते हैं कि तब उस साल में या उस समय में हमने क्या बदमाशी की थी और किस तरह से हम बचे थे या क्या क्या हमने उस समय में हम किया करते थे, किस तरह के खेल खेला करते थे। फ्रेंड्स, हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से अभी बातें कर रहे हैं बारिश के मौसम से पूर्व हम क्या क्या तैयारियां करें। तो हमने बात की हमारे घर में जो काम में आने वाली वस्तुएँ हैं उनके भंडारण में हम किस तरह की सावधानियाँ बरतें। अब हम बात करते हैं हमारे कपड़ों को हम किस तरह से बारिश की सीलन से बचाएं। तो हमारे कपड़ों को भी सीलन की बदबू और जीव जंतुओं से बचाने के लिए कपूर की गोली डालकर अलमारी में अच्छी तरह से पैक करके रख दें। यदि आप चाहें तो उन्हें पॉलीथीन में भी पैक करके रख सकते हैं ताकि बरसात का जो प्रभाव है उससे वो कपड़े अप्रभावित रहें, यानी उनमें सीलन की बदबू ना आए। और अलमारी प्रायः हम ऐसा ही करते हैं, और ध्यान रखने लायक बात है कि अलमारी जो होती है उसे काम में लेना है तब खोलें, और तुरंत जो भी हमें सामान निकालना है निकाला और बंद कर दिया तो इस तरह से बाहर की हवा उन वस्तुओं पर उन कपड़ों पर नहीं लग पाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे घर में जो ओपन स्पेस हैं जैसे छत हुई, पोर्च हुआ, चौक हुआ, उसकी साफ सफाई की। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हम सामान काम में लेते हैं उसके बाद में जो भी उनके कंटेनर होते हैं या जो भी कुछ सामान बच गया है उसे हम छत पे रख देते हैं। हम में से कुछ लोग, सभी नहीं रखते हैं, छत पे रख देते हैं या पोर्च में जहाँ कहीं स्थान मिला या साइड में हम उन वस्तुओं को रख देते हैं और वो पड़ी रहती है, कई महीनों तक पड़ी रहती है। होता यह है कि बरसात आई उनमें पानी भर जाता है। अब जब बारिश का पानी उसमें भरेगा तो लाजमी है कि बरसात के मौसम में मच्छर पनपते ही हैं, तो उस पानी भरे पानी में मच्छर पैदा होंगे, उस पानी में काई पैदा होगी और कई तरह के जीव जंतु भी पैदा हो जाएंगे। इसीलिए अभी समय है कि जो भी हमने कबाड़ इकट्ठा कर रखा है उसे डिस्पोज ऑफ कर दें, चाहे तो कबाड़ी को बेच दें या हम जो गाड़ी वाला सुबह आता है हमारे घर पे उसकी गाड़ी में डाल दें। पर जो ये कबाड़ है ये हम हमारे घर में कतई ना रखें, क्योंकि इनमें जब पानी भर जाएगा तो वो कई तरह के बुखार के वाहक मच्छरों को भी पैदा करेगा। फ्रेंड्स, शायद आप जानते होंगे कि डेंगू के जो मच्छर हैं वो मच्छर साफ पानी में ही पनपते हैं, तो इस तरह से जब हमारे घर में ये कंटेनर पड़े रहेंगे इनमें पानी इकट्ठा होता रहेगा तो डेंगू के मच्छर भी पनप सकते हैं, और वो उन मच्छरों से डेंगू या मलेरिया या और भी तरह के जो भी मच्छर पैदा हुए हैं उस तरह के बुखार से हम ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए जो भी हमने कबाड़ इकट्ठा कर रखा है जाने अनजाने में हम पूरा घर को विजिट कर लें और जहां कुछ भी हमें लगे उसे हम बाहर निकाल फेंके।
1: अच्छा, ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?
2: ना, ना, ना, ना।

0: प्यार है,
1: अरे बाबा है,
0: तुमको मुझसे प्यार है,
1: है?
2: फ्रेंड्स, आज हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से बातें कर रहे हैं कि बारिश पूर्व हम किस तरह की तैयारी करें। बारिश का मौसम बहुत ही सुहावना मौसम होता है। इस मौसम में खाने पीने का भी हम लुत्फ उठाते हैं और साथ ही साथ घूमने फिरने का भी हम खूब मज़ा लेते हैं। बारिश से जुड़ी एक छोटी सी कविता जो मुझे मेरे बचपन में मैंने सीखी थी, मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बहुत सुंदर कविता है। एक बचपन का ज़माना था जिसमें खुशियों का खजाना था, चाहत चांद को पाने की पर दिल तितली का दीवाना था। खबर ना थी कुछ सुबह की न शाम का ठिकाना था, थक कर आना स्कूल से पर खेलने भी जाना था। माँ की कहानी थी परियों का फसाना था, बारिश में कागज़ की नाव थी, हर मौसम सुहाना था। हर खेल में साथी थे, हर रिश्ता निभाना था, गम की जुबान ना होती थी, ना जख्मों का पैमाना था, रोने की वजह ना थी, ना हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो वो बचपन का जमाना था।

की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा एक आपातकालीन किट तैयार होना चाहिए जिसमें फर्स्ट एड बॉक्स हो और साथ ही साथ टॉर्च हो, छतरी और रेनकोट जो हैं वो भी हमारी चुस्त दुरुस्त हालत में है या नहीं ये भी हमें चेक करना होता है। तो इस तरह से ये जो सामान है इनको हम चेक करके एक जगह पर या कोई भी नियत स्थान पर हम रखें ताकि जब भी ज़रूरत पड़े हमें उसे ढूंढना ना पड़े, वो हमें नियत स्थान पर मिल जाए और जब हमने काम में ले लिया है उसके बाद में फिर से उसे अच्छी तरह से सुखा के उसे उसी नियत स्थान पर रख दें ताकि जब भी हमें उस चीज़ की आवश्यकता हो वो हमें सही जगह पर मिल जाए। तो इस तरह से हमने आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी बातें की कि मानसून से पहले हमें किस तरह की तैयारी करनी है। चलिए बढ़े चलते हैं एक और गीत के साथ।

फ्रेंड्स, हमारे कार्यक्रम में हमने बहुत सारी बातें की कि किस तरह से बरसात आने से पहले हम तैयार हो जाएं। फ्रेंड्स, एक और महत्वपूर्ण बात है और वो ये कि हमारे घरों के आसपास या घरों में जो भी पेड़ पौधे हैं, वो पेड़ पौधे यदि बिजली के तारों को

छू रहे हैं, तो किसी अनहोनी से बचने के लिए हमें उन पेड़ पौधों को अच्छी तरह से उन वायर से दूर कर देना है, यानी उन्हें कटिंग कटाई छटाई जो भी करनी है वो कर दें। और साथ ही साथ कुछ घरों में जो डोरबेल के स्विच हैं वो खुले में हैं, तो उनके लिए भी हमें प्रॉपर व्यवस्था करनी है। इस तरह से जो भी छोटी मोटी बातें हैं जो हमें ध्यान आ रही है उनका निस्तारण यदि हम करते रहेंगे, उनका हम पुख्ता इंतजाम करते रहेंगे, तो इस बरसात के मौसम में हमें किसी तरह की अनहोनी का सामना शायद ना करना पड़े। इसलिए बरसात आए उससे पहले हम तैयार हो जाएं।

ये था हमारा आज का गुड इवनिंग एफएम कार्यक्रम। आज की गुड इवनिंग एफएम के सफर में मैं थी आपके कार्यक्रम की हम सफर विनीता जैन। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड इवनिंग एफएम। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सनसिटी चैनल है। अब से लेकर 8:45 तक हम सुनेंगे राष्ट्रीय प्रसारण सेवा विविध भारती पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला। पहले सुने विशेष जयमाला।

सर पे सजीली पग और रौबदार शख्सियत के धनी बिशन सिंह का जन्म शहर लुधियाना के एक छोटे से गांव पुरनैन में 14 जनवरी सन 1917 को हुआ। ये वो समय था जब भारत में बरतानिया हुकूमत का राज था। सांसों में एक घुटन सी हुआ करती थी। परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े भारत की ऐसी ही फिजाओं में बिशन सिंह की उम्र धीरे धीरे परवान चढ़ती रही। माता पिता का प्यार और परिवार का दुलार भरपूर था। स्वतंत्रता के लिए हर तरफ से उठती आवाजें गाहे बगाहे नन्हे बिशन सिंह को भी सुनाई पड़ती और देश के लिए उनकी आंखों में भी सपने पला करते थे। देखते ही देखते उम्र के साथ बिशन सिंह के ये सपने भी जवान हो चले। पढ़ने लिखने के साथ खेल प्रतियोगिताओं में भी बिशन सिंह अक्सर भाग लिया करते। धीरे धीरे उनके दिल में पलता वतन का प्यार और अपनी मिट्टी से उनका जुड़ाव, देश के लिए कुछ करने का जज्बा उनके दिल में धड़कने लगा।

फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो, हे हम सारे हैं भारतवासी, सब है भारत।

बिशन सिंह औरों से जरा हट कर थे, जितने खुश मिजाज उतने ही संजीदा। उनका कर्तव्य बोध, उनके देश के प्रति निष्ठा और उनकी मेहनत रंग लाई। फौज में उनके जाने का सपना साकार हुआ और महज 16 साल की उम्र में सन 1933 में उन्होंने सिख रेजिमेंट ज्वाइन की। बिशन सिंह इसे अपनी खुशकिस्मती मानते थे कि उन्हें देश सेवा का अवसर मिला। अपने कौल के पक्के, दिल में देशभक्ति का जज्बा और जुनून, अनवरत आगे बढ़ने की चाह, वक्त के पाबंद, फरमा बरदार और जुनून की हद तक देश सेवा की भावना ने उन्हें फौज का एक जाना माना चेहरा बना दिया। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में देश विदेश में होते बदलाव का असर सभी पर व्यापक था। इस समय काल में जंगें भी बहुत लड़ी गईं, जिनमें भारतीय सेना ने बरतानिया हुकूमत के ध्वज तले कई युद्ध लड़े, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध भी था। इस युद्ध में बिशन सिंह हर उस मोर्चे पर भी सफल रहे जिसकी अगुवाई उन्होंने की और कभी शिकस्त न खाई। उन्हें सरदार बहादुर और कई और खिताबों से तत्कालीन अंग्रेज हुकूमत ने नवाजा। फिर वो घड़ी भी आई जब देश आजाद हुआ। आनंद के एहसास से दिल भर भी न पाया था कि युगों युगों से एक संग रहती भारत भूमि के मानचित्र पर लकीर खींचकर इसके दो भाग कर दिए गए। ये दर्द ऐसा था कि जिसकी टीस हर एक ने महसूस की। घर उजड़े, मकान छूटे, दिल टूटे, परिवार बिखरे, वतन छूटा और यहाँ तक कि मवेशी भी अपनी पनाहगाह तलाशने लगे।

1947 में देश के विभाजन के साथ ही हमारे देश से अलग हुए मुल्क ने सीमा पार से कबायली हमले तेज किए। छुप छुप कर होते इन हमलों ने देश की उत्तर पश्चिमी सीमाओं को बेहद संवेदनशील बना दिया। इन हमलों को रोकने और दुश्मनों को सबक सिखाने के मद्देनजर बिशन सिंह के नेतृत्व में दिसंबर 1947 को जम्मू कश्मीर में पहले सिख यूनिट को तत्काल प्रभाव से रवाना किया गया, क्योंकि देश के बंटवारे के बाद बिशन सिंह ने भारतीय सेना को चुना और यहीं अपने वतन की सेवा करना चाहा। सिख रेजिमेंट के इस जाबाज अफसर को युद्ध का खासा अनुभव भी था और जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति से भी वो भली भांति परिचित थे। हालांकि इस सरहदी इलाके में युद्ध का खतरा पहले से ही मंडरा रहा था। फौजी साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

अक्टूबर माह 1947 से ही भारतीय सेना की सरगर्मियां यहां देखी जा सकती थीं। बंकर में छिपी शत्रु सेना के रह रहकर होते हमले दिन ब दिन बढ़ते ही जाते थे। सीमा पार से कबाइलियों की घुसपैठ और तेज हुई और भारत के सीमावर्ती इलाकों को निशाना बनाया जाने लगा। सूबेदार बिशन सिंह की सेना के कूच करने से पहले ही दुश्मन फौज ने भारतीय सैनिकों की पहले भेजी गई टुकड़ी पर हथगोले और धारदार हथियारों से हमले किए और आगे बढ़ती भारतीय सेना के लगभग 10 जवानों को अपना निशाना बनाया। हमारी सेना के कुछ जवान इस हमले में घायल भी हुए। आगे बढ़ते इन जवानों को बिना वक्त गवाए बिशन सिंह की सेना ने कवर दिया और मोर्चे पर सबसे आगे खुद सूबेदार बिशन सिंह थे।

मशीन गन से भारी तादाद में निकलती गोलियों ने कश्मीर की फिजाओं में बारूद घोल दिया। उधर से दुश्मन सेना के तेज होते कबायली हमले और इधर सिख रेजिमेंट की डी कंपनी के धाकड़ जवान जिनके कदमों की आहट ने उरी की वादियों में हलचल मचा दी। शत्रु लगातार भारतीय सेना का निशाना बनते रहे और उनके कई बंकरों, असलाहों, राइफल्स, मशीन गन्स और गोला बारूद पर भारतीय सैनिकों ने कब्जा कर लिया। भारतीय सेना के हमले की जद में आ रहे कई दुश्मन सैनिक अपनी जान बचाकर युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। दोनों ओर से होती घमासान जंग में दुश्मनों के हौसले पस्त थे क्योंकि बिशन सिंह ने अपनी सैनिक टुकड़ी को हर दिशा से धावा बोलने का एक अचूक मंत्र दिया। वो स्वयं बाईं तरफ से हमला बोलते हुए दुश्मनों पर गोलियां बरसाने लगे और इस अफरा तफरी के माहौल का पूरा फायदा उठाते हुए अपनी मशीन गन और फिर अपनी संगीन से दुश्मनों को मौत की घाट उतारा। इस गुत्थम गुत्था में उनके शरीर में भी बहुत चोटें आईं और शरीर से बहुत सारा खून बह गया। घायल अवस्था में भी उन्होंने दुश्मन के 5 और सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। उनकी इस वीरता को प्रत्यक्ष देखकर उनके साथी सिपाहियों के हौसलों का ठिकाना न था। अपने सेना नायक की भांति बाकी सैनिक भी शत्रुओं पर कहर बन के टूटे। हताश और बदहवास दुश्मन सैनिकों ने अपने हथियार वहीं फेंक दिए और भागना ही मुनासिब समझा। लक्ष्य अपने मकाम तक पहुंच चुका था, जीत पक्की थी। शत्रु के इलाके को घेरते हुए उनके बंकरों पर भी बिशन सिंह और उनके फौजी साथियों ने कब्जा कर लिया। इस बीच एक बंकर की ऊंचाई पर हालात का जायजा लेने के मद्देनजर बिशन सिंह तेजी से चढ़े, जहां घात लगाकर बैठे शत्रु ने अपनी LMG बंदूक से बिशन सिंह पर निशाना साधा और इस लाइट मशीन गन से निकली गोलियां सूबेदार बिशन सिंह के सीने में पैबस्त हो गई। उनकी सांसें थमने लगी। अब भी अपनी बंदूक को थामे लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़े बिशन सिंह और गोलियां बरसाते रहे। धुंधली आंखों में अब भी फतेह का तिरंगा लहरा रहा था कि उखड़ती सांसों ने जिस्म को निढाल कर दिया और सरजमीन हिंद का ये बांका सिपाही मां भारती और अपने वतन को आखिरी सलाम कर चल दिया उस अनंत पथ पर जहां से फिर शायद कोई कभी लौट कर नहीं आता। आती है तो बस उनकी यादें।

फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित सूबेदार बिशन सिंह की शौर्य गाथा। दिसंबर 1947 में भारत से अलग हुए मुल्क के साथ लड़ी गई ये जंग देश के इतिहास में एक ऐसी जंग थी जिस पर हौसलों से फतह पाई गई। पहली सिख रेजिमेंट के शेर दिल सिपाही सूबेदार बिशन सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के सफल संचालन से भारतीय सेना को इस मोर्चे पर फतह हासिल हुई और दुश्मनों को शिकस्त। कबाइलियों और दुश्मन सेना को इस कदर पीछे धकेल दिया गया कि इस जंग से आज भी शत्रु खौफ खाता है। जिस मरने ते जग डरे मेरे मनी अनंत, मरने ही ते पाइये पूर्ण परमानंद। जिन भारत माता के सपूतों के ऐसे हौसले हों उन्हें भला दुश्मन कब मार सके।

साथियों, भारत से अलग हुए पड़ोसी देश के साथ सन 1947 में लड़ी गई इस जंग में पहले सिख रेजिमेंट के होनहार और बहादुर सिपाही सूबेदार बिशन सिंह को सेना के सफल संचालन, उनके सूझबूझ, कर्तव्य

प्रतिष्ठा और असाधारण पराक्रम, उनके बलिदान, वीरता, अदम्य साहस के लिए इस जंग में शत्रुओं को नेस्त नाबूद करने और फतेह का तिरंगा लहराने के लिए भारत सरकार ने सूबेदार बिशन सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया। हम सूबेदार बिशन सिंह को सलाम करते हैं।

जी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की इस कड़ी में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित सूबेदार बिशन सिंह की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, जय।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे वैन शिपले का इलेक्ट्रिक गिटार। आज की फिल्में हैं हावड़ा ब्रिज और अजनबी।

0: अभी आप सुन रहे थे हावड़ा ब्रिज फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में। गीत कंवर जलालाबादी का था, संगीत ओपी नैयर का।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।

पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए अजनबी फिल्म के इस गाने के साथ ही इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज कार्यक्रम समाप्त होता है।

दोस्तों हवा महल कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं राजेश भदौरिया की लिखी झलकी लड़ी नजरिया लड़ी। निर्देशक हैं गुरुमीत रामल मीत।

0: आज तो बड़े बाबू भाई वाह, क्या कहने। अरे किसका कत्ल करके चले आ रहे हैं?
1: देखो चौबे, औकात में रहो।
0: क्या बात है, आज आपके होठों पर आशिकी नगमा।
1: गुनगुना क्या दिया, लग गया सबको चरपरा। और जब पिद्दी से लौंडे आजकल तरह तरह के गाने गाते फिरते हैं, तो हमने जरा सा गुनगुना दिया, इसमें कौन सा धधकता हुआ ज्वालामुखी ब्लास्ट हो गया।
0: आप तो खामखा आग बबूला हो गए बड़े बाबू।
1: और नहीं तो क्या, गुलगुला हो जाऊं?
0: देखिए बड़े बाबू, मैंने ऐसा कुछ नहीं कह दिया कि आप राशन पानी लेकर ऊपर चढ़ बैठे।
1: और कैसे कहा जाता है, जो कहना था वो सब तो कह दिया, बहुत है इज्जतदार के लिए इतना।
0: भाई क्या कह दिया, जरा मैं भी तो सुनूं।
1: आशिकी नगमा, कत्ल करके आए हो। अरे मैं कहता हूँ, और क्या कह सकते हो
0: भाई। बड़े बाबू, रोज आपके मुंह में पान और होठों पर महंगाई का रोना, या तो फिर दूसरों को कोसना, या इसकी शिकायत उसकी

0: शिकायत, लेकिन आज वाह वाह क्या बात है, किसकी तरफ से आने वाले हैं गर्मा गर्म समोसे?
1: लो एक और आ गए। चाहे सवेरे घर में चाय तक ना नसीब हुई हो, लेकिन कार्यालय में बात करेंगे तो गर्मा गर्म समोसे से नीचे नहीं, जैसे नवाब जादे समोसे खाते खाते ही पैदा हुए थे।
0: हाँ ये बात तो है। नहीं खजूरी साहब ये बात नहीं, आज तो बड़े बाबू। अच्छा अच्छा, आज तो बड़े बाबू की तरफ से है, बधाई हो बड़े बाबू, बधाई हो।
1: अरे कौन सी ढोलक बजी है हमारे घर में, किस बात की बधाई?
0: बात बाद में, पहले तो हो जाए। हाँ
1: हो जाए हाँ, यहाँ मुफ्त में बंट रही है, जब जी चाहे हो जाए। हाँ
0: खजूरी, बात दरअसल ये है कि आज बड़े बाबू पर किसी हसीना का चक्कर चल गया है।
2: चक्कर? हसीना का चक्कर?
0: तो ये बात है। अमा भाई आप तो छिपे रुस्तम निकले, आखिर खिजाब ने कमाल दिखा ही दिया।
1: ओफो,
0: इसीलिए मैं सोच रहा था कि इंटीमेट कहाँ महक रहा है।
1: अरे अरे तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है, इंटीमेट किस भकुए ने लगाया है? यहाँ तो मिट्टी के तेल की खुशबू के अलावा दूसरी कोई सुगंध ही नहीं पहचानते।
0: मजाक छोड़िए बड़े बाबू, बता भी दीजिए कब बज रही है ढोलक।
1: अरे खजूरी तुम ही बताओ, जब कोई बात हो तभी तो बताए, है कि नहीं भला?
0: थोड़ा सा बड़े बाबू लंच करवाना पड़ेगा। हाँ
1: देखो देखो, दूर से बात करो। हाँ दूर से बात करो, मुझे गुदगुदी बहुत लगती है। हाँ गुदगुदी लगाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए?
0: अरे हम किसी से कहने थोड़े ही जा रहे हैं, आपकी कसम हम ही तो आपके चाहने वाले हैं।
1: क्यों नहीं क्यों नहीं, आपकी चाहत की वजह से ही तो ये हो रहा है।
0: छोड़ो यार खजूरी, नहीं बताना चाहते हैं बड़े बाबू तो न बताएं, जब पेट में दर्द होगा तो खुद ही कहेंगे। सुन लो आकर मेरी बात, देख लेना हम भी नहीं सुनेंगे तब।
1: हाँ, हाँ, जब दर्द होगा तब देखेंगे।
2: अच्छा चोबे ये तो बताओ, तुम्हें कैसे पता चला चक्कर का?
0: आज सवेरे सवेरे बड़े बाबू गाना गा रहे थे, लड़ी नजरिया लड़ी।
2: अच्छा तो ये बात है, बता दीजिए बड़े बाबू, भगवान कसम अब नहीं रहा जाता।
1: अब तुम ही सोचो खजूरी, हमें तुमसे कोई पर्दा है क्या?
2: नहीं तो?
1: और फिर पर्दा ही करना होता तो मैडम सरिता से करते।
2: हाँ हाँ और क्या,
1: मैं भला तुमसे क्यों छुपाऊंगा? अगर कोई बात होती तो मैं तुम्हें ना बताता।
2: लेकिन लड़ी नजरिया लड़ी वाली खबर?
1: अरे ये सब चौंचले हैं चौबे के, मैंने तो बस यूं ही गुनगुना दिया था जरा।
2: जब आप गाना गा रहे थे?
1: गा नहीं गुनगुना रहे थे।
2: हाँ हाँ वही, जब आप गुनगुना रहे थे तो आपके दिल में कुछ ऐसा कुछ वैसा, मेरा मतलब कुछ कुछ
1: कुछ नहीं हो रहा था खजूरी, मैं सच कहता हूँ कुछ नहीं हो रहा था।
0: सोच लीजिए बड़े बाबू, ऐसे वैसे गाने कोई यूं ही नहीं गाता, जब भीतर कुछ कुछ होता है तभी ऐसे गाने मुंह पर आते हैं।
1: ओफो, गाना ना हुआ पानी हो गया, जो जब मन हुआ मुंह में आ गया। मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा था मेरे अंदर।
0: तो फिर आपने देशभक्ति का गीत क्यों नहीं गाया, जबकि जरूरत है आजकल देशभक्ति के गानों की?
1: ओफो
0: देखिए देखिए, परेशान मत होइए, चोबे गया है बाहर, तब तक मुझे बता डालिए।
1: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है।
0: मान लिया, लेकिन अपना भी ये दावा है कि देखकर जान लेते हैं भीतर का हाल, उठ रहा है कहां कितना उबाल।
3: मारे गए बेमौत, अब साहब क्यों बुला रहे हैं, इसी वक्त बुलाना था इनको भी।
0: कहीं साहब तक तो बात नहीं पहुंच गई, संभल कर बड़े बाबू।
3: आपने मुझे बुलाया साहब?
4: हाँ बुलाया है, बैठो बैठो, डोंट वरी, तुम्हारे जैसे मेहनती और चरित्रवान आदमी पर ऑफिस को गर्व है।
3: धन्यवाद साहब।
4: इधर तुम्हारा काम धंधा, मेरा मतलब ऑफिस का काम कैसा चल रहा है?
3: ठीक ही चल रहा है आपकी मेहरबानी से।
4: तुम्हारी उम्र कितनी है बड़े बाबू?
1: साहब मैं समझा नहीं, आप ये सब क्यों पूछ

0: रही हुई फॉर जनरल नॉलेज
1: साहब, बस ये समझ लीजिए पुराना खाया पिया है, इसलिए अब की फागुन में 40, 8, 48 वर्ष
0: आपके बच्चे भी काफी बड़े बड़े होंगे
1: जी। आपकी मेहरबानी से
0: इस उम्र में आपके इश्क के चर्चे बहुत खराब बात है, बहुत खराब बात है
1: जी। मैं कुछ समझा नहीं।
0: देखो बड़े बाबू, आज ऑफिस में सवेरे से आपके इश्क की चर्चा है, जिधर देखिए उधर बस एक ही खबर। माजरा क्या है जरा मुझे भी तो बताइए।
1: साहब ये आप क्या कह रहे हैं, भला सोचिए मैं इश्क कैसे कर सकता हूँ। आज तक साहब मैंने किसी लड़की की तरफ तो क्या बीवी की तरफ भी आंख उठाकर नहीं देखा है।
0: होता है, अक्सर ऐसा होता है, लोग नहीं देखते हैं आंख उठाकर, लेकिन इंसान का काबू अपने जज्बात पर नहीं होता, कब क्या हो जाए किसी को खबर नहीं होती। डोंट वरी बताओ भी।
1: अब तो कुछ ना कुछ बताना ही पड़ेगा। अब साहब आपसे क्या छिपाना, यूं ही पता नहीं क्यों मन में आज पुरानी यादें किलोले करने लगी।
0: फिर क्या हुआ?
1: फिर मन में उमंगे
0: पतंगे
1: नहीं साहब, उमंगे उमंगे उठने लगी, गिरने लगी, अंगड़ाइयां लेने लगी।
0: फिर
1: कुछ नहीं साहब।
0: ओहो नॉनसेंस, वेयर इज क्लाइमेक्स, आगे क्या हुआ?
1: साहब फिर मुझे लगा मेरी रगों में सपरेटा नहीं प्योर खून बह रहा है, मुझे भी अपने सांसों में बदबू नहीं खुशबू महसूस होने
0: फिर
1: लगी।
0: क्या हुआ बड़े बाबू, फिर क्या हुआ? ठीक से बैठिए ना।
1: हाँ ठीक है।
0: नहीं पैर कुर्सी के नीचे।
1: सॉरी सर, बाबू हूं ना, इसी से आदत है।
0: कैरी ऑन।
1: फिर मुझे ऐसा लगा मैं आकाश में किसी
0: ओहो बताइए ना,
1: किसी परी के साथ उड़ रहा हूँ, सारी दुनिया से बेखबर उससे बातें कर रहा हूँ।
0: क्या बातें कर रहे हो?
1: मैं उसे कल की सब्जी के भाव बता रहा था, परमल 8 रुपए किलो, कद्दू 4 रुपए, लौकी।
0: ओहो आप भी किस मौके पर कहाँ की बात ले बैठे, कहाँ गया है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड?
1: साहब अब की वो मुझे मिल गई तो मैं उससे कहूंगा प्रिये हम तुम इसी अवस्था में सदियों तक विचरण करते रहे।
0: बड़े बाबू मेरा हाथ छोड़िए।
1: ओह सॉरी सर।
0: और वो गाना?
1: साहब वही गाना मैं गुनगुनाता हुआ चला आ रहा था, लड़ी नजरिया लड़ी, लड़ी नजरिया लड़ी।
2: अरे उठो भी, क्या सोते में लड़ी नजरिया लड़ी गाते जा रहे हो? 4 लौंडों के बाप हो गए, नजरियों की लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई। अरे मैं कहती हूँ दुनिया में लड़ाइयों के खत्म होने के ऐलान हो रहे हैं, एक आप है नजरियों की लड़ाई लड़े जा रहे हैं।
1: बात यह है मुन्ने की अम्मा, मैं सोते में एक बहुत प्यारा चटपटा सपना देख रहा था।
2: सोते में सपने तो देखोगे ही, जागते में तो मैं भूतनी बनी खड़ी रहती हूँ तुम्हारे आगे। जरा मैं भी तो सुनूं किससे नजरिया लड़ा रहे थे?
1: तुम तो जानती ही हो मैं भला किससे नजरिया लड़ा सकता हूँ।
2: हाँ हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारे चोंचले।
1: मेरा विश्वास करो भाग्यवान, मैंने किसी से नजरें नहीं लड़ाई।
2: तो फिर लड़ी नजरिया लड़ी?
1: वो तो सपने में जवानी की पुरानी यादें तरोताजा करने के लिए, कसम से।

लड़ी नजरिया लड़ी। अभी आप सुन रहे थे राजेश भदौरिया की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे गुरुमीत रामल मीत। ये थी आकाशवाणी शिमला की प्रस्तुति।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी

0: परभणी में, वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
0: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला गाना हमने लिया है फिल्म हेट स्टोरी 4 से। इसे गाया है जुबिन नौटियाल और नीति मोहन ने। गीत मनोज मुंतशिर और संजय गुप्ता का है, संगीत आरको का।

अगला गाना फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से है। इसे गाया है पलक मुछाल ने, गीत मनोज मुंतशिर ने लिखा, संगीत अमाल मलिक का।

अंतराल के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं बागी 2 फिल्म का गाना। अंकित तिवारी और श्रुति पाठक की आवाजों में, गीत कुमार का है, संगीत गौरव रोशन का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त,

0: अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल्स में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: सेशल्स के राष्ट्रपति हरमिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व, विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र, जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
1: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट अवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड कलेक्टिवली, इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
0: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि

0: नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,00,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, एक पंचायत के हिस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
2: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार

0: कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जवलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है, हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सनसिटी चैनल है। अब से रात 11 बजे तक आप सुनेंगे राष्ट्रीय प्रसारण सेवा विविध भारती के कार्यक्रम।
3: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और आशा भोसले के गाए कस्मे वादे फिल्म के इस गाने से। गीत गुलशन बावरा ने लिखा है, संगीत RD बर्मन का है।

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में प्यासा सावन फिल्म का गाना, गीत संतोष आनंद का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है,

0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: आइए अब सुनते हैं काश फिल्म का गाना। किशोर कुमार और अनुपमा देशपांडे की आवाजों में, गीत फारूक कैसर का है, संगीत राजेश रोशन का।

अब सुनते हैं कुदरत का कानून फिल्म का गाना लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में. गीत लिखा है समीर ने, संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने.

इस गाने के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम समाप्त करने की प्रीति शर्मा को दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी ये किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

सुनने वालों को शिफाली कपूर का नमस्कार। साथियों, फिल्मों में निर्देशक ही वो सूत्रधार होता है जो कैमरे के पीछे रहकर पूरी टीम का मार्गदर्शन करता है, कलाकारों के अभिनय को आकार देता है। निर्देशक की सोच, दृष्टि और सृजनात्मकता ही किसी भी फिल्म की आत्मा होती है। आज हम ऐसे ही प्रतिभाशाली निर्माता निर्देशक के जीवन कार्य और योगदान पर बातें करेंगे, जिन्होंने अपने अनोखे दृष्टिकोण और सृजनात्मकता से सिनेमा की दुनिया में अपना एक विशेष स्थान बनाया है। साथियों, हिंदी सिनेमा में जहां एक ओर बड़े बजट की भव्य फिल्में दर्शकों को आकर्षित करती हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ निर्देशक अपनी सादगी भरी कहानियों और मानवीय भावनाओं को बड़ी खूबसूरती से प्रस्तुत करके दर्शकों का दिल जीत लेते हैं।

जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज के फनकार, वेरी टैलेंटेड निर्माता निर्देशक आनंद एल राय की, जिन्होंने साधारण मिडिल क्लास लोगों की कहानियों को रुपहले पर्दे पर नया नजरिया दिया है।

ਮਾਤਾ ਲਾ ਗਰਦਾ ਉਡਾ ਦੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਗਰਦਾ ਉਡਾ ਦੀ ਹੈ।

28 जून साल 1971 दिल्ली में जन्मे आनंद एल राय, इनका परिवार भारत पाक विभाजन के दौरान सीमा पर खिंची दीवार के बाद सिंध छोड़कर देहरादून चला आया और कुछ समय बाद आनंद राय के पिता ने दिल्ली में अपना आशियाना बना लिया। आनंद राय का पालन पोषण दिल्ली में हुआ। वहां से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा के बाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर वे नौकरी करने लगे। साथियों, यूं तो आनंद की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ कमी सी महसूस होती रही। दरअसल उनका झुकाव तो रचनात्मक क्षेत्र की ओर था,

आनंद अपनी नौकरी छोड़कर मुंबई आ गए। श्रोताओ, बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग का फील्ड छोड़कर फिल्मी दुनिया में करियर बनाया है। आनंद एल राय भी उनमें से एक हैं। मुंबई आकर आनंद राय ने अपने बड़े भाई रवि राय, जो कि उस समय टीवी

धारावाहिकों का निर्देशन कर रहे थे उन्हें असिस्ट करना शुरू कर दिया। पर्याप्त अनुभव प्राप्त करने के बाद आनंद ने अपने निर्देशन की शुरुआत की। यह यूं कहिए कि आनंद ने बतौर निर्देशक अपना डेब्यू किया साल 2007 में साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म स्ट्रेंजर्स के साथ। यहां आपको बताते चलिए कि फिल्म स्ट्रेंजर्स अल्फ्रेड हिचकॉक की स्ट्रेंजर्स ऑन अ ट्रेन पर बेस्ड थी, लेकिन आनंद राय की यह डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह लुढ़क गई, जिसमें जिमी शेरगिल, के मेनन, नंदना सेन, सोनाली कुलकर्णी जैसे कलाकार थे।

साल 2008 में जैकी श्रॉफ और परमीत सेठी अभिनीत आनंद राय की अगली फिल्म आई थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू नहीं चला पाई और दर्शकों ने भी इस फिल्म को नकार दिया।

बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म देने वाले आनंद एल राय, इनके साथ अब कोई निर्माता काम करने को तैयार नहीं था। लगातार फेलियर होने पर आनंद राय ने हार तो नहीं मानी, लेकिन हाँ, 3 साल का ब्रेक जरूर ले लिया। इन 3 सालों के ब्रेक के बाद आनंद राय के करियर का टर्निंग प्वाइंट आया साल 2011 में, जब उन्होंने तनु वेड्स मनु फिल्म के निर्देशन के साथ अपनी ग्रैंड वापसी की और हर किसी को अपने डायरेक्शन का दीवाना बना दिया।

आर माधवन और कंगना रनौत अभिनीत ये फिल्म आनंद राय की पहली कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म थी, जिसने दुनिया भर में जबरदस्त कमाई की। दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया।

राय बॉलीवुड के उन गिने चुने डायरेक्टर्स में से हैं जो रीमेक के दौर में नई और असल कहानियों पर काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। वो खुद भी बड़े सिंपल अंदाज में जीवन जीते हैं। साथियों, उनका कहना है कि अगर वो साधारण जिंदगी नहीं जिएंगे तो अपने अंदाज में फिल्में नहीं बना पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं साल 2013 की। इस साल आनंद राय ने अपने निर्देशन में दूसरी कमर्शियली हिट फिल्म दी रांझणा, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। इस फिल्म के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर के ऑपोजिट साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार धनुष ने बॉलीवुड में अपनी एंट्री की, जिन्हें दर्शकों ने तहे दिल से स्वीकार किया और इस फिल्म में अभिनेता धनुष के अभिनय की भूरी भूरी प्रशंसा हुई।

आपको बता दें कि फिल्म रांझना दुनिया भर में करोड़ों की कमाई करने वाली साल की 10वीं सबसे ज्यादा कमाऊ हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म के लेखन और निर्देशन की बहुत सराहना हुई और फिल्म रांझना ने फिल्म फेयर अवार्ड के लिए आनंद एल राय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अपना पहला नामांकन दिलाया।

संगीत सुनने के शौकीन बॉलीवुड प्रोड्यूसर डायरेक्टर आनंद एल राय हिंदी सिनेमा में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं। साल 2015 में आपने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स का निर्देशन किया, जो फिल्म तनु वेड्स मनु का सीक्वल था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही। दर्शकों से इस फिल्म को भरपूर प्यार और सराहना मिली। ये फिल्म साल की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी, जिसने दुनिया भर में करोड़ों में जबरदस्त कमाई की। खास बात ये रही साथियों कि अपनी रिलीज के समय भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये महिला प्रधान फिल्म थी। आनंद राय की इस तीसरी जबरदस्त सफल फिल्म ने उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में अपना दूसरा नामांकन दिलाया।

आनंद एल राय को सफलता काफी उतार चढ़ाव के बाद मिली। भारतीय सिनेमा में कई निर्देशक हैं, लेकिन चर्चा में कुछ ही रहते हैं जिनमें आनंद एल राय का नाम भी शामिल है। तनु वेड्स मनु, रांझणा, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स जैसी हिट फिल्म्स के निर्देशक आनंद एल राय बॉलीवुड

आपने साल 2018 में शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ जैसे ए लिस्ट स्टार कास्ट के साथ फिल्म बनाई जीरो। और साथियों, आनंद राय की पिछली सफल फिल्मों के कारण रिलीज से पहले हाई प्रमोशन के बावजूद आनंद राय की ये फिल्म कुछ खास नहीं चल सकी।

श्रोताओं, आनंद राय न केवल निर्देशक हैं बल्कि वो एक सफल निर्माता भी हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस कलर येलो प्रोडक्शंस के बैनर तले नील बटे सन्नाटा, हैप्पी भाग जाएगी, मन मर्जियां, तुम बाट, अतरंगी रे, रक्षाबंधन, शुभ मंगल सावधान जैसी कई फिल्मों का निर्माण किया है। फिल्म अतरंगी रे की बात की जाए तो ये फिल्म साल 2021 में आई, जो एक रोमांटिक फैंटेसी कॉमेडी थी। आनंद राय निर्देशित इस फिल्म में धनुष, सारा अली खान और अक्षय कुमार मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म को कोविड के दौरान लॉकडाउन के कारण सिनेमाघरों में रिलीज किए बिना डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज किया गया, जिसे दर्शकों की, आलोचकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया और समीक्षा मिली।

साल 2022 में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को लेकर आनंद एल राय ने फैमिली कॉमेडी फिल्म रक्षाबंधन निर्देशित की।

और अब साल 2025 में आने वाली फिल्म तेरे इश्क में, जो सीक्वल है फिल्म रांझणा का और जिसके निर्माण और निर्देशन का दारोमदार है आनंद एल राय पर। देखना ये होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाती है। तो हमें इंतजार है आनंद एल राय की आने वाली फिल्मों का। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्माता निर्देशक आनंद एल राय पर। शोध, आलेख और स्वर शिफाली कपूर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। आज के फनकार।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। पंचम के गानों का अपना एक संसार है, कुछ चुलबुले गाने, कुछ उदास जो आंसुओं की नमी से भीगे हैं, कुछ ऐसे गाने जिनमें जोश छलक छलक पड़ता है, कुछ ऐसे गाने जिनके कंधों पर सर रखकर आप अपने डूबे हुए दिल को सहारा दे सकते हैं। पंचम गानों के जादूगर थे। आज के छाया गीत में पंचम के कुछ ऐसे गाने जिन्हें सुनकर आप पंचम को खूब मिस करेंगे, बेकरार होकर याद करेंगे और नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे ईश्वर का जिसने हमें दिया ऐसा विरला संगीतकार, जिसके हैं ऐसे

तो बीतते जाते हैं पल, कैलेंडर के पन्ने बदलते चले जाते हैं। जाने क्यों कुछ पल कभी बीतते नहीं, वो मन के आकाश पर ठहर जाते हैं, बर्फ बन जाते हैं कुछ लम्हे। वो न कभी अतीत बनते हैं न कभी यादों में तब्दील होते हैं, वो लम्हे बस मन के कैनवस पर धड़कते चले जाते हैं।

आंखों में सपने भी होते हैं और आंसू भी। दुनिया भर के दुख, धोखे, तकलीफें, अफसोस जमा होते रहते हैं मन के किसी कोने में। समझ में नहीं आता कि कब कैसे ये सारा दुख घुलेगा। फिर किसी दिन बहता है जीवन का सारा दुख आंखों से। आंखों में सपने भी होते हैं और जीवन का ये खारापन

शायद गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा। हम अभी हाजिर हुए

इंतजार का दायरा बढ़ता चला जाता है, इंतजार की परछाई बड़ी होती चली जाती है। कभी कभी ये इंतजार खत्म ही नहीं होता। दिन बोझिल होते चले जाते हैं, शामें उदास हो जाती हैं और रातें एकदम सुनसान। जिसका है इंतजार, जब वो मिल जाए तो खिल उठता है दिल, चमक जाते हैं लम्हे और महक उठते हैं।

गानों का अपना नशा होता है। जरूरी नहीं है कि ये गाने हमें बार बार सुनाई ही पड़े। कई गाने सुने बरसों हो जाते हैं, फिर अचानक किसी गाने की कोई लाइन कहीं सुनाई पड़ जाती है और अटक जाता है मन। गानों के साथ यानी कैसा रिश्ता होता है हमारा, जैसे कोई भूला हुआ ठिकाना, जैसे भूली बिसरी कोई खुशबू, जैसे कोई भूली

जब निकले अपने घर से तो एक अलग ही तरंग होती है मन की। घर से निकलते ही मन सारी उलझनों से बाहर निकल आता है। फिर हम गुनगुनाना शुरू करते हैं। सफर में हूँ तो अलग ही गाने जुबां पर आते हैं।

जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना

0: ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। श्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

एफएम बैंड 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सनसिटी चैनल है। आइए सुने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार। समाचार पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में

पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: brain development. In the ICC Women's T20 World Cup, Australia defeated India by 6 wickets in their final Group A match at Lord's, London. Earlier, opted to bat first, India posted 170 runs, losing 4 wickets in the stipulated 20 overs. In reply, Australia scored 172 runs for 4 wickets in 19 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सनसिटी चैनल है। रात के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की सभा अब यहीं समाप्त होती है। कल सवेरे 5:51 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।